मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़, न्यूज़ ऑन AIR ऐप, DTH, DRM 1233 किलो

हर्ट्स और वेब्स ओटीटी पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की पहली तिथि, तदनुसार 22 मई सन 2026। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:57 होने वाले हैं। आरंभ हो रही है आज की हमारी प्रातःकालीन सभा।

0: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 6 बजने वाले हैं, अब दिल्ली केंद्र से समाचार दिए जाएंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स के साथ वार्ता करेंगे। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइड्स कल नई दिल्ली पहुंचे थे। हवाई अड्डे पर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइड्स मुंबई का दौरा कर चुके हैं। उनके साथ विदेश मंत्री डॉ कॉन्स्टेंटिनोस काम्बोस, परिवहन संचार और निर्माण मंत्री तथा व्यापार जगत के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद ये उनकी पहली भारत यात्रा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। इससे पहले प्रधानमंत्री

0: मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: रेलवे के बुनियादी ढांचे और ट्रेन संचालन को निशाना बनाकर हाल ही में हुई घटनाओं के बीच रेल मंत्रालय ने यात्रियों से सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की सूचना हेल्पलाइन नंबर 139 पर तुरंत देने का आग्रह किया है। ये आग्रह कल नई दिल्ली के रेल भवन में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक के बाद किया गया। मंत्रालय के अनुसार आग लगने की कुछ घटनाओं सहित हाल ही में हुई कई घटनाओं की प्रारंभिक जांच में असामाजिक तत्वों की संलिप्तता की ओर इशारा मिला है। मणिपुर पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह को कैबिनेट सचिवालय में सुरक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। सुरक्षा सचिव विशेष सुरक्षा समूह SPG के प्रमुख होते हैं। SPG के पास प्रधानमंत्री और उनके साथ आधिकारिक आवास में रहने वाले परिवार के सदस्यों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने RG कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुए दुष्कर्म हत्या मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। इसका नेतृत्व केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के पूर्वी जोन के संयुक्त निदेशक करेंगे। न्यायालय ने SIT को 25 जून तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। अदालत का ये फैसला पीड़िता के परिवार की बार बार जताई गई चिंताओं के बाद आया है। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वे अलबद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा बेचने को तैयार है। उन्होंने ये बात होर्मुज जलडमरू मध्य के बंद होने के कारण भारत में ऊर्जा की बढ़ती कीमतों से संबंधित एक प्रश्न के उत्तर में कही। श्री रूबियो 23 से 26 मई तक भारत में रहेंगे। 26 मई को क्वाड की बैठक में श्री रूबियो, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तोशिमित्सू के भाग लेने की संभावना है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज तेज लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी से हालात लगातार गंभीर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज पर 6:05 हुए हैं। खेती की बातें कार्यक्रम में गर्मी की जुताई का महत्व विषय पर किसान भाइयों को जानकारी दे रहे हैं दिनेश कुमार सिंह।
3: किसान भाइयों, रबी की फसलों की कटाई के बाद गर्मी की ऋतु में ज्यादातर खेत खाली हो जाते हैं। इन खेतों में गर्म हवा बहने से नमी समाप्त हो जाती है। खेत खाली पड़े रहने से अनावश्यक खरपतवार उग आते हैं, जो कि कीड़ों मकोड़ों के लिए आश्रय का कार्य करते हैं। ये कीड़े आसपास की फसलों में रोग व्याधि की वृद्धि भी करते हैं, जिससे फसल की उपज एवं गुणवत्ता दोनों में कमी आती है। गर्मी की जुताई कर देने से ये खरपतवार तथा ज़मीन में रहने वाले कीड़े मकोड़े सब नष्ट हो जाते हैं। चूँकि खरीफ की फसल बरसात वाली फसल होती है, जिसके कारण बारिश होते ही या खेत में नमी होने पर बहुत से खरपतवार उग आते हैं, जो कि खरीफ की फसल को सीधे प्रभावित करते हैं। इन खरपतवारों से एक तो खरीफ की फसल की उपज कम हो जाती है तथा दूसरे

0: इनकी गुणवत्ता भी अच्छी नहीं रह पाती। आजकल श्रमिकों की वैसे भी समस्या रहती है, जिससे खरपतवार नियंत्रण श्रमिकों के द्वारा समय से एवं कारगर ढंग से संपन्न नहीं हो पाता। अगर रासायनिक दवाओं से खरपतवार नियंत्रण किया जाता है तो यह बहुत ही महंगा पड़ता है। इन सब से बचने का एक ही उपाय है कि गर्मी के मौसम में जब खेत खाली हो तो गहरी जुताई करके इन अधिकांश खरपतवारों से छुट्टी ले ली जाए। गर्मी की जुताई करते समय कुछ खास खास बातों को भी ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहली बात ध्यान में रखने की यह है कि रबी की फसलों की कटाई के तत्काल बाद गर्मी की जुताई कर दें, ताकि इस समय की नमी का लाभ उठाया जा सके। यदि जुताई करने में देर होती है तो मिट्टी कड़ी हो जाती है, ऐसी दशा में खेत की जुताई करना कठिन हो जाता है। हाँ, फिर यदि बारिश होती है या खेत में हल्का पानी लगा करके फिर जब जुताई लायक हो जाए तो जुताई करनी चाहिए। दूसरी भी बात ध्यान देने की यह है कि जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें तथा ये जुताई कम से कम 6 इंच गहरी हो, यानी कि खूब गहरी जुताई करनी चाहिए। जुताई करने के बाद खेत में पाटा लगाने की आवश्यकता नहीं रहती और खेत को खुला ही छोड़ देते हैं। गर्मी की जुताई से कई लाभ हैं। एक तो गर्मी की जुताई से रबी के पौधों की जड़ तथा खरपतवार उखड़ जाते हैं तथा बरसात में वर्षा होने पर शीघ्र ही सड़कर खाद में बदल जाते हैं। इससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति में बढ़ोतरी होती है तथा खरपतवार भी नष्ट हो जाते हैं। खरीफ ऋतु में वर्षा होने पर खरपतवार कम उगते हैं, जिससे खरपतवार नियंत्रण करने में मुश्किलें कम आती हैं। गर्मी की जुताई से कीड़ों मकोड़ों का नियंत्रण भी होता है। प्रायः कीड़े सुसुप्तावस्था में रहते हैं, गर्मी की जुताई से ये ज़मीन की सतह पर आ जाते हैं, जो या तो तेज धूप से नष्ट हो जाते हैं या चिड़िया आदि उन्हें खा जाती हैं। गर्मी की जुताई से अनेक रोगों को फैलाने वाले बीजाणु, जो कि खरपतवारों पर जीवित रहते हैं, खरपतवारों के साथ ये भी नष्ट हो जाते हैं। ग्रीष्म ऋतु की जुताई से तेज धूप में तपी मिट्टी तथा गहराई तक जुताई के कारण प्रथम वर्षा के पानी की काफ़ी मात्रा मिट्टी सोख लेती है तथा गहराई तक नमी सुरक्षित रहती है। मिट्टी में वायु संचार होता है तथा साथ ही मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बढ़ती है।
1: गर्मी की जुताई का महत्व, अभी इस विषय पर किसान भाइयों को जानकारी दे रहे थे दिनेश कुमार सिंह। कार्यक्रम था खेती की बातें। हम आकाशवाणी की वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। निवेदित हैं भक्ति रचनाएं आराधना के अंतर्गत। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः।

आदिदेव देवाधिदेव भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर यूं ही बनी रहे, यही हमारी मंगल कामना है।

नटवर नागर मुरलीधर पीताम्बर धारी हमारे जीवन में खुशियों के विविध रंग भर दे।

आप सुन रहे थे भक्ति रचनाएं आराधना के अंतर्गत। आज इसमें जिन गायक कलाकारों ने अपना स्वर दिया वो थे जगजीत सिंह, हरिहरन और अनूप जलोटा। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:25 हुए हैं। आइए सुने साप्ताहिक कार्यक्रम गांधी चर्चा। इसके अंतर्गत 3 दिनों आप सुन रहे हैं बापू की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का धारावाहिक पाठ। आज आप सुनेंगे इसकी 130वीं कड़ी।

गांधी चर्चा कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं बापू की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का धारावाहिक पाठ। आज सुनिए इसकी 130वीं कड़ी।

आश्रम को कायम हुए अभी कुछ ही महीने बीते थे कि इतने में जैसी कसौटी की मुझे आशा नहीं थी वैसी कसौटी हमारी हुई। भाई अमृतलाल ठक्कर का पत्र मिला। एक गरीब और प्रामाणिक परिवार है, वो आपके आश्रम में रहना चाहता है, क्या आप उसे भर्ती करेंगे? मैं चौंका। ठक्कर बापा जैसे पुरुष की सिफारिश लेकर कोई परिवार इतनी जल्दी आएगा, इसकी मुझे जरा भी आशा नहीं थी। मैंने साथियों को वो पत्र पढ़ने के लिए दिया, उन्होंने इसका स्वागत किया। भाई अमृतलाल ठक्कर को लिखा गया कि यदि वो परिवार आश्रम के नियमों का पालन करने को तैयार हो तो हम उसे भर्ती करने के लिए तैयार हैं। दूधा भाई, उनकी पत्नी, दानी बहन और दूध पीती तथा घुटनों चलती बच्ची लक्ष्मी तीनों आए। दूधा भाई बम्बई में शिक्षक का काम करते थे, नियमों का पालन करने को वो तैयार थे, उन्हें आश्रम में रख लिया। सहायक मित्र मंडल में खलबली मच गई। जिस कुएं के बगल में मालिक का हिस्सा था, उस कुएं से पानी भरने में हमें अड़चन होने लगी। चरस वाले पर हमारे पानी के छींटे पड़ जाते, उसने अपशब्द कहना और दूधा भाई को सताना शुरू किया। मैंने सबसे कह दिया कि अपशब्द सहते जाओ और दृढ़तापूर्वक पानी भरते रहो। हमें चुपचाप अपशब्द सुनते देखकर चरस वाला शर्मिंदा हुआ और उसने अपशब्द कहना बंद कर दिया, पर पैसे की मदद बंद हो गई। जिन भाई ने आश्रम के नियमों का पालन करने वाले लोगों को प्रवेश के बारे में पहले से ही शंका व्यक्त की थी, उन्हें तो आश्रम में भर्ती होने की आशा ही नहीं थी। पैसे की मदद बंद होने के साथ बहिष्कार की अफवाहें मेरे कान तक आने लगी। मैंने साथियों से चर्चा करके तय कर रखा था कि यदि हमारा बहिष्कार किया जाए तो हम कहीं से कोई मदद न मिले तो भी हम अहमदाबाद नहीं छोड़ेंगे, बस्ती में जाकर उनके साथ रहेंगे और जो कुछ मिलेगा उससे अथवा मजदूरी करके अपना निर्वाह करेंगे। आखिर मगनलाल ने मुझे नोटिस दी, अगले महीने आश्रम का खर्च चलाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। मैंने धीरे से जवाब दिया, तो हम बस्ती में जाकर रहने चले जाएंगे। मुझ पर ऐसा संकट पहली बार ही नहीं आया था, पर हर बार अंतिम घड़ी में प्रभु ने मदद अवश्य भेजी है। मगनलाल के नोटिस देने के बाद तुरंत ही एक दिन सवेरे किसी लड़के ने आकर खबर दी, बाहर मोटर खड़ी है और एक सेठ आपको बुला रहे हैं। मैं मोटर के पास गया। सेठ ने मुझसे पूछा, मेरी इच्छा आश्रम को कुछ मदद देने की है, आप लेंगे? अगर आप कुछ देंगे तो मैं जरूर लूंगा। मुझे कबूल करना चाहिए कि इस समय मैं आर्थिक संकट में भी हूं, ये बात मैंने उनसे कही। मैं कल इसी समय आऊंगा, तब आप आश्रम में होंगे? मैंने हाँ कहा और सेठ चले गए। दूसरे दिन नियत समय पर मोटर का भोंपू बोला, लड़कों ने खबर दी, सेठ अंदर नहीं आए। मैं उनसे मिलने गया, वे मेरे हाथ पर 13,000 के नोट रखकर विदा हो गए। मैंने इस मदद की कभी आशा नहीं रखी थी, मदद देने की ये रीत भी नहीं देखी। उन्होंने आश्रम में पहले कभी कदम भी नहीं रखा था। मुझे याद आता है कि मैं उनसे एक ही बार मिला था, न आश्रम में आना न कुछ पूछना, बाहर ही बाहर पैसे देकर लौट जाना। ऐसा ये पहला अनुभव था। इस सहायता के कारण बस्ती में जाना रुक गया, मुझे लगभग 1 साल का खर्च मिल गया था। पर जिस तरह बाहर खलबली मची, उसी तरह आश्रम में भी। यद्यपि दक्षिण अफ्रीका में मेरे यहां सभी आते थे, रहते और भोजन करते थे, तथापि यही नहीं कहा जा सकता कि कुटुंब का आना मेरी पत्नी और आश्रम की दूसरी स्त्रियों को पसंद आया। दानी बहन के प्रति घृणा नहीं तो उनकी उदासीनता थी, जिससे मेरी अत्यंत सूक्ष्म आंखें देख लेती थीं और तेज कान सुन लेते थे। आर्थिक सहायता के अभाव के डर से मुझे जरा भी चिंता

नहीं हुई, पर यह आंतरिक क्षोभ कठिन सिद्ध हुआ। दादी बहन साधारण स्त्री थी, दूदा भाई की शिक्षा भी साधारण थी, पर उनकी बुद्धि अच्छी थी, उनका धीरज मुझे पसंद आया था। उन्हें कभी कभी गुस्सा आता, पर कुल मिलाकर उनकी सहन शक्ति की मुझ पर अच्छी छाप पड़ी। मैं दूदा भाई को समझाता था कि वे छोटे मोटे अपमान पी लिया करें, वे समझ जाते थे और दानी बहन से भी सहन करवाते थे। इस परिवार को आश्रम में रखकर आश्रम में बहुतेरे पाठ सीखे हैं हमने, और प्रारंभिक काल से ही इस बात के बिल्कुल स्पष्ट हो जाने से कि आश्रम में इस प्रकार की बातों के लिए कोई स्थान नहीं है, आश्रम की मर्यादा निश्चित हो गई और इस दिशा में उसका काम बहुत सरल हो गया। इसके बावजूद आश्रम का खर्च बराबर बढ़ता रहने पर भी मुख्यतः कट्टर माने जाने वाले लोगों की तरफ से ही मदद मिल रही थी। कदाचित ये इस बात का स्पष्ट सूचक है कि जड़ें अच्छी तरह हिल गई हैं। इसके दूसरे प्रमाण तो अनेक हैं, परंतु जहां सभी के साथ रोटी तक का व्यवहार रखा जाता हो, वहां भी अपने को सनातनी मानने वाले मदद दें, ये कोई नगण्य प्रमाण नहीं माना जाएगा। इसी प्रश्न को लेकर आश्रम में हुई एक और स्पष्टता, उसके सिलसिले में उत्पन्न हुए नाजुक प्रश्नों का समाधान, कुछ अनसोची अड़चनों का स्वागत आदि सत्य की खोज के सिलसिले में हुए प्रयोगों का वर्णन प्रस्तुत होने पर भी मुझे यहाँ छोड़ देना पड़ रहा है, इसका मुझे दुख है। किंतु अब आगे के प्रकरण में ये दोष रहने ही वाला है। मुझे महत्व के तथ्य छोड़ देने पड़ेंगे, क्योंकि उनमें हिस्सा लेने वाले पात्रों में से बहुतेरे अभी हैं और उनकी सम्मति के बिना उनके नामों और उनके संबंध रखने वाले प्रसंगों का स्वतंत्रता पूर्वक उपयोग करना अनुचित मालूम होता है। समय समय पर सबकी सम्मति मंगवाना अथवा उनसे संबंध रखने वाले तथ्यों को उनके पास भेजकर सुधरवाना संभव नहीं है, और यह आत्मकथा की मर्यादा के बाहर की बात है। अतः इसके आगे की कथा यद्यपि मेरी दृष्टि में सत्य के शोध के लिए जानने योग्य है, तथापि मुझे डर है कि वो अधूरी ही दी जा सकेगी। तिस पर भी मेरी इच्छा और आशा ये है कि भगवान पहुंचने दे तो असहयोग के युग तक मैं पहुंच जाऊं।

आप सुन रहे थे गांधी चर्चा के अंतर्गत बापू की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का धारावाहिक पाठ। आज आप सुन रहे थे इसकी 130वीं कड़ी। वाचन और प्रस्तुति अरुण पांडेय की थी। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। 6:40 हुए हैं। प्रस्तुत है श्रीरामचरितमानस से संगीतमय पाठ।

राजा जनक की यज्ञशाला में अपने को वीर तथा पराक्रमी समझने वाले राजे महाराजे शिव के धनुष को करोड़ों प्रकार से उठाने की चेष्टा कर असफल लज्जित हो अपने अपने स्थान पर वापस जा चुके हैं। तब 10,000 राजाओं ने एक साथ धनुष उठाने की चेष्टा की, किंतु शिव का धनुष है जिसे उठाना तो दूर, वे उसे तनिक डिगा भी नहीं सके। एक एक कर सभी वीर तथा पराक्रमी राजे महाराजे अपनी कीर्ति और वीरता गंवाकर उसी प्रकार उपहास के पात्र बन गए जैसे वैराग्य बिना सन्यासी हंसी का पात्र बन जाता है। राजा जनक के मन में संशय पैदा हुआ, क्यों उन्होंने ऐसा प्रण ठाना जिसे सुनकर न केवल द्वीप द्वीप के राजा आए वरन मनुष्य रूप धारण कर देवता तथा दैत्य भी उपस्थित तो हुए, किंतु धनुष तोड़कर सीता के हाथों जयमाल पहनने वाले को विधाता ने मानो रचा ही नहीं। धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर उसे तोड़ना तो दूर, कोई भूमि पर ही उसे हिला भी नहीं सका। जनक जी की अकुलाहट नैराश्य में परिणत हो गई। ब्रह्मा ने सीता के ललाट में विवाह शायद लिखा ही नहीं। राजा जनक के निराशा भरे वचन सुनकर उपस्थित समाज तो खिन्न हुआ, किंतु लक्ष्मण की भ्रिकुटी तन गई, होठ फड़कने लगे और क्रोध से आंखें लाल हो आईं। यदि उन्हें राम की आज्ञा मिले तो वो धरती को गेंद के समान उछालकर कच्चे घड़े की भांति फोड़ दें, फिर इस पुराने धनुष की तो बिसात ही क्या है।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। आज की इस कड़ी के गायक कलाकार थे श्रीकांत पारगांवकर। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:50 हुए हैं। कार्यक्रम विवरण में आइए जानकारी दे दें आज के शेष प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। उर्दू कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 9:30 पर, जिसे हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रमों में रात्रि 10:30 पर सुनिएगा पल्लव दास का ध्रुपद गायन। दोपहर 12:45 पर पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का बांसुरी वादन। और सुबह 7:31 पर सुनिएगा संजीव अभयंकर का गायन। मंजूषा का प्रसारण होगा रात्रि 10 बजे से, जिसमें डॉक्टर उमाकांत सिंह की वार्ता प्रसारित की जाएगी। विषय होगा काशी के अमर स्वर जयशंकर प्रसाद। इसी कार्यक्रम में डॉक्टर नसीमा निशा का काव्य पाठ भी आप सुन सकते हैं। गैर फिल्मी गीत गजल का कार्यक्रम अंजुमन का प्रसारण होगा रात्रि 9:30 पर। सुगम संगीत के कार्यक्रमों में रात्रि 8 बजे और दोपहर 12:00

30 मिनट पर सुनिएगा डॉक्टर दीप्ति तैलंग का गीत भजन। कृषि जगत कार्यक्रम में शाम 6:30 पर किसान भाई सुनेंगे पशुओं के दाना मिश्रण तैयार करते समय सावधानियां विषय पर डॉक्टर अमरेश कुमार सिंह से दिनेश कुमार सिंह की बातचीत के अलावा तेज बहादुर यादव व साथियों का गाया लोकगीत। इन्हीं के गाए लोकगीत आप सुन सकते हैं दोपहर 1:45 पर और सुबह 9:50 पर। युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी का प्रसारण होगा शाम 5:15 पर, जिसमें होगी आज की बात, सिने दर्पण, यूथ डायरी, इतिहास में आज का दिन और रोजगार सूचना। दिन में 1:15 पर गृहलक्ष्मी कार्यक्रम में महिलाएं चर्चा के अलावा रूपक सुनेंगी आकाशवाणी के 90 वर्ष तरंगों की समय यात्रा, इसके अलावा गीत संगीत। एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे दोपहर 12 बजे से। फरमाइशी गीत एक्सप्रेस का प्रसारण होगा दिन में 11 बजे से। झनकार का आनंद लीजिएगा सुबह 10 बजे से। मधुरिमा का प्रसारण होगा सुबह 8:45 पर और गुड मॉर्निंग बनारस सुबह 7 बजे से। फिल्म संगीत का आनंद ले सकते हैं आप शाम 5 बजे, 6:10 पर 7 बजे, 7:31 पर रसरंग में और रात्रि 8:15 पर रसमाधुरी के अंतर्गत। ये थी जानकारी हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष प्रमुख कार्यक्रमों की। 6:55 होने वाले हैं। संस्कृत में समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से बस कुछ ही पलों में।

0: कम्प्यूटिंग अथ चिकित्सोपकरणादिषु क्षेत्रेषु परस्परं पूरकरूपेण कार्यं कुरुतश्चेति। अष्टमः भारत फ्रांस समुद्रीय सहकार संवादः बुधवासरे पेरिस नगरे आयोजितः। चर्चायाम् अवैध समुद्रीय गतिविधीनां प्रतिरोधाय परिचालन सहकारं सुदृढं कर्तुम् उभयोः देशयोः सहभागित्व प्रतिबद्धतां प्रति अवधानं दत्तम्। सशस्त्र लुण्ठनं, सागरीय आतंकवादः, मादक द्रव्याणां क्रय विक्रयणम्, अवैधम् अनिर्दिष्टम् अथ अनियन्त्रित मत्स्यपालनम् अपि च अन्यानि सागरीय संकटानि चापि चर्चिताः। कोलकाता उच्च न्यायालयेन आरजी कर चिकित्सा महाविद्यालये बलात्कार हत्या प्रकरणस्य अन्वेषणार्थं विशेष अन्वेषण दलस्य स्थापना कृतास्ति। त्रिसदस्यीयस्य एसआईटी इत्यस्य नेतृत्वं केन्द्रीयान्वेषण विभागस्य पूर्वक्षेत्रस्य संयुक्त निदेशकः भविष्यति। न्यायालयः जून मासस्य 25 दिनांकात् पूर्वं स्वप्रतिवेदनं दातुं दलम् आदिष्टवान्। एनईईटी परीक्षापत्र स्राव प्रकरणस्य प्रमुख विकासे लातूरनगरस्य बालरोग चिकित्सकः डॉ मनोज शिरुरे इत्येषः केन्द्रीयान्वेषण विभागेन गृहीतः इति कथ्यते। सूत्रानुगुणं डॉ शिरुरे इत्येषः स्वपुत्र्यै एनईईटी परीक्षायाः प्रश्नपत्रम् अकृणोदिति अन्वेषण संस्थाः शङ्कयन्ति। एकोनविंशत्युत्तर 2000 वर्षस्य पुलवामा आतंकवाद आक्रमणस्य सूत्रधारत्वेन विश्वसितः हमजा बुरहान नामकः आततायी पाकिस्तान अधिकृत काश्मीरे अज्ञात भुशुण्डिधारिभिः नरकं प्रति प्रयातितः। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन श्वः उत्तरप्रदेशे, मध्यप्रदेशे, विदर्भप्रदेशे च उष्णतरंगा तीव्रतर उष्णतरंगस्य स्थितिः भविष्यति इति मत्वा रक्तसूचना घोषिता। दिल्ली, हरियाणा, चण्डीगढ़, तटीय आन्ध्रप्रदेशे अपि एतादृशी स्थितिः भवितुमर्हति। आईपीएल क्रिकेट क्रीडाचक्रे गुजरात टाइटन्स इति दलेन गतरात्रौ अहमदाबाद नगरस्य नरेन्द्र मोदी क्रीडांगणे चेन्नई सुपर किंग्स दलम् 91 धावनांकैः पराजितम्। गुजरात टाइटन्स इत्यनेन स्थापितस्य 33-200 धावनांकानां लक्ष्यस्य अनुसरणं कुर्वत् चेन्नई सुपर किंग्स इति दलं प्रायः मध्य चतुर्दश कन्दुक क्षेपण चक्रेषु 40-100 धावनांकान्येव विरचयत् इति वार्ताः।
1: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस।

नमस्कार बनारस, कैसे हैं आप सब? आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग बनारस, मेरे यानी शिखा के साथ। आज दिन है शुक्रवार, तारीख है 22 मई। 80 से लेकर राजघाट तक सूरज देवता की किरणें गंगा जी की लहरों पर तैर रही हैं। सुबह बनारस का ये नज़ारा देखकर पूरी दुनिया कहती है, वाह बनारस। इस खूबसूरत सी सुबह पर कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी, जरा गौर फरमाइएगा। ये हवा, ये फिजा, ये हरियाली ही हमारी असली कमाई है। प्रकृति से ही जुड़ी हमारी हर एक सांस और परछाई है। अगर ना संभाले हमने ये पेड़ पौधे और ये नदियां, तो समझ लेना दोस्तों, हमारी खुद की ही बुराई है। बनारस, आज 22 मई को पूरी दुनिया एक बड़ा खास दिन मना रही है, इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यानी जीव विविधता दिवस। अब आप सोचेंगे कि भैया, ये बायोडाइवर्सिटी क्या चीज है? आइए हम आपको बताते हैं। ये बायोडाइवर्सिटी या जीव विविधता हमारे बनारस की असली दौलत है। बायोडाइवर्सिटी का आसान सा मतलब पता है क्या है? हमारी धरती पर जितने भी पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं, कीट पतंगे हैं और हम मनुष्य हैं, ये सब मिलकर

जो एक परिवार बनाते हैं ना, वही है बायोडायवर्सिटी। और हमारा बनारस इस मामले में बहुत ही किस्मत वाला है। आपको एक कमाल की जानकारी बताती हूँ। हमारी गंगा जी में एक बहुत ही खास जीव रहता है, गैंगेटिक डॉल्फिन। ये डॉल्फिन सिर्फ मीठे पानी में ही रहती है। इसके अलावा शीत ऋतु में हमारे घाटों पर जो विदेशी पक्षी आते हैं ना, वो हमारे शहर की हरियाली, मौसम और पानी को देख कर ही आते हैं। हमारे सारनाथ में मिनी जू तो जीव संरक्षण की मिसाल है ही। चलिए आपको इस दिन का थोड़ा सा इतिहास भी बता देते हैं, क्योंकि बिना इतिहास जाने तो हमारा बनारस भी अधूरा है। तो इस दिन की शुरुआत हुई साल 1993 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा। पहले इसे दिसंबर में मनाया जाता था, लेकिन साल 2000 में यूनाइटेड नेशंस ने फैसला किया कि 22 मई को ही ऑफिशियल इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मनाया जाएगा। 22 मई ही क्यों? क्योंकि 22 मई 1992 को ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के टेक्स्ट को अडॉप्ट किया गया था। यानी दुनिया के सभी बड़े देशों ने मिलकर प्रण लिया था कि हम पेड़ पौधे और पशु पक्षियों को बचाएंगे। अब सोचिए, पूरी दुनिया 1993 से ये दिन मना रही है, और हमारी भारतीय संस्कृति में तो सदियों से जीव विविधता की पूजा होती आई है। हम तो पेड़ों की भी पूजा करते हैं, नदियों को माँ जैसे पूजते हैं, यहाँ तक कि पशु पक्षियों को भी भगवान का वाहन मानते हैं। वो भी पूजनीय हैं हमारी संस्कृति में तो। लेकिन इन मान्यताओं के बाद भी हम अपने पर्यावरण को कुछ खास नहीं दे पा रहे हैं। धरती कचरे से प्रदूषित होती जा रही है। माँ गंगा को भी हम प्लास्टिक, कचरा, गंदे कपड़ों से प्रदूषित करते जा रहे हैं। अपने पर्यावरण को हमें क्या देना चाहिए, हम क्या दे रहे हैं और क्या दे सकते हैं, इस पे विचार जरूर करिएगा। लौटते हैं इस प्यारे से सॉन्ग के बाद। गुड मॉर्निंग बनारस।

वेलकम बैक बनारस, आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग बनारस आकाशवाणी वाराणसी के संग। दोस्तों, आज तारीख है 22 मई यानी अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इस साल का ग्लोबल थीम है एक्टिंग लोकली फॉर ग्लोबल इम्पैक्ट, यानी कि वैश्विक प्रभाव के लिए स्थानीय स्तर पर कार्य करना। अब इसका सीधा सा मतलब आपको समझा देते हैं कि जब हम अपने बनारस को सुधारेंगे तभी पूरी दुनिया सुधरेगी। जेठ का महीना है दोस्तों, और घाटों पर भोर की जो पुरवा हवा शरीर को छू रही है ना, वो मन को इतना सुकून दे जाती है ना। हम बनारसियों की तो सुबह ही माँ गंगा के पानी को छू कर शुरू होती है। चाहे कितना भी लाइफ में झंझट हो, घाट की सीढ़ियों पर 5 मिनट बैठ जाइए तो सारा टेंशन बिल्कुल रफू चक्कर हो जाता है। भाई, बनारसी तो जब चाहे तब गंगा मैया के स्नान को जा सकते हैं, क्योंकि गंगा सिर्फ पानी नहीं है, ये तो साक्षात मोक्षदायिनी माँ है जो हमारे शरीर के मैल को धोने के साथ साथ हमारी आत्मा को भी एकदम शुद्ध कर देती है। लेकिन आज 22 मई की इस विशेष सुबह आप सभी एक बार सोचिएगा जरूर, शरीर की शुद्धि के साथ साथ आत्मा की शुद्धि भी उतनी ही जरूरी है। पर क्या माँ गंगा की गोद में प्लास्टिक और कचरा छोड़कर हमारी आत्मा कभी शुद्ध हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं। जरा आंख बंद करके सोचिए, हमारी गंगा मैया सिर्फ पानी की धारा नहीं है, वो तो करोड़ों जीव जंतुओं का घर है। इसी बनारस के पानी में हमारी अपनी गैंगेटिक डॉल्फिन, कछुए रहते हैं और ना जाने कितनी प्रजातियों की मछलियाँ और जलीय पौधे सांस लेते हैं। यही तो है असली जैव विविधता। जब हम घाट पर नहाने जाते हैं और वहीं श्रद्धा के नाम पर प्लास्टिक की थैली, अगरबत्ती का डिब्बा, साबुन का झाग, सड़े गले माला फूल या फिर पुराने कपड़े पानी में बहा देते हैं, तो हम सिर्फ पानी गंदा नहीं करते, हम उन बेजुबान जीवों का घर भी उजाड़ते हैं। ये तो वही बात हुई ना, हम अपने शरीर को तो साफ कर लेते हैं पर माँ गंगा की गोद को मैला करके आ जाते हैं। और जब कर्म ही मैला होगा तो आत्मा कैसे शुद्ध होगी? चलिए, आज 22 मई को हम सभी पूरे बनारस के लोग मिलकर एक प्रण लेते हैं, स्नान की पूर्णता तभी है जब घाट और पानी दोनों निर्मल रहें। माँ गंगा को स्वच्छ रखने के लिए आज से हम इन 3 आसान उपायों को गांठ बांध लेते हैं। नो प्लास्टिक ऑन घाट। जी हाँ, घाट पर जाते समय कपड़े का थैला इस्तेमाल करेंगे। सिंगल यूज प्लास्टिक को घाट की सीढ़ियों के आसपास भी नहीं फटकने देंगे। पूजा सामग्री का सही विसर्जन। फूलों और अगरबत्ती के अवशेषों को सीधे पानी में फेंकने के बजाय घाटों पर रखे विशेष सामग्री पात्र में ही डाले, या फिर अपने लॉन या गमले की मिट्टी में भी हम इसे विसर्जित कर सकते हैं। टोकने की आदत बनाएंगे। जी हाँ, अगर कोई अनजान यात्री या दोस्त घाट पर कचरा या कपड़े छोड़ रहा हो तो बनारसी अंदाज में प्यार से टोकेंगे, ओ भाई ये बनारस का घाट है, हमारा मंदिर है, यहाँ गंदगी नहीं फैलाई जाती। याद रखिएगा, जब हम स्थानीय स्तर पर अपने इन ऐतिहासिक घाटों को साफ रखेंगे ना, तभी वैश्विक स्तर पर हमारी प्रकृति और जलीय जीवन सुरक्षित रहेगा। जैसी हमारे भीतर की शुचिता, वैसी ही हमारे घाट की पवित्रता। जब हमारा घाट चमकेगा तभी तो दुनिया कहेगी

वाह बनारस, तुम्हारा जवाब नहीं। तो बनारस, माँ गंगा की सफाई और अपनी आत्मा की सच्ची शुद्धि के सुंदर संकल्प के साथ ही चलिए सुबह वाली चाय की एक कड़क घूंट मारिए और तैयार हो जाइए हमारे बनारस के हाल चाल को जानने के लिए। जी हाँ, चलिए चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में और जानते हैं शहर बनारस का हाल चाल। काशी में इस साल पहली बार लगातार दो दिनों के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया गया है। 22 और 23 मई को पूरे दिन भीषण गर्मी पड़ने की संभावना है। तापमान 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। दिन के साथ ही रात में भी लू का असर बना रह सकता है। तो बनारस, अपना बहुत ही ख्याल रखिए, अपने हाइड्रेशन का पूरा ध्यान रखिए और साथ ही यदि धूप में निकलिए तो अपने सर को पूरी तरह से ढक कर निकलिए। BHU अब साल में दो बार PhD प्रवेश लेगा। इसके अलावा नेट और JRF के अभ्यर्थियों के साक्षात्कार से पहले स्क्रीनिंग टेस्ट की व्यवस्था भी की गई है। इससे अभ्यर्थियों का रुझान और विषय, विशेष में उनकी पकड़, उनके अनुसार ही शोध के विषय, निर्देशक और शीर्षक प्रदान करने में सुविधा होगी। बुधवार को BHU की एकेडमिक काउंसिल की बैठक में इन अहम प्रस्तावों पर मुहर लग गई। पड़ाव से डोमरी तक 4-लेन सड़क बनेगी। 5.2 किलोमीटर लंबी इस सड़क की चौड़ाई 18 मीटर होगी। सड़क चौड़ीकरण पर 250 करोड़ की लागत आएगी। लोक निर्माण विभाग इस परियोजना का एस्टीमेट बनाकर मुख्यालय को भेज चुका है। IIT BHU एक बहुत ही अच्छी पहल करने जा रहा है। IIT BHU के छात्रावासों के मेस में बच गया अतिरिक्त भोजन अब आसपास के निर्धन और जरूरतमंद लोगों की भूख को शांत करेगा और प्लेटों में बचा हुआ खाद्य अपशिष्ट पशुओं का ग्रास बनेगा। संस्थान ने खाद्य अपशिष्ट के प्रभावी प्रबंधन हेतु एक अभिनव और सामाजिक रूप से उत्तरदायी पहल का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य न केवल परिसर में स्वच्छता सुनिश्चित करना है बल्कि अतिरिक्त भोजन का सार्थक उपयोग कर जरूरतमंद लोगों तक उसे पहुंचाना भी है। वाराणसी से कैंट से गोदौलिया के बीच 860 करोड़ की लागत से बन रहा देश का पहला पब्लिक रोपवे जून 2026 तक शुरू हो जाएगा। 92.5% काम पूरा हो चुका है, जिससे अब बाबा विश्वनाथ मंदिर की 45 मिनट की दूरी मात्र 15 मिनट में तय होगी। 50 मीटर की ऊंचाई से काशी के दर्शन करें और डमरू त्रिशूल से सजे शिवमय स्टेशनों का अनुभव लें। जून में ट्रायल रन के साथ टूरिस्ट के लिए सफर सुगम होगा। तो ये था शहर बनारस का हालचाल। आइए अब जान लेते हैं 22 मई का इतिहास। इतिहास में 22 मई के दिन बहुत सी महत्वपूर्ण घटनाएं दर्ज हैं। भारत की बछेंद्री पाल 22 मई के ही दिन दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर एवरेस्ट पर पहुंची थी और ये कारनामा अंजाम देने वाली वो देश की पहली महिला पर्वतारोही हैं। पर्वतारोहण और साहसिक खेलों के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए बछेंद्री पाल को पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया है। 1545 में एक विस्फोट में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी। शेरशाह ने मुगल साम्राज्य को अपने हाथों में लिया था। 1772 में राजा राम मोहन राय का जन्म हुआ था। उन्हें भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। 1915 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इटली ने ऑस्ट्रिया, हंगरी और जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी आज के ही दिन। 1936 में लॉर्ड ब्रेबार ने बम्बई, जो कि अब मुंबई है, में बिरबोन स्टेडियम की नींव रखी थी। ये देश का पहला स्टेडियम था। 1984 में बछेंद्री पाल दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। 1988 में भारत ने स्वदेश में ही विकसित अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र अग्नि का सफल प्रक्षेपण किया था आज के ही दिन। तो ये था इतिहास में 22 मई का दिन। और दोस्तों, अब शो को वाइंड अप करने का समय हो चला है। आपसे मैं

ही मिलूंगी FM 100.6 विविध भारती के वाराणसी केंद्र पर सुबह 10 बजे काशी कनेक्ट में और सुबह 10:30 पर कार्यक्रम बनारस बीट्स में। आप शिखा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: गुड मॉर्निंग बनारस।
1: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में यानी 7:20 से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे लखनऊ केंद्र से।

0: पल प्रतिबंध लगाए, पर्यावरण को हम सब बचाए। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है प्रदूषण, इसका परिणाम होता है भीषण। प्रदूषण के हैं कई कारण, धुआं कचरा इत्यादि उदाहरण। देश को प्रदूषण मुक्त बनाए, मन में ये संकल्प बनाए।
1: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम।
0: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
0: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, श्वास लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाएं।

0: जारी कर दिए। आदेश के मुताबिक बढ़ा हुआ भत्ता कर्मचारियों को 1 जनवरी 2026 से दिया जाएगा। पहले राज्य कर्मचारियों को 58% डीए मिलता था, अब उन्हें 60% डीए का लाभ मिल सकेगा। प्रदेश सरकार ने 5 सदस्यीय पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कर दी है। हाल ही में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस आयोग के गठन को स्वीकृति प्रदान की गई थी।
1: रिटायर्ड न्यायाधीश न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह को इस नए 5 सदस्यीय आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि सेवानिवृत्त अपर जिला न्यायाधीश ब्रजेश कुमार और संतोष कुमार विश्वकर्मा, सेवानिवृत्त आईएएस डॉक्टर अरविंद कुमार चौरसिया और एसपी सिंह को आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। इस आयोग पर प्रदेश में आगामी त्रिस्तरीय ग्रामीण स्थानीय निकाय चुनावों में पिछड़ा वर्ग के लिए सीटें आरक्षित करने की जिम्मेदारी होगी। आयोग के सभी सदस्यों का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने से 6 महीने की अवधि के लिए होगा। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
0: राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के निर्देश पर सभी राज्य विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में ड्रेस कोड का पालन अनिवार्य किया जाएगा। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि सभी शिक्षण संस्थानों में यूनिफॉर्म व्यवस्था लागू की जाएगी, जिससे छात्र छात्राओं के बीच समानता और अनुशासन की भावना को बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल कहा कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की।
2: संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य और कृषि संगठन ने एग्रीकोला मेडल से उनको सम्मानित किया है। इससे देशवासियों का सीना गर्व से भर उठा है, माथा उन्नत हुआ है। प्रधानमंत्री जी के जो प्रयास है, ये एफएओ ने कहा है, भुखमरी मिटाना, गरीबी कम करने के प्रयास करना, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और उत्पादकता एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बढ़ाना, ये उनके ऐसे काम है जो सचमुच में अभूतपूर्व और अद्भुत है।
0: बीते माह 9 से 23 अप्रैल तक मनाए गए पोषण पखवाड़े में गोरखपुर जिला गतिविधियों के आयोजन व फीडिंग के मामले में प्रदेश में अव्वल रहा है। यह जानकारी गोरखपुर के जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर अभिनव मिश्र ने दी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2024 से ही जिले को विभिन्न श्रेणियों में लगातार तीसरी बार प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल करने का गौरव प्राप्त हुआ है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में आयोजित जूनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप के समापन समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि खेल संस्कृति को बढ़ावा मिलने के कारण अब देश के युवा खेल के साथ विभिन्न क्षेत्रों में भारत के सामर्थ्य को प्रदर्शित कर सकते हैं।
3: मैं देख रहा था कि पिछली सरकारों में कोई खेल नीति नहीं थी। हमने उत्तर प्रदेश में सरकार बनने के बाद खेल नीति विकसित की। हमने इंटरनेशनल चैंपियनशिप में नेशनल

0: चैंपियनशिप में जिन भी खिलाड़ियों ने मेडल प्राप्त किए हैं, ऐसे 534 खिलाड़ियों को हम लोगों ने उत्तर प्रदेश सरकार में सीधी भर्ती के माध्यम से उनके मेडल के आधार पर पुलिस में डिप्टी एसपी का पद भी, राजस्व विभाग में भी और अन्य विभागों में भी हमने उनको समाहित किया है, उनको सीधे नियुक्ति पत्र दिया है।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी जीबीसी 5.0 के संबंध में इन्वेस्ट यूपी के अधिकारियों के साथ विस्तृत समीक्षा बैठक की। एक रिपोर्ट।
2: मुख्यमंत्री ने कहा कि जीबीसी 5.0 के अंतर्गत हर जिले में निवेश होना चाहिए। उन्होंने जिलों की पर कैपिटा इनकम बढ़ाने पर जोर देते हुए कहा कि इसके लिए मैन्युफैक्चरिंग पावर को बढ़ावा देना जरूरी है। श्री योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में भूमि की मांग तेजी से बढ़ी है, इसके सापेक्ष भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि एफडीआई को आमंत्रित करने के लिए व्यापक स्तर पर प्रयास किए जाएं। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
1: जनगणना 2027 के तहत 7 मई से चल रही स्वगणना प्रक्रिया में कल शाम तक करीब 46,93,783 लोगों ने हिस्सा लिया। राज्य भर में आज से जनगणना कर्मी घर घर जाएंगे। एक रिपोर्ट।
3: स्वगणना करने वाले अग्रणी जनपदों में शाहजहांपुर पहले स्थान पर है, जहां लोगों ने स्वगणना की। दूसरे नंबर पर आजमगढ़ जबकि तीसरे स्थान पर बरेली रहा। राजधानी लखनऊ में लगभग 98,000 लोगों ने स्वगणना की। राज्य की जनगणना निदेशक और मुख्य जनगणना अधिकारी शीतल वर्मा ने बताया कि अगले चरण में जनगणना कर्मी घर घर जाकर फॉर्म भरवाएंगे। जिन लोगों ने स्वगणना के तहत अपनी जानकारी पोर्टल में दर्ज करा दी है, उन्हें 11 अंकों वाले कोड को प्रगणक के घर आने पर देना होगा, जिससे जानकारी का सत्यापन होगा। ये प्रक्रिया 22 जून तक चलेगी। समाचार कक्ष से सुशील चंद्र तिवारी।
1: सूचना और प्रसारण मंत्रालय में संयुक्त सचिव प्रिथुल कुमार कल एक दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने गोरखपुर दूरदर्शन और आकाशवाणी केंद्र गोरखपुर का निरीक्षण किया तथा प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रमों की विस्तृत समीक्षा की। संयुक्त सचिव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत दोनों केंद्रों पर पौधरोपण भी किया। इस अवसर पर दूरदर्शन और आकाशवाणी से जुड़े कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। केंद्र सरकार ने देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी के पर्याप्त भंडार की उपलब्धता का भरोसा दिलाया है। नई दिल्ली में कल पश्चिम एशिया की स्थिति पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि आपूर्ति स्थिर है और सभी पेट्रोल पंपों पर उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।
4: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं, ताकि जो देश की डिमांड है उसको मीट किया जा सके। इसके अलावा रिफाइनरीज में एलपीजी प्रोडक्शन को रैंप अप किया गया है और लगभग 46,000 से 47,000 टन एलपीजी देश की रिफाइनरीज में बनाई जा रही है।
1: सुश्री शर्मा ने नागरिकों से केवल जरूरत के हिसाब से ही खरीदारी करने और ऊर्जा बचत की सलाह दी है। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है। बांदा जिला कल भी लगातार देश का सबसे गर्म जिला बना रहा। राज्य के कई अन्य जिलों में भी तापमान 46 डिग्री सेल्सियस के पार रहा। हमारे संवाददाता ने बताया कि राज्य की राजधानी लखनऊ में भी कल पारा 43.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो सामान्य से 5 डिग्री अधिक था। प्रदेश में रात में तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के कारण जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग ने राज्य के कुछ हिस्सों में भीषण लू जारी रहने की चेतावनी दी है। इस बीच जबरदस्त गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्यों को लेकर सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट जून 2026 के लिए आवेदन तिथि 23 मई तक बढ़ा दी है। पहले 20 मई तक ही आवेदन किए जा सकते थे। जिन छात्रों को भरे हुए आवेदन पत्र में कोई त्रुटि सुधार करना है, उनके लिए एनटीए 25 से 27 मई तक आधिकारिक वेबसाइट पर करेक्शन विंडो खोलेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ता डीए में की 2% की बढ़ोतरी। 1 जनवरी 2026 से लागू होगा बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता। इलाहाबाद हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह बने पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष। राज्य सरकार ने 4 अन्य सदस्यों की भी नियुक्ति की। जूनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप के समापन समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कहा अब खेल के साथ विभिन्न क्षेत्रों में भारत के सामर्थ्य को प्रदर्शित कर सकते हैं।

देश के युवा। और जनगणना 2027 के तहत आज से शुरू होगी मकानों की गणना। प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आइए सुने संजीव अभयंकर का गायन, राग है भैरव। आपके साथ संगत कर रहे हैं तबले पर केदार पंडित और हारमोनियम पर प्रमोद मराठे।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे संजीव अभयंकर का गायन राग था भैरव। आपके साथ संगतकार थे हारमोनियम पर प्रमोद मराठे और तबले पर केदार पंडित। इसी के साथ ही शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। सुबह के 8 बजने को हैं समाचार प्रभात, आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से बस कुछ ही पलों में।
1: कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडस के साथ वार्ता करेंगे। नई दिल्ली में पहली जून को आयोजित होने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन स्थगित। रेलवे ने यात्रियों से सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना तुरंत हेल्पलाइन नंबर 139 पर देने को कहा। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आजीकर दुष्कर्म हत्या मामले में आरोपों को छिपाने की जांच के लिए सीबीआई की विशेष टीम गठित करने का आदेश दिया। पुलवामा आतंकी हमले के एक मास्टरमाइंड हमजा बुरहान को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अज्ञात हमलावरों ने मार गिराया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा की आपूर्ति करने को तैयार। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडस से वार्ता करेंगे। श्री क्रिस्टोडोलाइडस कल नई दिल्ली पहुंचे। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टमटा ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इससे पहले श्री क्रिस्टोडोलाइडस मुंबई भी आ चुके हैं, उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद श्री क्रिस्टोडोलाइडस की ये पहली भारत यात्रा है।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति विभिन्न पारस्परिक हितों के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। इन क्षेत्रों में व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति, आवागमन, रक्षा और सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, AI, फिनटेक, नवाचार और अनुसंधान शामिल हैं। साइप्रस के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। दोनों देश

0: अगले वर्ष फरवरी में अपने राजनयिक संबंधों के 65 वर्ष पूरे करेंगे। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। नई दिल्ली में 1 जून को होने वाले प्रथम अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA शिखर सम्मेलन स्थगित कर दिया गया है। इसका आयोजन 4th भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन के साथ किया जा रहा था, क्योंकि कई अफ्रीकी देश बिग कैट्स के मेजबान हैं। एक रिपोर्ट।
2: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष और अफ्रीकी संघ आयोग के साथ परामर्श करके 4th भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन को बाद में आयोजित करने के फैसले के बाद ये निर्णय लिया गया है। अफ्रीकी देशों सहित सभी देशों की व्यापक और सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ये शिखर सम्मेलन भी बाद में आयोजित किया जाएगा। भारत सरकार ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन अपने नोडल संगठन राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के माध्यम से 2024 में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की स्थापना की। इसकी शुरुआत बाघ, शेर, तेंदुए, हिम तेंदुए, चीतो, जगुआर और प्यूमाओं के संरक्षण के लिए की गई थी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रेल मंत्रालय ने रेलवे के बुनियादी ढांचे और ट्रेन संचालन को निशाना बनाकर हाल ही में हुई घटनाओं के बीच यात्रियों से यात्रा के दौरान सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना हेल्पलाइन नंबर 139 पर तुरंत देने का आग्रह किया है। एक रिपोर्ट।
6: नई दिल्ली के रेल भवन में कल रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक के बाद ये आग्रह किया गया। मंत्रालय के अनुसार आग लगने की कुछ घटनाओं सहित हाल ही में हुई कई घटनाओं की प्रारंभिक जांच में असामाजिक तत्वों की संलिप्तता के संकेत मिले हैं। कई मामलों में रेलवे अधिकारियों द्वारा समय पर और सक्रिय कार्रवाई से बड़ी दुर्घटनाओं को रोकने में सहायता मिली है। बैठक में रेलवे नेटवर्क में सीसीटीवी कवरेज बढ़ाने और रेलवे बोर्ड मुख्यालय तथा जोन के बीच समन्वय सुधारने पर भी विचार विमर्श किया गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आधुनिक उपकरणों की सहायता से जमीनी स्तर पर खुफिया जानकारी जुटाने की व्यवस्था मजबूत की जा रही है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
5: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज से राजस्थान के 2 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। रेल मंत्री जोधपुर में विभिन्न रेल सेवाओं का उद्घाटन करेंगे। जोधपुर रेलवे स्टेशन पर आयोजित मुख्य कार्यक्रम में वे 20 डिब्बों वाली जोधपुर दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे, जो पहले केवल 8 डिब्बों के साथ चल रही थी। श्री वैष्णव साबरमती जोधपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस के जैसलमेर तक का विस्तार का भी उद्घाटन करेंगे। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को 3 सदस्यीय विशेष

0: जांच दल गठित करने का आदेश दिया है। ये दल अगस्त 2024 में आरजीकर मेडिकल कॉलेज की प्रशिक्षु डॉक्टर के दुष्कर्म और हत्या मामले की विस्तृत जांच करेगा। एक रिपोर्ट।
1: इस घटना ने राज्य के साथ साथ देश भर के चिकित्सक समुदाय में आक्रोश पैदा कर दिया था। घटना के तुरंत बाद सबूत नष्ट करने और मामले को दबाने का आरोप है। न्यायमूर्ति शंपा सरकार और तीर्थांकर घोष की खंडपीठ ने कल कहा कि सीबीआई के पूर्वी क्षेत्र के संयुक्त निदेशक इस दल का नेतृत्व करेंगे। पीठ ने कहा कि इस जघन्य घटना के सामाजिक परिणामों को ध्यान में रखते हुए 3 सदस्यीय विशेष जांच समिति साक्ष्य नष्ट करने के आरोपों और मृतक डॉक्टर के माता पिता द्वारा घटना को दबाने के आरोपों की जांच करेगी। जांच दल को अदालत ने 25 जून तक एक विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। डॉक्टर के माता पिता ने दुष्कर्म और हत्या की आगे की जांच की मांग करते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। उनका दावा है कि इस जघन्य अपराध में एक से अधिक व्यक्ति शामिल थे। कोलकाता से संदीपन दास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: सीबीआई ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में लातूर के एक बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज शिरूरे को हिरासत में लिया है। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी को संदेह है कि डॉक्टर शिरूरे ने कथित तौर पर अपनी बेटी के लिए नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र खरीदा था। सीबीआई अधिकारियों ने कुछ दिन पहले डॉक्टर शिरूरे के लातूर स्थित अस्पताल जाकर गहन पूछताछ भी की थी। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में आज 2 और मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। वीसीके के वन्नी यारासू और आईयूएमएल के एएम शाहजहां को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। चेन्नई के लोकभवन में सवेरे 10 बजे राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पाकिस्तान वाले कब्जे वाले कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वे अलबद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। पुलिस के अनुसार मुजफ्फराबाद में अज्ञात हमलावरों ने उस पर कई गोलियां चलाई। गंभीर रूप से घायल बुरहान को अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई। हमजा बुरहान जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले का रहने वाला था और पाकिस्तान जाकर अलबद्र आतंकी संगठन में शामिल हो गया था। 2019 के पुलवामा आतंकी हमले में 40 से अधिक सीआरपीएफ जवान शहीद हुए थे। पंजाब पुलिस ने पठानकोट जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 पर इंटरनेट से जुड़े सीसीटीवी कैमरे लगाकर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में पठानकोट निवासी को गिरफ्तार किया है। पठानकोट के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दलजिंदर सिंह ढिल्लों ने बताया कि प्रारंभिक जांच के अनुसार आरोपी बलजीत सिंह ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक पुल के पास सीसीटीवी कैमरा लगाया था। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा बेचने को तैयार है। उन्होंने ये बात होर्मोज जल डमरू मध्य के बंद होने के कारण भारत में ऊर्जा की बढ़ती कीमतों से संबंधित एक प्रश्न के उत्तर में कही।
2: भारत के साथ बहुत कुछ करने को है। वो एक महान सहयोगी और साझेदार है। क्या एक महत्वपूर्ण यात्रा है। मुझे लगता है कि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा और हम वहाँ क्वाड के साथ भी बैठक करेंगे। विदेश मंत्री के रूप में मेरी पहली बैठक क्वाड के साथ ही हुई थी। मुझे खुशी है कि हम अब भारत में यह बैठक कर पा रहे हैं और हम इस साल के अंत में भी एक और बैठक करेंगे।
0: श्री रूबियो 23 से 26 मई तक भारत में रहेंगे। इस दौरान वे कोलकाता, आगरा, जयपुर और नई दिल्ली का दौरा करेंगे। 26 मई को क्वाड की बैठक में श्री रूबियो ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तिशुमित्सु के भाग लेने की संभावना है। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। भारत के चंद्रयान 3 चंद्र मिशन को अमरीकी वैमानिकी और अंतरिक्ष विज्ञान संस्थान ने 2026 का गोडार्ड अंतरिक्ष पुरस्कार प्रदान किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की ओर से अमरीका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा ने ये पुरस्कार ग्रहण किया। कांस फिल्म महोत्सव में कल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई से बनी एक नई फिल्म का प्रीमियर हुआ। हेल ग्राइड नामक एक 95 मिनट की फिल्म को 15 लोगों की टीम ने केवल 14 दिन में तैयार किया है। इस पर लगभग $500,000 की लागत आई है। मणिपुर पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह को कैबिनेट सचिवालय में सुरक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। सुरक्षा सचिव विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी के प्रमुख होते हैं। आईपीएल क्रिकेट में कल रात गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया। इसके साथ ही चेन्नई की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। ये मैच हैदराबाद में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू की स्थिति के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
1: धन्यवाद फरहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इटली दौरे से भारत लौटने का समाचार सभी समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित किया है। राजस्थान पत्रिका लिखता है, 65 समझौते, यूएई से इटली तक दिखा भारत का रणनीतिक दबदबा। लोकसत्ता के शब्द हैं, 6 दिवसीय मैराथन दौरे में कच्चे तेल से अंतरिक्ष तक 57 करार। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा राज्य के सभी मदरसों में वंदे मातरम अनिवार्य करने का समाचार भी आज सभी समाचार पत्रों की सुर्खी बनी है। जनसत्ता लिखता है, पश्चिम बंगाल सरकार का आदेश, सभी मदरसों में अब वंदे मातरम गाना अनिवार्य है। हिंदुस्तान ने पुलवामा आतंकी हमले के साजिशकर्ता की मौत का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, पीओके में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर ढेर किया, पुलवामा हमले का सूत्रधार मारा गया। अमर उजाला ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अहम बैठक में लिए गए निर्णयों पर समाचार दिया है। सरकारी कामकाज में लेट लतीफी पर पीएम सख्त, मंत्रियों को तेजी से परिणाम देने का अल्टीमेटम, मंत्रालयों और नीति आयोग ने पेश की कार्य योजना। 35 शहरों में रात का पारा 30 पार, दिल्ली में 14 साल का रिकॉर्ड टूटा, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। पंजाब केसरी लिखता है, हीट स्ट्रोक का कहर, 2 मरीज अस्पताल में भर्ती। नव भारत टाइम्स ने अपने संपादकीय पन्ने पर हंता वायरस पर लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, वायरस कहीं आतंकी न बन जाए, कोरोना और हंता वायरस ने बढ़ाई तकनीकी विकास के गलत इस्तेमाल की चिंता। संपादक लिखता है, दुनिया को अब फिक्र सता रही है कि आने वाले दिनों में कहीं आतंकी संगठन वायरसों का इस्तेमाल न करने लगे।
0: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति के साथ वार्ता करेंगे। नई दिल्ली में 1 जून को आयोजित होने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन स्थगित। रेलवे ने यात्रियों से सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना तुरंत हेल्पलाइन नंबर 139 पर देने को कहा। पुलवामा आतंकी हमले के एक मास्टरमाइंड हमजा बुरहान को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अज्ञात हमलावरों ने मार गिराया। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम वीसी प्रमोद। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू होल्ड टॉक्स विद प्रेसिडेंट ऑफ साइप्रस निकोस क्रिस्टोडोलाइडस इन न्यू दिल्ली टुडे। First International Big Cat Alliance Summit scheduled to take place in New Delhi on June 1st, postponed. Railways urges passengers to remain alert and immediately report any suspicious activity or individual on railway premises on helpline number 139. Calcutta High Court orders setting up special team of CBI to probe hushing up charges in RG Kar rape murder case. Pulwama terror attack mastermind Hamza Burhan killed by unknown gunmen in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. U.S. Secretary of State Marco Rubio says Washington is ready to sell as much energy as India is willing to buy. And in IPL cricket, Gujarat Titans beat Chennai Super Kings by 89 runs in Ahmedabad. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with President of Cyprus, Nikos Christodoulidis, in New Delhi today. He was received by Union Minister of State for Road Transport and Highways, Ajay Tamta, at the Delhi airport. He is accompanied by a high-level delegation comprising Minister of Foreign Affairs, Dr. Konstantinos Kombos, Minister of Transport, Communications and Works, Alexis Vefaidis, senior officials and business leaders. This is the first visit of President Christodoulidis to India in his current capacity. A report.
3: Prime Minister Narendra Modi and the President of Cyprus will hold discussions on further strengthening bilateral cooperation in various areas of mutual interest. The areas include trade, investment, technology, education, culture, mobility, defense and security, artificial intelligence, fintech, innovation and research. They will also exchange views on issues of regional and global importance, including cooperation in multilateral fora. Several agreements will be signed and exchanged after the talks. The President of Cyprus will meet President Draupadi Murmu at the Rashtrapati Bhavan today evening. The visit of President of Cyprus taking place within a year of the historic visit of Prime Minister Narendra Modi to Cyprus in June last year, which was the first visit by an Indian Prime Minister to Cyprus in over 2 decades. This visit also assumes added significance in

0: and the Statesman headlines, PM Modi chairs high-level governance review meeting amid global concerns. The Asian Age headlines, first coalition government in Tamil Nadu in 74 years, 23 join cabinet, while the Times of India says, Vijay expands Tamil Nadu cabinet with 7 Dalit ministers, Congress back in government after 59 years. Almost all newspapers carry the story of the India-Africa-Delhi summit being postponed due to the Ebola crisis. The Tribune headlines, Ebola scare delays India-Africa summit. Most papers cover the story of Hamza Burhan, a key figure linked to the 2019 Pulwama attack, which killed 40 CRPF jawans being shot at in POK. The Hindu, in its editorial titled Castaway, writes that people must have the option to state they are casteless in the census. The paper adds that the Supreme Court was not wrong to dismiss a petition that sought to stall the caste census, which is part of the ongoing census 2027. The Chief Justice of India remarked that any government of the day must know how many people are backward and how many need welfare. And finally, the Statesman on its front page says, ahead of Nautapa, plain simmer, but some respite around May 29th. And with that, it's back to you, Pramod.
1: Thank you. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with President of Cyprus, Nikos Christodoulidis, in New Delhi today. First International Big Cat Alliance Summit scheduled to take place in New Delhi on the June 1st postponed. Railway urges passengers to remain alert and immediately report any suspicious activity or individual on railway premises on helpline number 139. Calcutta High Court orders setting up special team of CBI to probe hushing up charges in RG Kar rape murder case. Pulwama terror attack mastermind Hamza Burhan killed by unknown gunmen in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. U.S. Secretary of State Marco Rubio says Washington is ready to sell as much energy as India is willing to buy. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। पहले इस वक्त की खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में कुब्रुस के सदर निकोस क्रिस्टोडुलाइडिस के साथ बातचीत करेंगे। नई दिल्ली में बिग कैट अलायंस की 1 जून को होने वाली पहली बैन अलाक्वामी सरबराह कॉन्फ्रेंस मुलतवी कर दी गई है। रेलवे के महकमे ने मुसाफिरों पर जोर दिया है कि वो चौकस रहें और रेलवे अहाते में किसी भी तरह की मुश्तबा सरगर्मी या मुश्तबा अफराद के बारे में जानकारी बिला ताखीर हेल्पलाइन नंबर 139 पर दें। कलकत्ता हाईकोर्ट ने आरजी कर आबरूरेजी और कत्ल केस में इल्जाम पर पर्दा डालने के मामले की तहकीकात के लिए सीबीआई की खसूसी टीम कायम किए जाने का हुक्म दिया है। पुलवामा दहशतगर्दाना हमले का सरगना हमजा बुरहान पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के इलाके में नामालूम मुसल्ला अफराद के हाथों मारा गया है। अमरीका के वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि भारत जितनी भी तवानाई खरीदना चाहता है अमरीका उसे फरोख्त करने के लिए तैयार है। और आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में कुब्रुस के सदर निकोस क्रिस्टोडुलाइडिस के साथ बातचीत करेंगे। कुब्रुस के सदर कल नई दिल्ली पहुंचे हैं। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकजी वजीर ममलिकत अजय तमता ने हवाई अड्डे पर उनका खैर मकदम किया। कुब्रुस के सदर के हमरा वजीर खारजा ट्रांसपोर्ट मवासलात और कामकाज के महकमे के वजीर सीनियर अहदेदारान और कारोबारियों पर मुश्तमिल एक आला सतही वफद भी है। ये उनका भारत का पहला दौरा है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
3: वजीर आजम नरेंद्र मोदी और कुब्रुस के सदर बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा इश्तराक को मजीद मुस्तहकम करने की खातिर बातचीत करेंगे। इनमें तिजारत सरमायाकारी टेक्नोलॉजी तालीम सकाफत मोबिलिटी दिफा और सिक्योरिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फिनटेक इख्तरा और तहकीक जैसे शोबे शामिल हैं। वो कसीर रुखी इश्तराक समेत इलाकाई और आलमी अहमियत के हामिल मामलात पर भी नजरियात का तबादला करेंगे। बातचीत के बाद मुख्तलिफ मुआहिदों पर दस्तखत किए जाएंगे। जनाब मोदी

0: इंसाफ की मांग को जिंदा रखा। संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए अर्जुमन अली खान।
1: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के इलाके में नामालूम मुसल्लह अफराद की फायरिंग में हमजा बुरहान मारा गया है, जिसके बारे में यह कहा जाता है कि वो 2019 के पुलवामा दहशतगर्दाना हमले का एक सरगना था। इस हमले में सीआरपीएफ के 40 से ज्यादा अहलकारों की मौत हो गई थी। हमजा बुरहान अलबद्र दहशतगर्द ग्रुप का एक कमांडर था। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी की कई सरगर्मियों में उसके मुलव्वस होने के बिना पर अप्रैल 2022 में भारत ने उसे दहशतगर्द करार दिया था। पुलवामा हमले के बाद से वो पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के इलाके में एक टीचर के भेस में रह रहा था। मकामी पुलिस के मुताबिक गोजरा मुजफ्फराबाद में एक प्राइवेट कॉलेज के प्रिंसिपल बुरहान को उस वक्त निशाना बनाया गया जब वो कल सुबह अपने कॉलेज से बाहर निकल रहा था। हमजा बुरहान जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले का रहने वाला था। बाद में वो पाकिस्तान चला गया और अलबद्र दहशतगर्द ग्रुप में शामिल हो गया। पंजाब पुलिस ने पठानकोट के एक बाशिंदे को पठानकोट जम्मू कौमी शाहराह 44 पर इंटरनेट से मुंसलिक सीसीटीवी कैमरा नस्ब करके पाकिस्तान में मुकीम अपने अकाउंट के लिए जासूसी करने के लिए गिरफ्तार किया है। पठानकोट के एसएसपी दिलजिंदर सिंह ढिल्लो ने आकाशवाणी न्यूज को बताया कि इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक मुलजिम बलजीत सिंह ने मुबैना तौर पर फौज और नीम फौजी दस्तों की नकलो हरकत पर नजर रखने के लिए कौमी शाहराह 44 पर एक पुल के नजदीक सीसीटीवी कैमरा नस्ब किया था। इसकी लाइव फीड पाकिस्तान में मुकीम आईएसआई के कारिंदों से शेयर की जा रही थी। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्री माता वैष्णो देवी मंदिर में नए तामीर किए गए वैष्णवी भवन को अकीदतमंदों को वक्फ किया। इसका मकसद पवित्र गुफा में वाकई मंदिर में यात्रियों के लिए सहूलियात को बेहतर बनाना और उनके कयाम की सहूलियात में इजाफा करना है। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब मनोज सिन्हा ने कहा कि नए भवन के तामीर होने से वहां हर साल आने वाले यात्रियों की बढ़ती हुई तादाद के मद्देनजर उन्हें जदीद तर्ज का आरामदेह बुनियादी ढांचा फराहम किया जा सकेगा। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि अमरीका भारत को जितनी वो चाहे तवानाई फरोख्त करने के लिए तैयार है। उन्होंने आबनाए हुरमुज के बंद होने के सबब भारत पर तवानाई की आला कीमतों के असर के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए यह बात कही। स्वीडन और भारत के अपने दौरे पर रवाना होते हुए मियामी में नामानिगारों से बातचीत के दौरान वजीर मौसूफ ने यह इजहार ख्याल किया। उन्होंने भारत को एक अजीम शराकत दार भी करार दिया और कहा कि उनका दौरा इसीलिए अहमियत का हामिल है क्योंकि इस मौके पर उन्हें क्वाड ममालिक के वुजरा से मुलाकात का मौका मिलेगा। उत्तर प्रदेश में दर्जा हरारत तमाम रिकॉर्ड तोड़ रहा है और पूरी रियासत शदीद गर्मी की गिरफ्त में है। लगातार पांचवें दिन रियासत का बांदा जिला मुल्क में सबसे गर्म मकाम रहा। वहां दिन का दर्जा हरारत 47.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
2: रियासत में पारा हर गुजरने वाले दिन के साथ ही नई बुलंदी पर पहुंच रहा है। बुंदेलखंड खिता सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। वहां बेशतर मकामात पर टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस से तजावुज कर गया है। बांदा में ये 47.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो नॉर्मल से 4 डिग्री ज्यादा है और इससे शहर में रोजमर्रा की जिंदगी दरहम बरहम होकर रह गई है। प्रयागराज में भी टेम्परेचर 46.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है जो मामूल से 5 डिग्री ज्यादा है। लोगों को रात के वक्त भी गर्मी की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि रात में भी पारा 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास चल रहा है। लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शमीम इरफान।
1: भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने आज उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में शदीद से बहुत शदीद गर्मी के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी तेज गर्मी के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में भी आज सख्त गर्मी का इम्कान है। इस दौरान दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आज रात में भी मौसम गर्म रहेगा। IMD ने पंजाब और मकरबी राजस्थान में आज कहीं कहीं धूल भरी आंधी का भी इम्कान जाहिर किया है। दिल्ली हुकूमत ने कौमी राजधानी में पानी की बचत को मुस्तहकम करने की खातिर एक अहम इकदाम का ऐलान किया है, जिसके तहत मानसून के आगाज से पहले 75 सरकारी स्कूलों में बारिश के पानी को जखीरा करने के निजाम को बहाल किया जाएगा और उसे इस्तेमाल में लाया जाएगा। दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता ने कहा कि इम्कान है कि इससे बारिश के पानी को जखीरा करने की सलाहियत तकरीबन 50 करोड़ लीटर हो जाएगी। IPL क्रिकेट में कल रात अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटन्स ने

0: सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया। गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 230 रन का जीत का बड़ा निशाना दिया था और चेन्नई की टीम महज 13 ओवर्स और 4 गेंदों में 140 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। शिवम दुबे ने सबसे ज्यादा 47 रन बनाए। गुजरात टाइटंस के लिए मोहम्मद सिराज, राशिद खान और कागिसो रिबाडा ने 3-3 विकेट हासिल किए। मोहम्मद सिराज को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं अर्जुमन अली खान।
1: शुक्रिया शगुफ्ता। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी के तौर पर शाये किया है। रोजनामा इनकलाब की शह सुर्खी है, गैर मुल्की दौरे के बाद वजीर आजम की सदारत में काबीना की अहम मीटिंग, बहरान के दौरान अवाम को बिला तातुल सहूलतें फराहम करने का आजम, तमाम वजरा को अपने महकमों में गैर जरूरी अखराजात कम करने की हिदायत। हिंदुस्तान एक्सप्रेस के सफ़े अव्वल की अहम खबर है, मुल्क में एसआईआर के तीसरे मरहले का आगाज, 16 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम 3 इलाकों में खसूसी नजरसानी मुहिम चलेगी। वजीर दिफा ने जनूबी कोरिया में बनी हिंदुस्तानी जंगी यादगार का इफ्तिताह किया। रोजनामा प्रताप ने इस खबर को अपने सफ़े अव्वल पर नुमाया अहमियत के साथ शाये किया है। इसी सफ़े पर दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता का यह बयान भी मौजूद है कि दिल्ली में नए राशन कार्ड बनने शुरू, 7.72 लाख लोगों को मिलेगा फायदा।
0: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में कुब्रुस के सदर निकोस क्रिस्टोडोलाइडिस के साथ बातचीत करेंगे। नई दिल्ली में बिग कैट अलायंस की 1 जून को होने वाली पहली बैन अलावामी सरबराह कॉन्फ्रेंस मुलतवी कर दी गई है। रेलवे के महकमे ने मुसाफिरों पर जोर दिया है कि वो चौकस रहें और रेलवे अहाते में किसी भी तरह की मुश्तबा सरगर्मी या मुश्तबा अफराद के बारे में जानकारी बिला ताखीर हेल्पलाइन नंबर 139 पर दें। कलकत्ता हाईकोर्ट ने आरजीकर आबरूरेजी और कत्ल केस में इल्जामात पर पर्दा डालने के मामले की तहकीकात के लिए सीबीआई की खसूसी टीम कायम किए जाने का ऐलान किया है। अमरीका के वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि भारत जितनी भी चाहे तवानाई खरीद सकता है, अमरीका उसे फरोख्त करने के लिए तैयार है। और आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।
2: मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। सुबह के 8:45 हुए हैं। सदाबहार फिल्मी गानों का कार्यक्रम मधुरिमा हम लेकर आएंगे इस संदेश के पार।
3: अब लोन प्रोसेसिंग में इतनी देरी, ये सब ना तुमसे नहीं होगा।
4: लो तुम ही कर लो।
3: देखो तुम झूठ बोला लगे।
5: इधर आओ। क्या बात?
4: फाइनेंशियल एसेट्स का प्रमाण देना है, इस वजह से लोन अटका है।
5: देखो अकाउंट एग्रीगेटर से जुड़ो। अकाउंट एग्रीगेटर बैंक इत्यादि के पास उपलब्ध आपकी वित्तीय जानकारी को आपकी स्पष्ट सहमति से ऋण देने वाली वित्तीय संस्थाओं से साझा करता है।
4: पापा, इट वाज सो इजी।
5: आरबीआई कहता है
6: जानकार बनिए,
7: सतर्क रहिए।
8: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
9: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
8: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
9: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
8: बुकिंग है तो संपर्क करें
10: 0542227658
11: 0542227658। आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम

0: మధురిమా ద సౌండ్ ఆఫ్ మెలోడీ మధురిమా
1: संदेश हुआ पूरा सदाबहार फिल्मी गानों का कार्यक्रम मधुरिमा में आपका स्वागत है। पहला गाना मुकेश की आवाज़ में, गीत के बोल लिखे हैं नीरज ने, संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने, फिल्म है पहचान।

ये अंदाज था मुकेश का, फिल्म थी पहचान। अब आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में प्रेम पर्वत फिल्म का गाना। गीत के बोल लिखे हैं जानिसार अख्तर ने, संगीत दिया है जयदेव ने।

0: अगला गीत इस संदेश के पार।
1: Hey girls,
2: hey, congratulations.
1: आज तो पार्टी चाहिए।
3: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
4: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
1: पिज़्ज़ा पार्टी, ये। चल अपना कार्ड और पिन दे।
4: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
1: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
4: आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: संदेश हुआ पूरा। फिल्म संगीत के कार्यक्रम मधुरिमा में एक बार आपका पुनः स्वागत। आइए सुने नया दौर फिल्म का गाना, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की युगल स्वरों में।

अब आइए सुनते हैं अलग अलग फिल्म का गाना किशोर कुमार की आवाज़ में। आनंद बख्शी के बोल हैं, राहुल देव बर्मन का संगीत।

0: Madhurima, the sound of melody. Madhurima.
1: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं. 9:15 हुआ चाहते हैं. हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए.

0: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। जिले की हलचल।
1: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है। जिले की हलचल आज सुनिए बदायूं और बुलंदशहर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं बदायूं जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मोहम्मद नईम का।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिनों हरदोई में आयोजित कार्यक्रम में मेरठ से प्रयागराज तक बनाए गए गंगा एक्सप्रेसवे का लोकार्पण राष्ट्र को समर्पित किया। वहीं बदायूं जिले के खटपुरी बिनावर इंटरचेंज के समीप आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा व जनप्रतिनिधियों ने किया। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि बदायूं के विकास में गंगा एक्सप्रेसवे मील का पत्थर साबित होगा। हरदोई में आयोजित कार्यक्रम का सजीव प्रसारण बदायूं में दिखाया गया, जिसे जनप्रतिनिधियों व आमजन ने देखा। गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ जिले से प्रारंभ होकर प्रयागराज तक कुल 12 जिलों से गुजरने वाला 594 किलोमीटर लंबा है। बदायूं में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने कहा कि आजादी के बाद से जितने विकास कार्य 60 सालों में नहीं हुए, उससे ज्यादा विकास कार्य डबल इंजन की सरकार में हुए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के कार्यकाल में विभिन्न एक्सप्रेसवे, फ्लाईओवर, अन्य विकास कार्य हुए हैं, जिसका सीधा लाभ आम जनता तक पहुंचा है। उन्होंने कहा कि पहले प्रधानमंत्री ने 2 करोड़ दीदियों को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा था। वर्तमान में 2,70,00,000 दीदियां लखपति हैं। अब प्रधानमंत्री ने स्वयं सहायता समूह की 6 करोड़ दीदियों को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा है, जिस पर कार्य किया जा रहा है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि गंगा एक्सप्रेसवे बन जाने से लखनऊ व दिल्ली की दूरी कम हुई है। उन्होंने कहा कि गंगा एक्सप्रेसवे बन जाने से पूर्वी उत्तर प्रदेश व पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बीच की दूरी कम हुई है। इससे व्यापार बढ़ेगा, रोजगार सृजन होगा, किसानों को लाभ होगा व आमजन को भी इसका सीधा लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार जो कहती है वो पूरा करके दिखाती है। बदायूं में इस एक्सप्रेसवे के समीप 2 औद्योगिक पार्क गलियारे भी बनाए जा रहे हैं। इससे रोजगार सृजन होगा और युवाओं को इसका सीधा लाभ मिलेगा। केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने आकाशवाणी को बताया।
3: ये गंगा एक्सप्रेस वे 594 किलोमीटर लंबा, जिसमें 12 जनपद सीधे से जोड़ रहे हैं। और बदायूं की विशेषता ये 21 इंटरचेंज है, उनमें से हमको 3 इंटरचेंज मिले।
2: पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार जयवीर सिंह व केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा व अन्य जनप्रतिनिधियों ने बीते दिनों बदायूं जिले के कछला गंगा घाट पर आयोजित कार्यक्रम में पर्यटन विभाग की परियोजनाओं का बटन दबाकर लोकार्पण व शिलान्यास किया। इस दौरान पर्यटन मंत्री ने कहा कि सरकार ने बेहतर कानून व्यवस्था, बेहतर अवस्थापना व विकास कार्य तथा बेहतर कनेक्टिविटी देने का कार्य किया। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि पर्यटन विभाग देश की सांस्कृतिक व पौराणिक धरोहरों को विकसित व संरक्षित करने का कार्य कर रहा है। भारत की जनगणना 2027 के प्रथम चरण मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना के अंतर्गत स्वयं गणना अवधि दिवस पर जिलाधिकारी अवनीश राय द्वारा कलेक्ट्रेट स्थित अपने कार्यालय कक्ष और भाजपा जिलाध्यक्ष राजीव गुप्ता ने अपने आवास से स्वयं गणना की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूर्ण कर जनपद वासियों को जनगणना अभियान में सक्रिय सहभागिता के लिए प्रेरित किया। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष राजीव गुप्ता ने कहा कि हम सभी भारत की जनगणना 2027 में बढ़ चढ़कर भाग लें तथा राष्ट्र निर्माण एवं समग्र विकास में अपनी महत्वपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित करें। उत्तर प्रदेश में जनगणना का प्रथम चरण में मकान सूचीकरण एवं

0: कानों की गणना का कार्य 22 मई से 20 जून 2026 तक होगी। जनगणना के शुरू होने से 15 दिन पूर्व यानी के 7 मई से 21 मई तक स्वयं गणना करने की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। लोग स्वयं अपने मोबाइल कंप्यूटर अथवा लैपटॉप से घर बैठे जनगणना की पूरी जानकारी भर सकेंगे। स्वयं गणना देश में पहली बार हो रही है, जिससे प्रक्रिया अधिक आसान, तेज एवं पारदर्शी रहेगी। स्वयं गणना करने वाले लोग ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर अपने परिवार से जुड़ी समस्त जानकारी खुद भर सकेंगे। सुरक्षित करने पर 11 अंकों की एक स्वयं गणना पहचान संख्या SI ID जारी होगी, जिसे सुरक्षित नोट कर रखें। स्वयं गणना के बाद 22 मई 20 जून 2026 तक प्रांगणक घर घर जाकर जनगणना करेंगे। जिन्होंने पहले ही स्वयं गणना कर ली है, उन्हें अपने 11 अंकों की SI ID बतानी होगी। बदायूं जिले में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत गर्भवती और धात्री महिलाओं को पोषण और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के साथ साथ आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान उचित देखभाल, संतुलित आहार और संस्थागत प्रसव के लिए प्रोत्साहित करना है, जिससे मातृ और शिशु मृत्यु दर में कमी लाई जा सके। योजना के अंतर्गत अप्रैल 2017 से दिसंबर 2025 तक बदायूं में कुल 13,799 लाभार्थियों को योजना से आच्छादित किया गया। इस योजना के अंतर्गत पंजीकरण कराने वाली महिलाओं को पहली किस्त गर्भावस्था के प्रारंभिक चरण में पंजीकरण के बाद, दूसरी किस्त प्रसव पूर्व जांच टीकाकरण के उपरांत और तीसरी किस्त बच्चे के जन्म के बाद आवश्यक टीकाकरण पूर्ण होने पर प्रदान की जाती है। इससे न केवल महिलाओं को आर्थिक संबल मिलता है, बल्कि वे नियमित स्वास्थ्य एवं सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं से भी जुड़ती हैं। महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज परियोजना निदेशक कार्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ के आदेशों के क्रम में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में परिषदीय उच्च प्राथमिक सविलियन विद्यालय में कार्यरत अंशकालिक अनुदेशकों के सम्मान एवं बड़े हुए मानदेय वितरण का सजीव प्रसारण बदायूं के अटल बिहारी सभागार में किया गया। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा, प्रदेश के राज्य मंत्री अरुण कुमार और जिले के जनप्रतिनिधियों द्वारा बड़े मानदेय का चेक और प्रतीक चिन्ह देकर अंशकालिक अनुदेशकों को सम्मानित किया गया।
1: बदायूं जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं बुलंदशहर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है श्रीपाल सिंह का।
2: उत्तर प्रदेश शासन के आदेशानुसार बीते दिनों बुलंदशहर जनपद के विकास भवन सभागार में अनुदेशक सम्मान एवं बढ़े हुए मानदेय वितरण के शुभारंभ हेतु एक भव्य जनपद स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस समारोह में जिला पंचायत अध्यक्ष अंतुल तेवतिया ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान लोक भवन सभागार लखनऊ में आयोजित राज्य स्तरीय मुख्य कार्यक्रम का सजीव प्रसारण दिखाया गया। शासन द्वारा अनुदेशकों के मानदेय को 9,000 रूपए से बढ़ाकर 17,000 रूपया प्रतिमाह करने का निर्णय लिया गया है, जो 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो चुका है। जनपद स्तरीय समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर अंतुल तेवतिया ने कहा कि प्रदेश निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। अंतुल तेवतिया ने अनुदेशकों को बधाई देते हुए कहा कि मानदेय में यह वृद्धि केवल एक आर्थिक सहायता नहीं है, बल्कि यह अनुदेशकों के अटूट समर्पण और कड़ी मेहनत का सच्चा सम्मान है। उन्होंने यह भी कहा कि बेहतर शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग में व्यापक और सकारात्मक बदलाव किए गए हैं। बुलंदशहर में जिला पंचायत सभागार में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की बैठक का आयोजन हुआ। इसकी अध्यक्षता सांसद भोला सिंह ने की। बैठक के दौरान जनपद में संचालित केंद्रीय व राज्य स्तरीय योजनाओं की समीक्षा करते हुए सांसद भोला सिंह ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि समिति द्वारा दिए गए निर्देशों का समय से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। बुलंदशहर में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा बाढ़ स्टेयरिंग ग्रुप की एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व द्वारा बैठक में उपस्थित जनपद के समस्त अधिकारियों को अपनी अपनी बाढ़ कार्य योजना को अतिशीघ्र तैयार कर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बुलंदशहर को उपलब्ध कराए जाने हेतु निर्देशित किया गया। अधिशासी अभियंता सिंचाई नोडल अधिकारी बाढ़ को समस्त परियोजनाओं को समय पूर्ण किए जाने के संबंध में निर्देश दिए गए। साथ ही उप जिलाधिकारी शाना, नोडल अधिकारी डिबाई व अनुप शहर को समस्त नाविक गोताखोरों के साथ तहसील स्तर पर बैठक आयोजित किए जाने हेतु निर्देशित किया गया, जिससे संभावित बाढ़ प्रबंधन की तैयारियों में कोई कमी ना रह सके। बीते दिनों बुलंदशहर में भाजपा जिला कार्यालय पर महिला जन आक्रोश अभियान को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिले के प्रभारी मंत्री और प्रदेश के वन पर्यावरण राज्य मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। प्रेस वार्ता में जहां महिला जन आक्रोश अभियान के माध्यम से नारी शक्ति के सम्मान, अधिकार एवं जागरूकता के विषयों पर विचार विमर्श किया गया, वहीं प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए प्रभारी मंत्री ने कहा कि नारी शक्ति से ही राष्ट्र का सम्मान है। बुलंदशहर जिले में

0: जिलाधिकारी द्वारा निर्देशों के क्रम में गौशालाओं के नोडल अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के दूसरे दिन 41 गौ आश्रय स्थलों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान गौवंशों को गर्मी से बचाव हेतु जूट के बोरे टांगने की गई व्यवस्थाओं एवं स्वस्थ पीने के पानी, हरा चारा, भूसा, CCTV क्रियाशील आदि व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया गया। DM ने बताया कि गौ आश्रय स्थलों में लगभग 14,302 कुंतल भूसा दान एवं क्रय से संग्रह किया गया है। उन्होंने कहा, निरीक्षण में पाई गई कमियों का तत्काल निराकरण कराया जाएगा तथा नोडल अधिकारी द्वारा निरीक्षण प्रत्येक सप्ताह किया जाएगा। आजकल गर्मी का सितम जारी है, ऐसे में जनजीवन भी हीट वेव की वजह से प्रभावित हो रहा है। वेटनरी विभाग के प्रोविजनल ऑफिसर पवित्रजीत सिंह ने बताया कि गर्मी के सीजन में पशुपालकों को विशेष ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने ये भी बताया कि हीट वेव से पशुओं को बचाने के लिए पशुपालक क्या करें।
1: आप जहाँ पर पशु को बांध रहे हैं वहाँ पर आधा घंटे के लिए आप वहाँ रुकें। अगर आप वहाँ पर कंफर्टेबल हैं तो समझ लीजिए कि आपका पशु भी वहाँ पर कंफर्टेबल। अगर आप वहाँ गर्मी महसूस कर रहे हैं, सांस नहीं ले पा रहे हैं और वो जगह को छोड़ के जाना चाह रहे हैं, तुरंत उठे वहाँ से चाह रहे हैं, समझिए कि आपका पशु भी वही चाह रहा है। सवेरे शाम नहलाएं, पर्याप्त मात्रा में ठंडा साफ ताजा पानी देने के लिए हरा चारा दें और हरे चारे को देते वक्त ये ध्यान रखें कि वो सूखे हुए खेत से ना हो, पर्याप्त सिंचाई किया हुआ खेत ही हो जहाँ से वो चारा लाया गया।
0: बीते दिनों बुलंदशहर जनपद के प्रभारी मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने जिलाधिकारी कुमार हर्ष, CDO सुश्री निशा ग्रेवाल सहित संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में उन्होंने जनपद में संचालित सरकार की लाभार्थी परक योजनाओं, विकास कार्यों तथा कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में जनप्रतिनिधियों द्वारा संज्ञान में लाई गई समस्याओं के निस्तारण हेतु भी संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए।
2: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
3: जिले की हलचल कार्यक्रम समाप्त हुआ।
4: मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। 9:25 और 55 सेकंड्स। आइए सूचना दे दें खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में। पहली सूचना आई है कमिश्नरेट पुलिस जनपद वाराणसी की। खोए हुए व्यक्ति का नाम है लावण्या सिंह, इनके पिता का नाम है प्रकाश राय, ये निवासिनी हैं ग्राम कनकपुर थाना फूलपुर जनपद वाराणसी की। ये पिछले 8 अप्रैल 2026 से पिंडरा बाजार से लापता हैं। लावण्या सिंह के बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार हैं। उम्र 4 वर्ष, कद 3 फीट, रंग गेहुआ, चेहरा सामान्य है, इकहरा बदन। लावण्या सिंह के बारे में कोई भी सूचना या जानकारी हो तो अपने निकटतम थाने या फिर पुलिस कमिश्नरेट जनपद वाराणसी को सूचित करें। कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद चंदौली से ये सूचना आई है। खोए हुए व्यक्ति का नाम है अभिषेक साहनी, इनके पिता का नाम है रमाकांत, ये निवासी हैं ग्राम कांटा थाना सैयद राजा जनपद चंदौली के। ये पिछले 3 मई 2026 शाम 5 बजे के बाद से लापता हैं। अभिषेक साहनी के बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार हैं। उम्र 24 वर्ष, कद 5 फीट 6 इंच, रंग सांवला, चेहरा गोल है। ये लापता होने के समय हरे रंग का टी शर्ट व खाकी रंग का ट्राउजर पहने हुए हैं। अभिषेक साहनी के संबंध में कोई भी सूचना या जानकारी हो तो अपने निकटतम थाने या फिर कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद चंदौली को सूचित करें।

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद चंदौली से ही प्राप्त एक अन्य सूचना के अनुसार ये हैं आयुषी सिंह। इनके पिता का नाम है सतीश कुमार सिंह। ये निवासिनी हैं ग्राम रेवसा थाना कंदवा जनपद चंदौली के। ये पिछले 2 मई 2026 से लापता हैं। आयुषी सिंह के बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार हैं। उम्र 21 वर्ष, कद 5 फीट 3 इंच, रंग गेहुआ, इकहरा जिस्म, चेहरा लंबा है।

लापता होने के समय ब्राउन टी शर्ट, लोअर तथा पैर में हवाई चप्पल पहने हुए हैं। आयुषी सिंह के बारे में कोई भी सूचना या जानकारी हो तो अपने निकटतम थाने या फिर कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद चंदौली को सूचित करें।

यहीं से प्राप्त एक और सूचना के अनुसार ये हैं सुधा मसीह, इनके पिता का नाम है राम प्यारे, ये निवासिनी हैं साईं धाम कॉलोनी लखमीपुर। ये 27 अप्रैल 2026 से दिन 10 बजे से लापता हैं। सुधा मसीह के बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार। उम्र 23 वर्ष, कद 5 फीट 5 इंच, रंग सांवला ही गहरा बदन। सुधा मसीह के संबंध में कोई भी सूचना या जानकारी हो तो अपने निकटतम थाने या फिर कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद चंदौली को सूचित करें। इसी के साथ ही खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं अब समाप्त हुई। 9:30 होने वाला है। उर्दू कार्यक्रम आप सुनेंगे लखनऊ केंद्र से बस कुछ ही पलों में।

वाली कमाई से अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर रहे हैं। उनकी ये कहानी जब लोगों के बीच सामने आई तो हर कोई मोटिवेट हो गया। सामाइन, नाखून चबाने की आदत अक्सर मामूली लगती है, लेकिन इसके नतायज खतरनाक भी हो सकते हैं। हाल ही में 21 साल अमेरिकी लड़की गैबी सोल्स्की ने इस आदत के खतरात को बेहद वाजे तरीके से सामने रखा। दरअसल गैबी को बचपन से ही नाखून चबाने की आदत थी। ये उनके लिए आम और रोजमर्रा का मामूल बन चुका था, जिसे उन्होंने कभी ज्यादा संजीदगी से नहीं लिया। फरवरी की शुरुआत में उनके एक नाखून के किनारे छोटा सा हैंग नेल यानी जिल्द का फटा हुआ हिस्सा बन गया। आमतौर पर ऐसा होना कोई बड़ी बात नहीं होती, इसलिए गैबी ने भी इसे नजरअंदाज कर दिया। लेकिन कुछ ही दिनों में हालात बदलने लगे। उनकी उंगली में सूजन आने लगी और दर्द धीरे धीरे बढ़ने लगा। शुरुआत में उन्होंने सोचा कि ये आम इन्फेक्शन होगा जो अपने आप ठीक हो जाएगा, लेकिन हालात बिगड़ते चले गए। जब दर्द बर्दाश्त से बाहर हो गया और सूजन काफी बढ़ गई, तब उन्होंने डॉक्टर से राब्ता किया। इसके बाद डॉक्टरों ने इन्फेक्शन को रोकने के लिए उनकी उंगली को काटना मुनासिब समझा और बाद में उनकी उंगली काटनी पड़ी। सामाइन, आज के दौर में जहां सियासत में कुर्सी के लिए खींचतान मची है, वहीं दुनिया के एक कोने में एक ऐसा शहर भी है जहां के आवाम ने किसी इंसान को नहीं बल्कि एक कुत्ते को अपना रहनुमा मुंतखब किया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आपको बता दें कि अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक छोटा सा पहाड़ी कस्बा है इडविल, जहां पिछले 14 वर्षों से गोल्डन रिट्रीवर ब्रीड का कुत्ता ही शहर का मेयर बनता आ रहा है। इस अजब रवायत की शुरुआत 2012 में हुई, जब पहली बार मेयर मैक्स फर्स्ट ने इंतखाबात में फतेह हासिल की। मजेदार बात यह है कि ये मेयर सिर्फ नाम का नहीं है, कुत्ता बाकायदा अपनी वर्दी पहनकर शहर का जायजा लेता है और सयाहों का खैर मकदम भी करता है। समय चीन के वांग तियान किंग के लिए एक मामूली सरदर्द और मिर्गी के दौरे उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा खुलासा लेकर आएंगे, ऐसा उन्होंने कभी ख्वाब में भी तसव्वुर नहीं किया था। दरअसल साल 2011 में जब उनकी तबीयत बिगड़ी तो डॉक्टरों ने उनके दिमाग का सीटी स्कैन किया और रिपोर्ट देखते ही उनके होश उड़ गए, क्योंकि वांग के दिमाग के दाहिने हिस्से में एक गोली धसी हुई थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हैरान होकर जब डॉक्टरों ने वांग से उनके माजी के बारे में पूछा तो पता चला कि ये वाकया साल 1988 का था, जब वो सड़क पर टहल रहे थे। तभी उनके सिर पर कुछ तेजी से आकर लगा था। उस वक्त वांग को लगा कि किसी ने शरारत में गुलेल से पत्थर मारा है। चूंकि घाव मामूली था और खून भी ज्यादा नहीं निकला, इसलिए वांग ने आम मरहम पट्टी की और उस बात को भूल गए। लेकिन जिसे वांग पत्थर समझ रहे थे वो असल में गोली थी जो उनके सर को चीरती हुई अंदर जा चुकी थी। ये वाकया मेडिकल साइंस के लिए एक पहेली बन गया कि 23 साल तक ये गोली जानलेवा क्यों साबित नहीं हुई। इसके पीछे कुछ अजीब और गरीब वजूहात सामने आए। दरअसल गोली की रफ्तार इतनी कम थी कि वो दिमाग के बेहद नाजुक हिस्सों को चीरने के बजाय एक कोने में थम गई। किस्मत से गोली दिमाग के उस हिस्से में जाकर रुकी जहां उसने किसी नर्व सिस्टम को नुकसान नहीं पहुंचाया। दो दहाइयों तक धात रहने के बाद भी कोई खतरनाक इन्फेक्शन नहीं फैला, लेकिन गोली इस कदर अंदर धसी हुई थी कि एक छोटी सी चूक और वांग को हमेशा के लिए अपाहिज बना सकती थी। रिपोर्ट के मुताबिक घंटों चली सर्जरी के बाद डॉक्टरों ने गोली को बाहर निकाल लिया। आज वांग न सिर्फ सेहतमंद हैं बल्कि इस बात के लिए भी मेडिकल हिस्ट्री में दर्ज हो चुके हैं कि कोई इंसान कैसे अपनी मौत को 23 साल तक सर में दबाए रह सकता है। चीन के झेंजियांग से एक ऐसी खबर आई है जिसने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि यहां के एक 40 साल शख्स का दिल दो दिन तक यानी तकरीबन 40 घंटे नहीं धड़का, फिर भी वो जिंदा रहा। ये सब कुछ मुमकिन हुआ है जदीद मेडिकल टेक्नोलॉजी की वजह से, जिसकी बदौलत आज वो पूरी तरह सेहतमंद है। झेंजियांग यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन से मुतालका एक हॉस्पिटल के डॉक्टर लू जियो ने ये दावा किया है। उन्होंने बताया कि मरीज को दिल का दौरा पड़ा था, उसे बचाने के लिए इलेक्ट्रिक शॉक दिए गए लेकिन दिल ने रिएक्ट नहीं किया। जब उम्मीदें खत्म होने लगी तब एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन ECMO मशीन का सहारा लिया। ECMO मशीन बदन के बाहर एक मसनूई दिल और फेफड़े की तरह काम करती है। यह खून से कार्बन डाइऑक्साइड निकालती है और उसमें ऑक्सीजन भरकर वापस बदन में पंप करती है। डॉक्टर लू के मुताबिक जहां आम CPR से बचने की उम्मीद सिर्फ 1% होती है, वहीं ECMO इसे बढ़ाकर 50% तक कर देता है।
سامعین آپ جانتے ہیں کہ قدرت کے کھیل نرالے ہوتے ہیں،

सामाइन, दुनिया में एक छोटा सा कीड़ा है एफिड। इसकी खासियत इतनी अजब है कि इसे जानकर कोई भी हैरान रह जाएगा। दरअसल ये कीड़ा पैदा होते ही हामला होता है और इसे बच्चे पैदा करने के लिए किसी नर की ज़रूरत नहीं पड़ती। दरअसल एफिड में एक बेहद दिलचस्प बायोलॉजिकल अमल पाया जाता है जिसे साइंसदान टेलीस्कोपिंग जनरेशन कहते हैं। इसका मतलब है कि एक ही बदन में कई पीढ़ियाँ एक साथ मौजूद रहती हैं। जब एक मादा एफिड पैदा होती है तब उसके अंदर पहले से ही उसके बच्चे बढ़ रहे होते हैं। बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती, उन बच्चों के भीतर भी अगली पीढ़ी के अंडों का बनना शुरू हो चुका होता है। यानी एक तरह से तीन पीढ़ियाँ एक ही वक्त में एक ही जिस्म में रह रही होती हैं। इसे समझना ऐसा है जैसे एक के अंदर दूसरी और दूसरे के अंदर तीसरी जिंदगी तैयार हो रही हो। एफिड शक्ल में बहुत छोटे होते हैं, आमतौर पर सिर्फ 1 से 2 मिलीमीटर लंबे। इनका बदन नर्म होता है और ये ख़ास तौर पर पेड़ों का रस चूसकर जिंदा रहते हैं। यही वजह है कि ये फसलों और बागीचों के लिए काफ़ी नुकसानदेह माने जाते हैं। गर्म मौसम में इनकी तादाद ज़्यादा हो जाती है। सामाइन, बिहार के पूर्वी चंपारण से एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ राम बन देवी माई के स्थान पर वाक़े एक तालाब में माहीगीरों के जाल में एक ऐसी मछली फंसी है जिसने माहरीन और देही बाशिंदों दोनों को हैरत में डाल दिया है। दावा किया जा रहा है कि इस मछली की दो नहीं बल्कि 4 आंखें हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक माहीगीर हर रोज़ के मानिंद तालाब में जाल डालकर मछलियां निकाल रहे थे, तभी करीब 4 किलो वजन की एक बड़ी मछली जाल में फंसी। जब उसे बाहर निकाला गया तो इसकी देही बनावट देखकर माहीगीर दंग रह गए। माहीगीरों के मुताबिक ये बी ग्रेड जात की मछली है, लेकिन इसके सर पर 4 आंखों जैसे निशान का होना इसे आम मछलियों से बिल्कुल अलग बनाता है। सामाइन, अगर आपको लगता है कि आप बहुत काहिल हैं तो स्लॉथ जानवर से मिलकर आपकी ये गलतफहमी दूर हो जाएगी। दरअसल स्लॉथ दिन के 22 घंटे सिर्फ सोने में गुजारता है, वहीं जागने के बाद भी इनकी फुर्ती ऐसी है कि देखकर आंखें मलते रह जाएंगे। ज़मीन पर तो ये चल भी नहीं पाते, बस पंजों के दम पर खुद को घसीटते रहते हैं। लेकिन पानी में ये 3 गुना ज़्यादा तेज तैर सकते हैं। हम इंसान जहाँ खाना कुछ ही घंटों में हजम कर लेते हैं, वहीं इस जानवर को एक पत्ता हजम करने में भी पूरे 30 दिन लग जाते हैं। यही वजह है कि ये अपनी एनर्जी बचाने के लिए हिलना डुलना भी पसंद नहीं करते। ये जानवर अपनी 90% ज़िंदगी पेड़ों पर उल्टा लटक कर गुजारते हैं। ये इतना काहिल होते हैं कि टॉयलेट जाने के लिए भी हफ्ते में सिर्फ एक बार ही पेड़ से उतरते हैं। लेकिन यही काहली उनके लिए कभी कभी जानलेवा साबित होती है। ये नीचे उतरते ही शिकारियों की नज़र में आ जाते हैं और तकरीबन 50% स्लॉथ की मौत इसी दौरान होती है। सामाइन, भारत में कई ऐसे पौधे हैं जो देखने में बेहद खूबसूरत लगते हैं, लेकिन उनके असरात उतने ही ख़तरनाक हो सकते हैं। ऐसा ही एक पौधा है लैंटाना, जिसे अक्सर भारत की बद्दुआ कहा जाता है। इसकी रंग बिरंगी छोटी छोटी फूलों की गुच्छेदार बनावट लोगों को अपनी जानिब रागिब करती है, लेकिन इसके पीछे छुपे नुकसान काफ़ी ख़तरनाक होते हैं। लैंटाना एक इनवेसिव स्पेशीज़ का पौधा है जो बहुत तेज़ी से फैलने की कुव्वत रखता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये सख्त से सख्त हालात में भी जिंदा रह सकता है। चाहे सूखा इलाका हो या खारा पानी, ये आसानी से वहाँ उग जाता है। इस पौधे का एक ख़तरनाक पहलू इसकी जहरीली तासीर भी है। इसके पत्ते अगर मवेशी या जानवर खा लें तो उनकी सेहत पर ख़तरनाक असर पड़ सकता है। साइंसदान के मुताबिक लैंटाना के इस्तेमाल से जानवरों के लीवर को नुकसान पहुँचता है और कई मामलों में उनके अज़ो काम करना बंद कर देते हैं। इसके अलावा ये जिल्द को सूरज की रोशनी के तई ज़्यादा हसास बना देते हैं, जिससे जिल्दी परेशानियाँ भी बढ़ सकती हैं। लैंटाना के बारे में एक दिलचस्प बात यह भी है कि इसके कुछ हिस्सों का इस्तेमाल कदीमी दवाओं में किया जाता है। सामाइन, कुदरत अपने अंदर लातादाद राज छिपाए बैठी है और वक्त वक्त पर इनमें से कुछ राज सामने आकर हमें चौंका देते हैं। हाल ही में मेघालय के वेस्ट गारो हिल्स के घने जंगलों से एक ऐसी ही दिलचस्प और अहम तलाश सामने आई है। साइंसदान ने यहाँ एक नायाब जमीन के अंदर रहने वाले सांप की पहचान की है, जिसे अब एक नई जात पर मुस्तनद कर दिया गया है। आपको बता दें कि मेघालय का गारो हिल्स इलाका पहले से ही अपनी आला बायोडायवर्सिटी के लिए जाना जाता है। यहाँ के जंगल कई अनोखे और कम मालूम जानवरों का घर हैं। इसी इलाके के ओरागीतोक इलाके में

मान सकता था। चेक पर बैंक का नाम, अकाउंट नंबर और यहाँ तक कि नीचे की MICR लाइन भी बेहद सटीक तरीके से बनाई गई थी। रकम भी इस पर क्लियर 69,000 रुपये लिखे हैं। जैसे ही ये तस्वीर इंटरनेट पर फैली, लोगों के बीच हलचल मच गई। कई लोग इसे देखकर हैरान थे तो कई डर गए। तो सामान ये थी इस माह की कुछ अजब गजब खबरें। उम्मीद है इन खबरों से आपके इल्म

0: मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो घड़ी में सुबह के 9:50 हुए हैं। लोक संगीत हम लेकर आएंगे इस छोटे से अंतराल के पार।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए
3: 0542227658।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें
4: 0542227658।
0: अंतराल हुआ पूरा लोक संगीत में आपका स्वागत। आज के कलाकार हैं तेज बहादुर यादव व साथी। आइए सुने सबसे पहले इनके स्वर में ये देवी गीत।

इसी झूमर के साथ ही लोक संगीत का आज ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। सुबह के 10 बजे हैं। फिल्म संगीत का कार्यक्रम झनकार हम आपके लिए पहला गाना पेश करते हैं, प्यार किया तो डरना क्या। यह फिल्म का नाम, कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजें हैं।

फूल और कांटे, आइए सुने इस फिल्म का गाना अलका याग्निक और कुमार शानू की आवाज़ें, आनंद बख्शी के बोल, नदीम श्रवण का संगीत।

अब आइए सुने विजू शाह के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी का लिखा गाना। साधना सरगम की आवाज़, फिल्म है विश्वात्मा।

अब आइए सुने संजोग फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीत रचना अनजान की, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

आइए सुने मोहम्मद अजीज की आवाज में आनंद बख्शी का लिखा गाना। तर्ज बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने, फिल्म है राम अवतार।

हंसते जख्म। आइए सुने इस फिल्म का गाना, मोहम्मद रफ़ी, बलबीर और साथियों की आवाज़ें। गीत रचना कैफी आज़मी की है, संगीत है मदन मोहन का।

0: आइए सुने भ्रष्टाचार फिल्म का गाना सुरेश वाडकर और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ों में। आनंद बख्शी के बोल हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।
1: रे गा मा,
2: तुम भी गाओ।

अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम के आखिर में अर्पण फिल्म का गाना, लता मंगेशकर की आवाज़, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

अर्पण फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। इस गीत के साथ ही आज का झंकार कार्यक्रम समाप्त तो होता है। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, हमारे प्रसारण आपके लिए मीडियम वेव के मीटर, न्यूज ऑन AIR ऐप, वेब्स OTT, DTH और DRM पर एक साथ उपलब्ध हैं। 11:01 और 27 सेकंड हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम फरमाइश्री गीत एक्सप्रेस।

कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को अरुण पांडे का नमस्कार। और श्रोताओं, आपको आज के दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत सारी सावधानी हमें बरतनी है इस तेज गर्मी के मौसम में, ताकि हम स्वस्थ और सुरक्षित रहें। तो एहतियात बरतें और हमारे कार्यक्रमों में हमारे साथ जुड़े रहें।

आज का ये प्रोग्राम व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित होता है। फिल्मों के नाम हम आपको प्रोग्राम की शुरुआत में बता रहे हैं। आज की फिल्में हैं गबन, दुनिया का मेला, एक थी रीता, गंगा की सौगंध, गौतम गोविंदा और धर्मकांटा। सेवन नाइन जीरो फाइव फाइव वन नाइन नाइन एट वन ये इस कार्यक्रम का व्हाट्सएप नंबर है। हमारे यहाँ से जो भी प्रोग्राम होते हैं व्हाट्सएप नंबर यही रहता है 7905519981। आपको करना यह है कि सबसे पहले फिल्म का नाम ही लिखें, कुछ और न लिखें, ताकि उस गीत के साथ आपका नाम शामिल हो सके, और एक ही स्थान के तीन चार श्रोताओं के नाम लिखें ताकि गीत भी आप पूरे के पूरे सुन पाएं और सभी श्रोताओं के नाम भी शामिल हो जाएं। गबन, दुनिया का मेला, एक थी रीता, गौतम गोविंदा, गंगा की सौगंध और धर्मकांटा, ये आज की फिल्में हैं। सात नौ शून्य पांच पांच एक नौ नौ आठ एक ये व्हाट्सएप नंबर है। और साथ ही आपको कहें कि हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में, चाहे वो एफएम विविध भारती वाराणसी के प्रोग्राम हो या फिर आकाशवाणी वाराणसी के, आप जरूर अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंचाएं। पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम की मेल आईडी है pkld@varanasi.gmail.com। वो कार्यक्रम प्रसारित होता है रविवार को शाम 7:31 पर, तो आपकी प्रतिक्रियाओं का भी हमें इंतजार रहता है और जरूर आप उस कार्यक्रम में भी शिरकत करें। और इस कार्यक्रम में बहुत सारे श्रोताओं ने शिरकत अब तक कर दी है, और यानी अपनी फरमाइशें आपने व्हाट्सएप के जरिए हमें भेज दी हैं। ये जरूर कहें हर बार की तरह कि एक बार संदेश भेजें और फिर इंतजार करें, चाहे आपने शुरुआत में ही किसी भी फिल्म के लिए भेजा हो, क्योंकि होता यह है कि पहली ही फिल्म के लिए बहुत सारे मैसेज आ जाते हैं और वो सभी पढ़े जाएं, सभी संदेश, तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि कई गाने न

इस वजह से अगर संदेश रह भी जाते हैं तो आप पूरा प्रोग्राम सुने जरूर वो शामिल होंगे। लेकिन एक संदेश में एक ही स्थान के कुछ श्रोताओं के नाम लिखे। आइए प्रोग्राम का आगाज कर रहे हैं क्योंकि बहुत सी फरमाइशें आ चुकी हैं। मोहम्मद रफी की आवाज में प्रोग्राम का पहला गीत है आप सबकी ही पसंद पर फिल्म गबन से। हसरा जयपुरी के बोल शंकर जयकिशन का संगीत।

और आपका ये प्यार ये मोहब्बत है कि बहुत सारे मैसेजेज आप प्रोग्राम की शुरुआत में हमें भेज देते हैं, इसके लिए शुक्रिया। फिल्म गबन के इस गाने के लिए जो कि रफी साहब की आवाज में था, फरमाइशें आई हैं आप सबकी। कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया के हमारे श्रोता हैं ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय। खारिया ढाणी सिरसा हरियाणा से हैं, सतवीर सिंह बिजारणिया, देवेंद्र सिंह बिजारणिया, राजपाल अभिषेक और योगेश सिंह बिजारणिया। आलिया खान, नाजिया खान, सादिया खान की फरमाइश कछुआ कला शाहजहांपुर से आई है। सिद्धार्थनगर दरियापुर बाबली के श्रोता हैं गजानन येले, नवदीप येले, विश्वदीप येले और अशोक येले। ये फरमाइश है दमदम एयरपोर्ट कोलकाता से बसंत कुमार सिन्हा, रेखा देवी शाह और अजय कुमार गुप्ता की। मौसम अंसारी, सरताज अंसारी, शाहिद अंसारी, सद्दाम अंसारी और मुश्ताक अंसारी हैं कोटवा वाराणसी के श्रोता। गांव फरासी हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी और पुष्पेंद्र कुमार डूडी। गोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा और ईशान छीपा। गांव कुम्हार हेड़ा सहारनपुर से हमें सुन रहे हैं सैयद मसरूर, शाइना हसन, नाजिया इब्राहिम और सद्दाम। पद्मा टॉकीज नेपानगर से ये फरमाइश सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह और नीति शाह की। ऊपर कोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर के श्रोता है मोहम्मद सईद अब्बास।

दिवंगत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी और सरफराज अब्बासी, दिनेश चौहान, उमेश चौहान, अदिति चौहान और मनीषा चौहान हैं, गांव लीहेदिगर, तालुका जामनेर, जिला जलगांव से। गांव चोहल्दा बागपत के श्रोता हैं संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और कमल साहनी। हरजिंदर छिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता की फरमाइश नथाना पंजाब से आई हुई है। बजरडीहा वाराणसी के श्रोता हैं आयनुल हक, मल्लू अंसारी, इकबाल अंसारी, सलीम आजाद अंसारी और सिराजुद्दीन अंसारी। रईस खान, साबिया खान, अनस खान और शकील खान हैं फूले नगर अम्बिवली, मुंबई, महाराष्ट्र से। गंगानगर राजस्थान से हैं मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति और भूमिका अरोड़ा। बलकरण वर्मा, अंजनि ज्योति वर्मा, प्रहलाद राजेंद्र वर्मा और उमेश धनेश्वरी वर्मा की फरमाइश बठेना पाटन दुर्ग छत्तीसगढ़ से। रविन्द्र मोहन दास, आशा देवी, राघव कुमार, भानुप्रिया और उनके साथ हैं अनुराग मोहन, किशनगंज बिहार से। मुबारकपुर आजमगढ़ से जावेद अख्तर राही, शमसुल कमर राही और बेगम रुखसार। जमानिया रेलवे स्टेशन से हमें सुन रहे हैं एसपी जायसवाल, डिंपल जायसवाल, आशुतोष जायसवाल और अभिनव जायसवाल। गांधी चौक बाड़मेर से बबलेश पंवार, डैनी पंवार और मनीष पंवार। अकरम हुसैन प्रिंस, बेगम इशरत अकरम, वसीम अकरम और रूबीना वसीम की फरमाइश नगर निगम वार्ड नंबर 28 नाज मंजिल महसौल सीतामढ़ी से आई है। सेक्टर 5 कुड़ी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर राजस्थान के श्रोता हैं रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी और कल्पित चौहान। प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल और यशस्वी वर्मा ने भी इसी गीत को सुनना चाहा। और अब प्रोग्राम की अगली पेशकश फिल्म है दुनिया का नाम, दुनिया का मेला, और गायक कलाकार मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। बहुत सारी फरमाइशें हमारे पास हैं। बाकी फिल्में हैं एक थी रीता, गंगा की सौगंध, गौतम गोविंदा और धर्म कांटा। 11:30 बजे तक आप अपने संदेश भेज दें ताकि वो प्रोग्राम में शामिल हो सके।

दुनिया का मेला फिल्म का गीत था और अब हमारे सामने है आपके संदेशों का ये मेला यानी आपके नाम। मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में गीत था फरमाइश आप सबकी। बदरुद्दीन अंसारी, अनवर अली अंसारी, मुश्ताक सुलेमानी, सलीम आजाद और मल्लू अंसारी हैं अहमदनगर बजरडीहा के श्रोता। झारखंड बड़ा बाम्बो सुपाई साई गांव से देवेंद्र तांती, राकेश तांती, प्रकाश निशा और रेशमा कुमारी। अस्तुपुरा मऊ के हमारे श्रोता हैं मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी और मोहम्मद सादिक अंसारी। चंडीगढ़ से सतीश शर्मा, नेत्रपाल सिंह और वाराणसी से हैं परवेज अहमद। सानू आर अश्विन, शोभनाथ अवस्थी और उनके मित्र हैं शिवराजपुर चुनार मिर्जापुर से। ये फरमाइश है चंदूलाल पटवा, सुनीता पटवा, हर्ष कुमार पटवा और विनीत कुमार पटवा की धरदेई सरगांव छत्तीसगढ़ से। पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन और टिल्लू नायक। इसी गीत को सुनना चाहा अमितेश कुमार तिवारी ने करनई बलिया से। मुटाला महाराष्ट्र से हैं विजय सुरलकर और रतन माला सुरलकर, साथ में आरती गौरी और ओम कुमार। ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारादेवी विश्वकर्मा है पलेरा टीकमगढ़ से। ये फरमाइश आई है गमरिया जमशेदपुर से रोहन जायसवाल, हरि जायसवाल, मुराहू और देवंती जायसवाल की। गुवाहाटी आसाम से हमें सुन रहे हैं हरेन पांड्या, नरेन पांड्या और वीरेन पांड्या, शुक्रिया आपका। व्हाइटफील्ड बेंगलुरु से जुड़े हुए हैं भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिव्येंद्र भूषण, संस्कृति और पौरुष। कालेगांव जाफराबाद से हैं सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव और कुमार संचित वायाल। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से फरमाइश आई है रविंद्र सिंह छाबड़ा और परिवार के सदस्यों की। वाडी खामगांव से अनंता वाडे, रामेश्वर वाडे, शुभम, साक्षी, खुशी और परिवार के सदस्य। लोरमी चचेड़ी छत्तीसगढ़ से कमलकांत मरावी, नेहा मरावी, पुष्पराज मरावी और ऋषभ मरावी। मुठाला बाजार से बबलू शेख, शगीर शेख, वजीर और सोहिल शेख। रमेश चंद्र चौहान, जयनारायण चौहान, तरुण चौहान और प्रतीक चौहान हैं सदर बाजार मारवाड़ बिलाड़ा राजस्थान से। वडिंगखेड़ा पंजाब से पिंटू, मिंटू, थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा। डॉक्टर सुरेश जाधव, अनिता जाधव, आरती, पूजा और प्रसाद जाधव हैं नेहरू चौक पैठण के श्रोता। भोपाली यवतमाल से जयराम सिंगड़कर, दिशांत कुमार सिंगड़कर और अर्पिता। सोन वर्षा खानपुर चुनार मिर्जापुर से ये फरमाइश अनीश राजभर, मनीष राजभर, आशीष राजभर और आकर्ष राजभर की आई हुई है। कटरा मुबारकपुर से जावेद अख्तर अंसारी, निकट परवीन, नुसरत परवीन और सलीम जावेद। हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया और पप्पी भाटिया हैं स्टेशन रोड जमशेदपुर के हमारे श्रोता। आशा नारंग, सोनाली, सुरेश नारंग है सहारनपुर से। लालमाता सुदामा नगर, रटलाई, झालावाड़ राजस्थान से हर्षिता, रामेश्वर, परमेश्वर, मीनाक्षी, कान्हा, मनोहर भाई बागरी और प्रभु लाल बागरी। तेलंगाना भुंगीर से के हमारे श्रोता हैं जो सुन रहे हमें मोहम्मद बुरहानुद्दीन, फैजान लल्ला, फरहान लल्ला और समाहिरा आजमीन गुड़िया। जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल डिकेस्ट्रो और विलिस डिकेस्ट्रो की फरमाइश आई है जनकपुरी सहारनपुर से। जलालाबाद वेस्ट के श्रोता सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया दिशानी और निमिता हुजा को हम शुक्रिया कह रहे हैं। गांव गहमर पकड़ीतर, हनुमान मंदिर चांदनी चौक गाजीपुर से हैं त्रिलोकी जायसवाल, गिरधारी जायसवाल, शांति देवी, शिवनाथ और परिवार के सदस्य। रामगंज खंडवा से विजय महोबिया और कविता महोबिया। देवशंकर तामूरिया, अजय देव तामूरिया, तुषार देव तामूरिया, डॉली बेबी पूजा तामूरिया हैं डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से। पंढरपुर रोहिदास चौक सिटी से प्रशांत शिंदे, सुनीता शिंदे, यशराज और ऋषि शिंदे। मुरादाबाद दुल्हापुर उत्तर प्रदेश के श्रोता हैं मोहम्मद फरमान, सलमान, इरफान और इसरार। गांगीवाड़ा छिंदवाड़ा से रमनदीप, राजदीप, परिहार, अपर्णा परिहार और सुधा परिहार।

दुबिहा नेवादा गाजीपुर के श्रोता हैं प्रतीक राय और रोशनी राय, साथ में प्रांजल राय, मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़। जवाहर नगर दुर्ग के श्रोता हैं आरसी कामड़े, करुणा, मीना, अश्विनी और विपुल कामड़े। दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण और कपिल मेहरा। रज्जाक मोहम्मद, शमीम बेगम, इमरान खान और इरफान खान की फरमाइश हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से आई हुई है। और आप हैं रामबाबू मालवीय, मनीषा मालवीय, शीतल मालवीय, उमंग मालवीय, कोलार रोड भोपाल से। गमहरिया जमशेदपुर से विपिन, स्वाति देव कुमार और आर्य कुमार जायसवाल। आमा खोड़ा रेंगा खार कबीरधाम के श्रोता है देवी सिंह नेताम, राजेंद्र सिंह नेताम, दक्ष प्रिया और गीत सरगम नेताम। दिनारा रोहतास से प्रभात कुमार, पुरुषोत्तम कुमार, सौरभ कुमार, अर्पित कुमार, हर्षित कुमार और वैभव कुमार। कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक है मजनू कटीला दिल्ली के श्रोता। इरशाद आजमी, अरबाज अहमद, अबू जार अहमद और अफशा बानो है आजमगढ़ कोटिला जिला से। और अब कार्यक्रम की अगली पेशकश। ये सरला की आवाज है, साथ में मन्ना डे। विकल साकेती मशहूर गीतकार हुए, उनके बोल हैं और जयदेव का संगीत।

लेकिन ये जरूर है कि आप चाहे बरेली में हो या बनारस में, अपनी सेहत का ख्याल रखें। इस तेज धूप में, सीधे धूप में बाहर निकलने से बचें, और बहुत जरूरी हो तो पूरी बांह के कपड़े पहने, पानी का भरपूर सेवन करें, और छाया में जितना ज्यादा हो सके उतना रहें, और साथ में सिर को ढक कर रखें। और हमारे यहाँ बनारस में तो गमछे का बहुतायत प्रयोग होता है, या फिर ओढ़नी, दुपट्टा, जो भी आप चाहें, लेकिन धूप से बचना बहुत जरूरी है ताकि हम स्वस्थ रहेंगे और खासतौर से हमारे प्रोग्राम से आप जुड़े रहेंगे। एक त्रिता फिल्म के इस गाने के लिए फरमाइशें आप सबकी आई है। इरशाद आजमी, अरबाज अहमद, अबू जार अहमद, अफशा बानो, अनम बानो, अल्फिया बानो, अदीबा इरशाद, अमीना इरशाद हैं सोनवाड़ा कोटिला आजमगढ़ से। धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से व्हाट्सएप फरमाइश आई है निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, आलिया और रयान बाबू की। तुलसी मस्किन, वीणा मस्किन, आशीष राजा, चैतन्य मस्किन और मेघा मस्किन है बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से। जौनपुर से ऋषु मौर्य, मुसर्रत जहानाज, तलत जहानाज, फरहत जहानाज हैं नूर महल महसौल सीतामढ़ी से। अशोक कुमार प्रजापति, मीना प्रजापति, अंजलि प्रजापति, आकाश प्रजापति और शिव प्रकाश प्रजापति, आप सभी हमारे श्रोता हैं कोरोता वाराणसी से। इमृति यादव हैं ग्राम बरठी पोस्ट सकलडीहा चंदौली से। उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसुतासु, अर्णव आनंद और सत्यम आनंद पाकुड़ झारखंड से। मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज हैं मुरादाबाद दुल्हापुर के श्रोता। नारवा इंद्रो का जोधपुर राजस्थान से हमें सुन रहे हैं। नरपत सोनी, वैशाली सोनी, गणेश चौक से इसी में नाम है, लेकिन वो नाम आप अलग से हमें भेज दें। पंचकुला चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रजिता खुराना, केशु खुराना और तुलसी मस्कीन। संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़, कमल साहनी, आप सभी हैं पिंगावाला चौक गोराया जलंधर से। ये फरमाइश बबरी बाजार चंदौली से आई हुई है विजय जायसवाल, सरोज जायसवाल, सुंदर और सुमन जायसवाल की। फाजिलका पंजाब से हैं भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल खेड़ा और लाडी खेड़ा। पंचकुला सेक्टर 9 से आशु चुग, अश्विनी चुग, गोविंद चुग और टोनी दीवान। ये फरमाइश रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज और रिफाकत की जसपुर उत्तराखंड से। अनिल कुमार घोड़के और वैशाली अनिल हैं संभाजीनगर औरंगाबाद के श्रोता। जमानिया गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला दीपक और स्वाति जायसवाल की फरमाइश। गाजीपुर गांव नारी पस देवरा डीह बाबा चौराहा से अजय सिन्हा, कैलाश सिन्हा, भोले सिन्हा, सचिन और उनके माता पिता। खदान कोठी बोरोपारा चौक बसपेरिया पश्चिम बंगाल के श्रोता है मुन्नी देवी शाह, जयप्रकाश साव, बसंतलाल साव, शिवानी और प्रियंका। अजीत कसाना, अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक और आदित्य कसाना है लदावली मुरादाबाद के श्रोता। तुलसी मस्कीन जी ने फिर से संदेश भेजा है, लेकिन उन्हें हम बताएं कि तमाम श्रोताओं ने सुना है, अपने दोस्तों से पूछें, जस्ट अभी आपका नाम भेजा गया है। तो जब भी आप ऐसा लिखते हैं कि आपका नाम शामिल नहीं हुआ, तो हम बिल्कुल यही मानते हैं कि आप हमें सुन नहीं रहे हैं, सिर्फ संदेश भेज रहे हैं। ग्राम बहुआरा दिलदारनगर से हैं अकलू राम, कैदार राम और दीनानाथ सिंह। सावतपुर छत्तीसगढ़ से ऋषि सेन, रितेश सेन और हर्ष कुमार सेन। बागरी मोहल्ला रटलाई झालावाड़ राजस्थान से नैना, सत्यनारायण, कपिल, शोभा और फुंदीबाई बागरी। ये फरमाइश आई है पुरानी भिलाई 3-14 छत्तीसगढ़ से डॉक्टर नौशाद अहमद सिद्दीकी, बेगम हमीदुन सिद्दीकी, जिशान अहमद सिद्दीकी और शाहनवाज सिद्दीकी की। एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोध, निखिल कांगड़ा और तन्वी बोध। रघुनाथपुरा गंगानगर से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षित और खुशी गोस्वामी। पोटिया कला दुर्ग के श्रोता हैं संजय साहू, सुजाता साहू और शशांक साहू। भागवत देठे पाटिल, लक्ष्मी देठे पाटिल और समर्थ

0: देठे पाटिल हैं धामणगांव महाराष्ट्र के श्रोता। सोनारी जमशेदपुर से कृष्णा जायसवाल और पूनम जायसवाल। गांव हांडीखेड़ा सिरसा से हैं राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा और सार्थक शर्मा। इरशाद अहमद असद अहमद ग्राम सोनवरा कोटिला आजमगढ़ से। ये जो सोनवड़ा है, ये सोनवड़ा है या सोनवारा है, जरा हिंदी में लिखकर हमें बताएं तो सहूलियत होगी। मारहरा दरवाजा एटा से हमें सुन रहे हैं नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नावेद हसन अब्बासी और सुहैल यशफ अब्बासी। श्रोताओं, कार्यक्रम आप सुन रहे हैं फरमाइशी गीत एक्सप्रेस। आज के दिन ये प्रोग्राम व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित होता है। आज का ये प्रोग्राम आप सुन रहे हैं अपने दोस्त अरुण पांडे के साथ। 7905519981 कार्यक्रम का नंबर है और तमाम गीतों के लिए बहुत सारी फरमाइशें हमारे पास हैं।
1: अरे ओ छोरी,
2: क्या
1: मिलने आती है चोरी चोरी।
0: 11:30:50 ये वक्त है और ये गीत जो आप सुन रहे हैं वो गंगा की सौगंध फिल्म से किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजें, अनजान के बोल कल्याण जी आनंद जी का संगीत।
1: अरे
0: दो फिल्में बाकी हैं, गौतम गोविंदा और धर्म काटा। आप चाहें तो अब भी कुछ फरमाइशें भेज सकते हैं।

0: बंदर
1: नहीं बाबा,
0: गोरी बंदर
1: नहीं,
0: गोर बंदर गोड़ बंदर बोरी बंदर बाड़ी बंदर।
2: जी हाँ, मुंबई की ये तमाम जगहें जो आप में से बहुत सारे साथियों की देखी सुनी हुई होंगी और तमाम जगहों से फरमाइशें भी इस प्रोग्राम में शामिल हो रही हैं। गुजरात गांधीग्राम से इस गीत को, जो फिल्म गंगा की सौगंध से था, किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में, फरमाइशें आई हैं आपकी प्रवीण सोनी, पूजा पायल और जगदीश जौहरी। रमाशंकर यादव की फरमाइश राशिपुर सिरकोनी बहादुरपुर से आई है। राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश के श्रोता है राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक और आर्यन वर्मा। श्रोताओं, आपको ये बताएं कि हमारे यहाँ दुकान, प्रतिष्ठान, संगठन, संस्थान के नाम या फिर श्रोता क्लबों के नाम न भेजा करें तो बेहतर होगा कि वो शामिल नहीं हो, क्योंकि हम लोग ये जो नाम है प्रचारात्मक वो शामिल नहीं करते। मुंदीचक भागलपुर से हैं दिलीप कुमार सोनी। आपने 11:02 पर और फिर 33 पर ये जो फरमाइश भेज दी ना, इस वजह से आपकी फरमाइश ऊपर हो जाती है। एक बार ही भेजें, फिर इंतजार करें। जाकिर हुसैन अंसारी, मोहसिम अंसारी, शेर अली अंसारी, आप सभी हैं कोटवा वाराणसी के हमारे श्रोता। मिर्जापुर कुरुक्षेत्र से यशपाल धीमान, कृष्णा धीमान, राहुल धीमान, कोमल धीमान, शुभम धीमान, प्रियंका आंचल, आप सभी की फरमाइश आई है। ग्राम बनगांव फतेहाबाद हरियाणा के श्रोता हैं हरि सिंह ढाका और बिमला ढाका।

रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी और ठाकुर साहब। तुलसी मस्कीन जी ने फिर लिखा है, आपको ये कहें एक बार और संभवतः फिर न कहा जाए हमारी जानिब से कि एक बार संदेश भेजें और जिस भी गीत के लिए आप भेजते हैं फिर आपका नाम शामिल होता है तो दोबारा न भेजें और कोई अन्य बातें इस कार्यक्रम में हम शामिल नहीं करते, सिर्फ नाम लिखें, एक ही जगह के तीन चार नाम लिखें, एक ही फरमाइश में कई जगहों के नाम न भेजें। संबलपुर कांकेर के श्रोता हैं फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव। मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाना से ये संदेश आया है, विनोद पुरी, वीपी रंजू, अशोक पुरी, सुशील पुरी और बीके पुरी, आप सभी को शुक्रिया। नीलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से हैं पीएस नहावकर, निर्मला नहावकर और विशाल नहावकर। ये फरमाइश ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेहराज जहां की आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से आई हुई है। झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया और रीटा भाटिया।

रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर और स्वीटी छाबड़ा हमें सुन रहे हैं टैगोर गार्डन नई दिल्ली से। सिद्धार्थ गोंडा ने, अर्चना ताई गोंडा ने, श्रीरा हीरामन शेंडे और प्रणय प्रसिद्धि और प्रतिभा गोंडा ने हैं राहुल नगर अमरावती से।

शिव मंदिर हकीकत पूरा मऊ के श्रोता है मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन, कृष्णा और पीहू स्वर्णकार। तकिया मड़ियाहूं से जमील अहमद शाह, मोहम्मद अल्तमश शाह, मोहम्मद दानिश शाह, मोहम्मद हसरत शाह, साजिश शाह, रोमेश शाह, हसरत शाह और अच्छा ये नाम दोबारा आपने लिख दिया है और मोहम्मद अबान शाह। तो जमील जी एक बार जब आप संदेश भिजवा देते हैं तो उसके बाद फिर कुछ बातचीत भी ना लिखें, वो फिर मैसेज आपका पीछे होता जाता है, सिर्फ नाम भेजकर इंतजार करें। आप तो पुराने श्रोता हैं, उम्मीद है आप समझेंगे। और अब कार्यक्रम की अगली पेशकश। फिल्म का नाम है गौतम गोविंदा, आशा भोसले की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। आज की आखिरी फिल्म होगी धर्मकांटा। आप चाहें तो फरमाइशें अभी भी भेज सकते हैं।

जी हर्षदा, और कुछ संदेशों को भी हमें बड़े नाज से पालना होता है, क्योंकि हमारे कुछ एक श्रोता हैं जो एक बारी संदेश भेजते हैं और फिर हमें ख्याल रखना होता है कि वो गीत जब आए तो उनका नाम शामिल हो। तो एक ये भी है कि दोनों ओर जिम्मेदारी है। अब हम प्रेजेंटर्स के साथ साथ श्रोताओं की भी, कि प्रोग्राम आकाशवाणी के तमाम केंद्रों के, विविध भारती के बेहतर हों और सुचारू रूप से हों, और आकाशवाणी विविध भारती की जो बहुत लंबी सुदीर्घ परंपरा है, हम 90 वर्ष मना रहे हैं, वो भी दोनों ओर से जवाबदेही है और सबकी जिम्मेदारी है कि ये परंपरा समृद्ध और ये संस्कृति यूं ही फलती फूलती रहे। तो इस गीत की फरमाइश आई पटेल नगर मुगलसराय से सुनील कुमार सिंह की। उन श्रोताओं के लिए कहें कि जो 10-20 बार बार बार मैसेज भेजते हैं और कुछ और चीजें लिखते हैं, कि एक बार भेज कर इंतजार करें। अनीश राजभर, मनीष राजभर, आशीष राजभर, आकर्ष और उनके मित्र हैं सोनवर्षा खानपुर चुनार मिर्जापुर से, पूजा वर्मा, अन्नपूर्णा वर्मा, यशस्वी वर्मा, आप सभी छत्तीसगढ़ पलारी के हमारे श्रोता हैं, गौतम गोविंदा फिल्म के इस गीत के लिए और फरमाइशें, दिलदार नगर गांव पश्चिम मोहल्ला गाजीपुर से जनार्दन पांडे, श्याम नारायण सिंह यादव, दीनानाथ सिंह यादव और कयूम शाह, भेड़ाघाट रोड जबलपुर मध्य प्रदेश से अशोक सिंह, सुनीता सिंह, रितु सिंह, कृष्णिव सिंह और गुड़िया और वेदा सिंह, पुरानी बस्ती मुबारकपुर आजमगढ़ से हैं शाहिद जमाल, आसिफ जमाल, दानिश जमाल और सहजेब अनवर, संतोष पांडे, रेखा पांडे, शिवम पांडे, प्रगति पांडे, कृष्णा तिवारी, शुभम मिश्रा, स्वाति मिश्रा, मान्यता मिश्रा, हर्षिल मिश्रा, चौखंडी हाथी बाजार वाराणसी से। बिल्कुल, आप लाइव प्रोग्राम सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। गणेश चौक रातानारड़ा जोधपुर राजस्थान से नरेंद्र भाटी और वीणा भाटी भी हमें सुन रहे हैं। अख्तर खान, अमजद खान, अफजल खान, आसिफ खान, आरिफ खान, सैफ खान, कैफ खान, अमीन खान, अयान खान है नगर पंचायत गंगापुर वार्ड नंबर 3 जवाहर नगर से। बबरी बाजार चंदौली के श्रोता हैं विजय जायसवाल, सरोज जायसवाल, सुंदर जायसवाल और सुमन जायसवाल, गमहरिया जमशेदपुर से विपिन जायसवाल, स्वाति जायसवाल, देव कुमार जायसवाल और आर्य कुमार जायसवाल। ये फरमाइश है छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इशाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ और नीलोफर फातिमा की। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और विमला अनेजा, कस्बा गुन्नौर उत्तर प्रदेश के श्रोता हैं फारूक अली खान, फैजी, फराज, फरहीन, फरहान, फारिया और ताहिरा। चेहरा था आप जैसा,

गौतम गोविंदा फिल्म का ये गीत था, आशा भोसले की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज। और अब आज के इस प्रोग्राम के आखिरी गाने की बारी।

गौतम गोविंदा फिल्म का ये गीत था, आशा भोसले की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज। और अब आज के इस प्रोग्राम के आखिरी गाने की बारी। धर्म कांटा है फिल्म का नाम, मोहम्मद रफी के साथ आशा भोसले की आवाज, और बेहद मकबूल गीत अपने दौर का मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा हुआ। संगीत है नौशाद।

धर्म कांटा फिल्म का युगल गीत मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में, मजरू सुल्तानपुरी के बोल और नौशाद का संगीत। फरमाइशें आप सबकी आई अंतिम गीत के साथ, यानी इस निवेदन के साथ ये फरमाइश भेजी थी 11:13 पर ही हमारे श्रोता अनिल गुप्ता गौंड, रमा गुप्ता गौंड, अंकुश कुमार गुप्ता और पूजा गुप्ता गौंड ने। आप सभी हमें सुनते हैं पहाड़िया अशोक विहार कॉलोनी फेज 2 से, बहुत शुक्रिया। सोनारी जमशेदपुर से कृष्णा और पूनम जायसवाल, रामनगर कदमा जमशेदपुर से विनोद और पिंकी जायसवाल, काली माता मंदिर दिलदार नगर गांव गाजीपुर के श्रोता हैं किशुन सिंह कुशवाहा और छविनाथ शर्मा, मोहम्मद फरमान, सलमान, इरफान और इसरार का नाम पहले भी शामिल हुआ है दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से, नासिर शेख, नाजिया नासिर, साजिद और शाहिद हैं फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र से, भोपाली यवतमाल के श्रोता हैं जयराम सिंह गढ़कर, दिशांत कुमार और अर्पिता, शाहकुटी मुगलसराय से सोनू जायसवाल और मंजू जायसवाल, हनुमानपुर मुगलसराय से डब्लू और माया जायसवाल। ये बता दें आपको श्रोताओं कि आज अब तक जो भी फरमाइशें आई वो प्रोग्राम में शामिल हो चुकी हैं।

और अभी अभी एक संदेश आया है रघुनाथपुरा गंगानगर राजस्थान से, लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी। वो जगह है जहाँ ठंड भी बहुत पड़ती है और गर्मी का ये जो मौसम है वो भी बहुत गर्म होगा गंगानगर में। तो हमारे श्रोता अपना ख्याल रखें, ऐसी हमें उम्मीद है।

और बिल्कुल हमारे कहने के बाद आखिरी वक्तों में जो कुछ संदेश आए हैं वो भी शामिल कर ले रहे हैं। दिलदार नगर गांव पश्चिम मोहल्ला से जनार्दन पांडे, श्याम नारायण सिंह यादव, दीनानाथ सिंह यादव और कयूम शाह, और राजन कुमार सिंह, वंदना सिंह, विनती, विनायक सिंह, मोहिनी और मोहित सिंह और कोको रानी हैं। आपने आज फिर आखिरी वक्त में संदेश भेजा। आजन जी थोड़ा शुरुआत में भेजें, आप वाराणसी के हमारे श्रोता हैं। चंडीगढ़ से सतीश शर्मा, नेत्रपाल सिंह और परवेज अहमद का नाम शामिल हुआ है। आवाज हमारे यहाँ से तो ठीक ठाक जा रही है, आप देख लें, कुछ अपने यहाँ नेटवर्क वगैरह का इश्यू हो सकता है आपकी तरफ। खंडिया गेट कॉलोनी रामपुर के श्रोता हैं अमरजीत, शिवम, सुखलाल, अमरपाल, ऋषिपाल, सिद्धार्थ और यश। तो आप सबका शुक्रिया इन तमाम मैसेजेस के लिए जो प्रोग्राम में शामिल हो चुके हैं। और अब अपना ख्याल रखिए, आज का प्रोग्राम

काम समाप्त करने के अपने दोस्त अरुण पांडे को इजाजत दीजिए। नमस्कार, शुभकामनाएं और गर्मी में खास ख्याल रखें, स्वस्थ और सुरक्षित रहें। अभी आप सुन रहे थे व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 12 बजे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित, ये कार्यक्रम जो हम आपको सुनवा रहे हैं।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत एक बार फिर से एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है नजदीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फजील का पंजाब से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदन लाल वर्मा जी ने।
2: जब तक इंसान खुद पर भरोसा नहीं करता, तब तक इंसान को छोटी से छोटी मुसीबत भी बड़ी पहाड़ सी लगती है। इसलिए चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों न हो, उसे कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। सही हिम्मत के दम पर वो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी कठिनाई को भी आसानी से पार कर सकता है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर विचार के लिए। और अब बारी है श्रोताओं के नाम और उनके संदेशों को सुनने की। तो पहला संदेश हमें मिला है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू।
2: मिलाई छत्तीसगढ़ से भाई मुकेश वर्मा, श्रीमती सविता शर्मा, गौरव गरिमा शर्मा।
1: और संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
2: पगबंदी जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से कन्हैया लहरे और सेवती लहरे।
1: और ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू और कुसुम्बाई।
2: ग्राम व पोस्ट बिरखेरा जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश से मनीराम पाल, मलखान सिंह पाल, सुधांशु पाल और हिमांशु पाल।
1: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आपके संदेशों के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में। तो आइए चलते हैं इसकी अगली कड़ी में। श्रोताओं कल हमने चर्चा की थी पश्चिमी घाट के वर्षा वनों की और ली थी ढेर सारी रोचक जानकारियाँ। तो विमलेश जी, आज की हमारी चर्चा का विषय तो बताइए हमारे श्रोताओं को।
2: जी अजीत जी, वर्षा वनों की तो चर्चा हो गई, अगली कड़ियों में हम भारत के अन्य वर्षा वनों की भी जानकारी लेंगे। लेकिन आज हम बात करेंगे एक और प्रकार के वन के बारे में।
1: जी,
2: वो वन है सुंदरवन। इस स्थान को हम सुंदरवन का डेल्टा भी कहते हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियाँ इस डेल्टा का निर्माण करती हैं। ये नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं।
1: जी, वही सुंदरवन ना जो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में है।
2: बिल्कुल सही,
1: ये तो सचमुच एक अद्भुत वन है, रहस्यों और रोमांच से भरा हुआ। तो फिर आप ही चर्चा को आगे बढ़ाइए ना।
2: जी, तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि ये कहाँ है। ये भारत के पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में फैला हुआ है। भारत में 40% और बांग्लादेश में 60%। अजीत जी, आपने भी सुना होगा कि अक्सर लोग कहते हैं कि सुंदरवन वर्षावन या रेन फॉरेस्ट है।
1: जी, सुना तो है,
2: जबकि तथ्य बिल्कुल अलग है।
1: अच्छा,
2: सुंदरवन दरअसल तकनीकी रूप से वर्षावन नहीं है।
1: क्यों?
2: ये मैंग्रोव वन है। तो आइए श्रोताओं वर्षावन और मैंग्रोव वन के अंतर को समझते हैं।
1: जी विमलेश जी, देखिए श्रोताओ, रेन फॉरेस्ट या वर्षावन वो होते हैं जहाँ बहुत अधिक वर्षा होती है।
2: जी।
1: वर्षा के कारण घने जंगल होते हैं और पेड़ जमीन पर ही उगते हैं।
2: जी।
1: लेकिन मैंग्रोव वन में ऐसा नहीं है। लेकिन इससे पहले कि आगे चले, हमें ये जरूर जान लेना चाहिए कि मैंग्रोव वन को हिंदी में क्या कहेंगे।
2: वैसे तो मैंग्रोव वन ही प्रचलित है, लेकिन इसे हिंदी में ज्वारीय वन भी कहा जा सकता है। ऐसा इसलिए कि यहाँ वन ज्वार भाटा के प्रभाव से विकसित होते हैं। सागर से जुड़े होने के कारण सुंदरवन में पेड़ पौधे खारे अर्धखारे पानी से उगते हैं। ये जानना रोचक होगा कि मैंग्रोव शब्द पुर्तगाली भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है दलदली पेड़ों का जंगल।
1: जी, मैंग्रोव वनों की मिट्टी दलदली होती है। सुंदरवन एक ऐसा ही वन है। यहाँ भी वर्षा होती है और हरियाली भी बहुत है, लेकिन यहाँ की पारिस्थितिकी या इकोसिस्टम अलग होने के कारण ये वर्षा वन नहीं कहलाता।
2: जी
1: विमलेश जी, अभी कुछ देर पहले आपने कहा था कि वर्षा वन में पेड़ पौधे जमीन पर ही उगते हैं, ऐसा क्यों कहा था आपने?
2: अजीत जी, बड़ा रोचक प्रश्न पूछा है आपने। जी हाँ, वर्षा वन के पेड़ जमीन पर ही उगते हैं, लेकिन मैंग्रोव वनों में पेड़ पानी पर भी उगते हैं, जो बड़े अनोखे होते हैं। ऐसा इसलिए कि सुंदरवन में रोज दिन में 2 बार ज्वार भाटा आता है। यहाँ के कुछ इलाके 6 घंटे पानी में डूबे होते हैं और बाकी के 6 घंटे पानी के बाहर। इसलिए यहाँ के पेड़ों की जड़ें पोषण लेने के लिए पानी के बाहर निकली हुई होती हैं।
1: विमलेश,

0: जी कहा जाता है कि यहाँ के पेड़ चलते हैं।
1: चलते हैं, ऐसा भला कैसे हो सकता है?
0: दरअसल चलते नहीं हैं, ये चलते हुए लगते हैं। होता ये है कि ज्वार के आने से जब मिट्टी कट जाती है तो नए पौधे पानी में सरकते हुए वहाँ आगे चले जाते हैं जहाँ मिट्टी है, तो ऐसा लगता है कि पूरा जंगल खिसक रहा है।
1: सचमुच प्रकृति बड़ी अनोखी है। एक बात और बता दूं श्रोताओं को, बड़ी रोचक है, ध्यान से सुनिएगा श्रोताओं। क्योंकि सुंदरवन में मीठे पानी और खारे पानी दोनों मिश्रित हैं, ऐसे में मैंग्रोव के पौधों को जीने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है।
0: लेकिन भला वो कैसे?
1: वो ऐसे कि जीवित रहने के लिए मैंग्रोव वन के पौधे एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा खारे पानी का नमक छान कर निकाल देते हैं, यानी उन्हें समुद्र के खारे पानी से लड़ना पड़ता है। साधारण पेड़ पौधे खारे पानी से मर जाते हैं, लेकिन मैंग्रोव वनों में पत्तियां और जड़ें नमक को छानकर निकाल देती हैं। और हाँ अजीत जी, जब सुंदरवन की बात चल ही रही है तो वहाँ के विशेष प्राणी बंगाल टाइगर की चर्चा कैसे छूट सकती है?
0: जी विमलेश जी, इन्हें रॉयल बंगाल टाइगर भी कहते हैं।
1: जी
0: आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हर बाघ के शरीर की धारियाँ एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हम इंसानों की फिंगरप्रिंट्स एक दूसरे से नहीं मिलती।
1: जी
0: इन्हें घने जंगलों में पानी के पास रहना पसंद होता है क्योंकि ये बहुत अच्छे तैराक होते हैं।
1: सुंदरवन में सफेद बाघ भी पाए जाते हैं। ये बाघ दुनिया में एकमात्र ऐसे हैं जो खारा पानी भी पी सकते हैं।
0: और हाँ, यूनेस्को ने सुंदरवन को वर्ल्ड हेरिटेज या विश्व धरोहर के रूप में मान्यता दी है।
1: जी
0: जी हाँ, सुंदरवन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। ये दुनिया की सबसे रोमांचक जगहों में से एक है।
1: बंगाल टाइगर, मगरमच्छ, मीठा पानी, खारा पानी, जीवित रहने के लिए नमक को छानकर बाहर निकालने वाले पेड़, जैव विविधता, खिसकने वाले और पानी में जड़ जमाने वाले पेड़, रातों को एक विशेष प्रकार के फंगस से निकलता हल्का नीला प्रकाश और ज्वारभाटा, कुल मिलाकर सचमुच हमारा सुंदरवन बहुत ही रोचक और रहस्यमय है।
0: जी हाँ श्रोताओं, और आइए अब अंत में जानते हैं कि भारत में और कहाँ कहाँ मैंग्रोव वन है।
1: सुंदरवन के अलावा उड़ीसा में भितरकानिका, तमिलनाडु में पिचवरम और आंध्र प्रदेश में गोदावरी कृष्णा नदी का डेल्टा।
0: तो श्रोताओं, ये थी जानकारी मैंग्रोव वनों की और विशेष करके सुंदरवन की।
1: जी
0: अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। आज का प्रश्न है,
1: साधारण पेड़ खारे पानी में मर जाते हैं लेकिन मैंग्रोव वन के पौधे खारे पानी में भी जीवित रह पाते हैं, ऐसा क्यों? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: साधारण पेड़ खारे पानी में मर जाते हैं लेकिन मैंग्रोव वन के पौधे खारे पानी में भी जीवित रह पाते हैं, ऐसा क्यों? भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर। और हाँ, आप हमारे ईमेल पर भी, यानी audio@ciet.nic.in पर भी हमारे प्रश्नों के जवाब और संदेश भेज सकते हैं।
1: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। हमारा पहला कार्यक्रम है लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर।
1: कक्षा 2 की अंग्रेजी की पुस्तक की एक लघु कविता पर आधारित ये कार्यक्रम विशेष रूप से संदेश देता है कि हमारे द्वारा किए जाने वाले छोटे छोटे कार्यों में भी अगर लगन और निरंतरता बनी रहे तो उनके द्वारा बड़े बड़े आश्चर्यजनक परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं।
2: CIET NCERT presents the program Little Drops of Water

0: अभी आपने सुना यह खूबसूरत कार्यक्रम, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम वृक्षों की माता सालू मरदा थिमक्का।
1: ये कार्यक्रम एक महान पर्यावरण संरक्षिका सालू

CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है विशेष उपलब्धियों को प्राप्त करने वाली महिलाओं के जीवन पर आधारित श्रृंखला छू लूं मैं आकाश।

0: इस श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम वृक्ष माता सालू मरदा थिमक्का।
1: भारत में प्राचीन काल से ही पेड़ पौधों और वनस्पति को आदर देने का शास्त्रीय और सामाजिक प्रचलन रहा है। वेदों और अन्य शास्त्रों में हमें ऐसे मंत्र और विवरण प्रचुरता से मिलते हैं। भारत की जनजातीय संस्कृति में पर्यावरण से संबंधित पर्व त्योहार, लोक कथाओं और रीति विधियों की भरमार है।
2: शेष विश्व ने बहुत बाद में ये महसूस किया कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी में पेड़ पौधों और वनस्पति का सीधा संबंध जीवन के अस्तित्व से है।
1: ऐसे में हमारा ध्यान जाता है उन महान व्यक्तित्वों पर जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया और महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज हम बात करेंगे एक विलक्षण पर्यावरणविद स्त्री की जिन्होंने पर्यावरण के संरक्षण में अभूतपूर्व काम किया है।
2: लेकिन कैसे हुआ ये सब? किन बातों ने उन्हें प्रेरित किया पर्यावरण की सेवा करने के लिए? आइए जानते हैं। इनका नाम है
3: सालू मरदा थिमक्का, समाज सेवा।

0: श्रीमती थिमक्का। इनका जन्म 8 जुलाई 1911 में दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य के तुमकुरु जिले के गुब्बी गांव में हुआ था। श्रीमती थिमक्का कर्नाटक में ही रहती हैं। ये बहुत ही निर्धन परिवार से आती हैं। पैसे के अभाव के कारण इन्होंने जंगल में मवेशी चराने का काम किया और बाद में एक स्थानीय खदान में दैनिक वेतन भोगी के रूप में कार्य करना शुरू किया। इन्हें पौधों से बहुत प्यार था।
1: समय बीतता गया। गरीबी और सुविधाओं की कमी के कारण वो कभी स्कूल नहीं जा पाई।
0: खदान में काम करते करते उनका विवाह पास के ही होलिकल गांव के श्री बिक्काला चिकैया से हो गया और वो दोनों अपने दाम्पत्य जीवन में व्यस्त हो गए।
1: अपने छोटे से घर के बाहर भी उन्होंने बहुत सारे पौधे लगाए। प्रतिदिन खदान में काम पर जाना और सुबह शाम खदान और घर के पौधों की देखभाल करना उनकी दिनचर्या थी।
0: इस काम में उन्हें अपने पति का भी भरपूर सहयोग मिला। उनका घर एक छोटी मोटी नर्सरी बन गया था जिसमें पौधों की बहुत सी किस्में थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन बस एक कमी थी जो दोनों को बहुत खलती थी।
1: उनके कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वो अक्सर बहुत दुखी रहते थे। गांव वालों के ताने और लोगों द्वारा तरह तरह की बातों को सुनकर वो बहुत आहत हो जाते। इस बारे में अक्सर पति पत्नी में बातें होती।
2: जी सुनिए, विवाह को इतने वर्ष बीत गए, अभी तक हमें संतान का सुख नहीं मिला है।
3: थिमक्का, तुम इन बातों को ज्यादा मत सोचो। देखो, सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। सिर्फ उसकी कृपा हो जाए तो ये सुख भी हमें मिल जाएगा।
2: लेकिन कब तक हम ऐसे ही रहेंगे?
3: हाँ।
2: मुझसे गांव वालों के ताने नहीं सुने जाते।
3: कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा।
2: लोग कहते हैं मैं मनहूस हूँ।
3: नहीं, बिल्कुल नहीं।
2: किसी को खुशी नहीं दे सकी।
3: अरे

0: मुझे लगता है हम मेरे जीवन का।
1: अरे नहीं नहीं नहीं तिमक्का, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं कहते। अरे ऐसी तो कोई बात नहीं है, लोगों का तो काम ही है कहना, कहने दो उन्हें, सब ठीक हो जाएगा तिमक्का, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा क्यों ना एक काम करें, हम थोड़ी देर के लिए बगीचे में चलें। चलो आओ, उठो उठो, शाबाश, हाँ उठो, आजा आओ। हाँ देखो कितने सारे पौधे लगे हैं यहाँ, ये तुमने तो लगाए हैं अपने हाथों से। देखो क्या तुम्हें नहीं लगता थी मक्का कि तुम्हें देखकर ये कितने ज्यादा खुश हो रहे हैं?
0: हाँ, क्यों खुश नहीं होंगे, ये तो मेरे बच्चे के समान है।
1: अरे बच्चे के समान नहीं, ये तुम्हारे बच्चे हैं थिमक्का, तुम्हारे बच्चे।
0: हाँ।
1: संतान न होने के कारण दुखी होकर रोते रहने से तो अच्छा है कि क्यों ना हम अपना पूरा प्यार इन्हीं बच्चों पर उड़ेल दें।
0: शायद आप ठीक कहते हैं, ये हमारे बच्चे ही हैं।
1: हाँ,
0: हाँ
1: बिल्कुल सही कहा तुमने। हाँ? ये हुई ना बात।
2: फिर क्या था, अब उन्हें खुशी से जीने की मानो एक मंजिल मिल गई थी, एक लक्ष्य मिल गया था। इस घटना के बाद उन्होंने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनके गांव के सामने से होलिकल और कुदुर का राजमार्ग जाता था।
3: उन्होंने देखा कि राजमार्ग पर पेड़ बहुत कम थे। थिमक्का अक्सर सोचती,
0: सुनिए देखो कितना अच्छा होता यदि सड़क के किनारे किनारे बहुत से पेड़ होते।
1: हाँ ये तो है।
0: राहगीरों को सस्ताने के लिए ठंडी छांव तो मिलती।
1: सही कहा।
0: और हाँ पक्षियों को भी बसेरा मिल जाता।
1: बिल्कुल,
0: उन्हें खाने के लिए फल मिल जाते। तो ऐसा ही क्यों ना करें।
1: बिल्कुल सही सुझाव है तुम्हारा। हम लोग ऐसे ही करते हैं।
0: ठीक है,
1: इसके दोनों तरफ पेड़ लगाते हैं, ठीक है ना?
0: बिल्कुल ठीक है।
2: पति पत्नी ने निर्णय किया कि शुरुआत में वो सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी तक पेड़ लगाएंगे। उन्होंने सड़क के दोनों ओर बरगद के 20 पौधे लगाए।
3: कोई भी सोच सकता है कि पौधे लगाना भला कौन सी बड़ी बात है, मिट्टी खोदी और पौधा लगा दिया। लेकिन साथियों, किसी को वास्तविकता का पता तभी चलेगा जब वो स्वयं न सिर्फ पौधे लगाएंगे बल्कि उनकी पेड़ बनने तक रक्षा करेंगे।
2: काम आसान नहीं था, उन्हें बरगद के इन पौधों की रक्षा करनी थी। कर्नाटक का ये क्षेत्र शुष्क है, इसलिए पौधों को पानी भी देना था और उन्हें जानवरों से भी बचाना था।
3: वो दोनों सुबह शाम और छुट्टियों के दिन सड़क पर बाल्टी लेकर आते जाते हुए दिखते। उपहास करने वालों को क्या पता था कि पौधों से उनका रिश्ता साधारण नहीं बल्कि माता पिता और बच्चों का है।
0: जी सुनिए।
1: हाँ।
0: ये बाल्टी इधर लेकर आइए।
1: ये लो थिमक्का, ये भी ले लो, इसे भी भर दो।
0: हाँ।
1: मैं यहाँ डालता हूँ पानी।
0: अरे अरे इसको भी डालो।
1: हाँ,
0: ये देखो
1: देखो देखो कितना छोटा था ना ये पौधा, कितना छोटा था, देखो अब कितना बड़ा हो गया है ना।
0: प्यारा लग रहा है मेरा छोटा
2: बच्चा। लोगों की बातों की परवाह ना करते हुए उन्होंने कभी अपने उस संकल्प को हारने नहीं दिया। लेकिन हाँ, उन्होंने धीरे धीरे ये महसूस किया कि मानसून के समय यदि वो पौधों को लगाएं तो पौधों को पर्याप्त मात्रा में जल मिलेगा और वो अच्छी तरह से बढ़ेंगे भी।
3: बात निकली तो दूर तक पहुंचती चली गई। उन्होंने अपना पूरा स्नेह पौधों पर उंडेल दिया और हर साल पेड़ों की गिनती बढ़ती चली गई। धीरे धीरे लोगों ने भी साथ देना शुरू किया। सड़क के दोनों ओर धीरे धीरे बरगद के पौधे पनपने लगे और बढ़ते चले गए।
1: देखा थिमक्का, तुम्हारी मेहनत रंग लेकर आ गई है। कितने अच्छे लग रहे हैं ना पौधे।
0: हाँ।
1: और कितने बड़े भी लग रहे हैं।
0: अरे ये तो देखो कितना बड़ा हो गया।
1: हाँ।
0: सोचा भी नहीं था इतनी जल्दी बड़े हो जाएंगे।
1: हाँ, ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है।

0: अरे देखो तो कैसी हरियाली हो गई।
1: ऐसा लग रहा है जैसे हमारा शहर हो।
2: लेकिन इसी बीच एक दुखद घटना घटी। श्रीमती थिमक्का के पति का निधन हो गया। उन्होंने पति के साथ पेड़ लगाने के जिस काम को शुरू किया था उस काम को जारी रखा। 1940 के दशक से वो आज तक पेड़ लगा रही हैं। थिमक्का होलिकल और कुदुर के बीच स्थित 45 किलोमीटर लंबे राजमार्ग पर लगभग 400 पेड़ लगाने के लिए विख्यात हैं। साथियों, सालू मर्दा थिमक्का की यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती है। उन्हें पर्यावरणविदों ने वृक्ष अम्मा की संज्ञा दी है। उन्होंने अपने क्षेत्र में जैव विविधता वाले कुल 8000 से भी अधिक पेड़ लगाए हैं, जिससे स्थानीय पर्यावरण को बहुत लाभ पहुंचा है। उन्हें 8000 पेड़ों की माता की उपाधि भी दी गई है।
3: उनके क्षेत्र में मौसम पहले बहुत शुष्क हुआ करता था, लेकिन अब उसमें नमी बढ़ी है और वर्षा भी पहले से अधिक होने लगी है। पर्यावरण के प्रति उनकी इस विलक्षण सेवा को देखते हुए सन 2019 में भारत सरकार ने उन्हें देश के द्वितीय नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया।
4: सालू मर्दा थिमक्का, समाज सेवा।
2: 113 वर्ष की सालू मर्दा थिमक्का का कहना है,
5: किसी पौधे को देखिए तो उसे धन्यवाद दीजिए, क्योंकि वो आपके जीवन को खुशहाल और बेहतर बना सकता है। पेड़ हमारी जीवन रेखा है, जीवन रेखा, समझे? हाँ।
2: सालू मर्दा थिमक्का, वृक्ष अम्मा और 8000 पेड़ों की माता, आपको हमारा आभार। अपने वात्सल्य और ममता को आपने पेड़ पौधों में उंडेल कर और उन्हें अपनी संतान बनाकर मातृत्व का एक ऐसा नूतन, अनुकरणीय और अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है जिसे सदा याद रखा जाएगा।
6: अभी आप सुन रहे थे विशेष उपलब्धियों को प्राप्त करने वाली महिलाओं के जीवन पर आधारित कार्यक्रम वृक्ष माता सालू मर्दा थिमक्का। इस रेडियो नाटक के सभी पात्र काल्पनिक हैं। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, ध्वनिंकन विकास सांगवान, कलाकार सुषमा शर्मा, सुनील लोहिया, प्रवीण शर्मा, परवेज गौहर और शिमाइला परवेज, आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा निर्माण कुसुम लता। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम वृक्षों की माता सालू मर्दा थिमक्का। CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है पर्यावरण गीत वन में मेरा मन है।
2: पेड़ों की हरियाली, ठंडी ताजी हवा एक नई ऊर्जा का एहसास दिलाती है। सच में वन एक बहुत उपयोगी प्राकृतिक संपदा है। फिर भी पता नहीं क्यों हम अपनी जरूरतों को पूरा करते करते ये भूल जाते हैं कि इनकी देखभाल और सुरक्षा हमारी ही जिम्मेदारी है। अरे ये आवाज कैसी सुनाई दे रही है इधर से? लगता है कोई गा रहा है, जरा सुना जाए।

0: देखो वनों के होते हैं कितने प्रकार, कुछ वन पर्वतीय, कुछ पतझड़ीय, तो कुछ सदाबहार।
1: कहीं तेंदू तो कहीं महुआ, कहीं साल तो कहीं पलाश, बचाएं इनको हमें कहीं करनी न पड़े फिर तलाश।

0: अरे वाह, कितना सुंदर संदेश था। सच ही तो कहा है, वन से ही जीवन है। वन है तभी तो हम हैं। तो क्यों ना हम सभी अपनी रोजमर्रा की छोटी छोटी गतिविधियों में सावधानी बरतकर अपने हिस्से की जिम्मेदारी पूरी करें और वनों के संरक्षण में अपना योगदान दें। जैसे वनों से मिलने वाली चीजों, कागज, लकड़ी का समुचित उपयोग, पेड़ों की कटाई को रोकना, नए पेड़ लगाना और भी बहुत कुछ। आप भी सोचिए और अपनी भागीदारी सुनिश्चित कीजिए।
1: वन में मेरा मन है। अभी आप सुन रहे थे ये पर्यावरण गीत। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, अकादमिक समन्वय प्रोफेसर रुचि वर्मा, तकनीकी समन्वय बटी लैंग लिंगडो, आलेख अंजलि, ध्वन्यंकन विकास सांगवान, गायन स्वर पुन्यांशी और अनुष्का, निर्माण सहयोग मीनाक्षी कुकरेती, परामर्श अजीत होरो, निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री IVRS नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री IVRS नंबर है 8800440559। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली, भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अब हमें आज के कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा दीजिए। तो अब अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम
4: आकाशवाणी @ 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल। पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली OG कौन है। बॉस, रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
3: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत।
5: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
6: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
5: लोकल और राष्ट्रीय

0: घर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए
2: 0542227658।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें
3: 0542227658। सुगम संगीत कार्यक्रम में कलाकार हैं दीप्ति तेलंग। पहले आपको सुनवा रहे हैं मीराबाई की भक्ति रचना।

0: महादेवी वर्मा की रचना अभी आपने सुनी। कलाकार थी दीप्ति तेलंग। सुगम संगीत कार्यक्रम समाप्त तो होता है।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के ठीक 12:45 हुए हैं।

शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में आइए सुने पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का बांसुरी वादन। राग है मदमाद सारंग, तबले पर संगति की है उस्ताद साबिर खान ने।

0: शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का बांसुरी वादन। राग था मदमाद सारंग, तबले पर संगत की उस्ताद साबिर खान ने। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। 1 बजने को है अब समाचार, दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर बातचीत की। बातचीत के बाद इस समय समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान किया जा रहा है। साइप्रस के राष्ट्रपति 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइट्स की भारत की ये पहली यात्रा है। श्री क्रिस्टोडोलाइट्स आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे।

0: क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को नई दिल्ली में होगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के निमंत्रण पर ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो बैठक में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड के दृष्टिकोण के अनुरूप क्वाड विदेश मंत्री प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे और क्वाड के अंतर्गत की गई पहलों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। भारत की यात्रा पर रवाना होने से पहले अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को एक महान साझेदार बताते हुए कहा कि इस यात्रा के दौरान उन्हें क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों से मिलने का अवसर मिलेगा।
1: भारत के साथ बहुत कुछ करने को है, वो एक महान सहयोगी और साझेदार है। यह एक महत्वपूर्ण यात्रा है। मुझे लगता है कि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा और हम वहाँ क्वाड के साथ भी बैठक करेंगे। विदेश मंत्री के रूप में मेरी पहली बैठक क्वाड के साथ ही हुई थी। मुझे खुशी है कि हम अब भारत में यह बैठक कर पा रहे हैं और हम इस साल के अंत में भी एक और बैठक करेंगे।
0: निर्वाचन आयोग ने आज 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा, केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन और रवनीत सिंह सहित कई सदस्यों का राज्यसभा का कार्यकाल अगले महीने समाप्त हो रहा है। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक की 4, राजस्थान और मध्य प्रदेश की 3, झारखंड की 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम की एक एक सीट के लिए चुनाव होगा। अधिसूचना 1 जून को जारी की जाएगी और मतदान 18 जून को होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। आयोग ने महाराष्ट्र और तमिलनाडु में राज्यसभा की एक एक सीट के लिए उपचुनाव की भी घोषणा की है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने तिरुवंचूर राधा कृष्णन को 16वीं केरलम विधानसभा का अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने विश्वास व्यक्त किया कि श्री राधा कृष्णन का व्यापक विधायी अनुभव और संसदीय परंपराओं की गहरी समझ सदन को निष्पक्षता, बुद्धिमत्ता और गरिमा के साथ मार्गदर्शन प्रदान करेगी। उन्होंने उनके आगामी कार्यकाल के सफल होने की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोलाइड इस समय संयुक्त प्रेस सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं।
2: पूरी विजिट के दौरान आपकी आत्मीयता, आपका स्नेह और भारत के प्रति आपका विशेष जुड़ाव हमने बहुत गहराई से महसूस किया और आज आपकी भारत यात्रा हमारी शेयर्ड जर्नी का अगला महत्वपूर्ण पड़ाव है। फ्रेंड, भारत और साइप्रस की मित्रता मजबूत भी है और फ्यूचरिस्टिक भी है। लोकतंत्र और रूल ऑफ लॉ जैसे मूल्यों में साझा विश्वास हमारी साझेदारी के आधार है। हम सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करते हैं। भारत इन सिद्धांतों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और आगे भी रहेगा।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा को चुनौतियों से निपटने के लिए व्यापक क्षेत्रीय जिम्मेदारी के तौर पर देखा जाना चाहिए। आज नई दिल्ली में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के अलंकरण समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि कई तरह की कमजोरियों और चुनौतियों के बावजूद बल ने लगातार देश के गौरव को बनाए रखा है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.7% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 1:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं और हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा। पहली सूचनाएं खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में। सहायक पुलिस आयुक्त सारनाथ कमिश्नरेट वाराणसी से प्राप्त एक सूचना, इसके अनुसार अनुराधा, पति का नाम राम अवतार, ये ग्राम सीबो चैबेपुर वाराणसी के निवासी हैं और 23 जून 2025 से अपने घर से लापता हैं। अनुराधा की आयु है 24 वर्ष, कद 157 सेंटीमीटर, रंग गेहुआ, चेहरा गोल है। आखिरी बार जब इन्हें देखा गया तो इनका पहनावा था

काले रंग की बूटीदार फ्रॉक और सफेद लेगिंग। इनके बारे में कोई जानकारी आपको मिले तो सहायक पुलिस आयुक्त सारनाथ कमिश्नरेट वाराणसी को सूचना दें। सहायक पुलिस आयुक्त कोतवाली वाराणसी से प्राप्त एक सूचना, इसके अनुसार पूनम, पिता का नाम वासुदेव, ये टेंगरा मोड़ रालूपुर रामनगर वाराणसी की निवासी हैं और 29 जून 2025 को दिन में 12 बजे से अपने घर से लापता हैं। पूनम की आयु है 23 वर्ष, कद 5 फीट 8 इंच, रंग गोरा, चेहरा लंबा है। आखिरी बार जब इन्हें देखा गया तो इनका पहनावा था कत्थई रंग की साड़ी। इनके साथ इनके दो पुत्र आदित्य 9 वर्षीय और डुग्गू 5 वर्षीय भी लापता हैं। इनके बारे में कोई जानकारी आपको मिले तो सहायक पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट पुलिस वाराणसी को सूचित करें। रोहित मौर्य, पिता का नाम राजकुमार मौर्य, ये पुरानी चुंगी पंचक्रोशी शिवपुर वाराणसी के निवासी हैं और 12 जून 2025 से लापता हैं। रोहित मौर्य की आयु है 22 वर्ष, कद 165 सेंटीमीटर, रंग गेहुआ, चेहरा गोल है। आखिरी बार देखे जाते समय इनका पहनावा था सलेटी रंग की टी शर्ट और भूरे रंग की पैंट। इनके बारे में कोई जानकारी आपको मिले तो सहायक पुलिस आयुक्त कैंट वाराणसी को सूचित करें। ये थी खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं और अब जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की। आज रात 10:30 पर शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में आप सुनेंगे पल्लव दास का ध्रुपद गायन। साहित्यिक पत्रिका मंजूषा प्रसारित होगी रात्रि 10 बजे, इसमें आज डॉक्टर उमा कांत सिंह की वार्ता होगी काशी के अमर स्वर जयशंकर प्रसाद। साथ ही डॉक्टर नसीमा निशा का काव्य पाठ भी आप सुन सकते हैं। रात में 9:30 पर कार्यक्रम होगा अंजुमन। शाम 7:31 पर पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी श्रृंखला के अंतर्गत प्रख्यात वायलिन वादिका विदुषी डॉक्टर एन राजम पर कार्यक्रम प्रसारित होगा। प्रसारण समय याद रखें शाम 7:31 का। सुगम संगीत कार्यक्रम में रात्रि 8 बजे डॉक्टर दीप्ति तेलंग कलाकार होंगी। शाम 6:30 पर कृषि जगत कार्यक्रम में डॉक्टर अमरेश कुमार सिंह से दिनेश कुमार सिंह की बातचीत सुनवाई जाएगी, पशुओं के दाना मिश्रण तैयार करते समय सावधानियां। इसके अलावा इसी कार्यक्रम में लोकगीत के कलाकार होंगे तेज बहादुर यादव और उनके साथी। गृहलक्ष्मी कार्यक्रम में 1:15 पर आप सुनेंगे रूपक आकाशवाणी के 90 वर्ष तरंगों की समय यात्रा, प्रस्तुति आकांक्षा सिंह की। इसके अलावा चर्चा और गीत संगीत एक ही कलाकार कार्यक्रम होगा 2:30 पर, प्रस्तुति शिखा श्रीवास्तव की होगी। युवाणी कार्यक्रम में शाम 5:15 पर आज के आकर्षण है आज की बात, सिने दर्पण, यूथ डायरी में आज के शब्द, इतिहास में आज का दिन, रोजगार सूचना और फिल्म संगीत। अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 1:10 होने वाले हैं इलाकाई खबरें, लखनऊ केंद्र से रिले की जाएंगी।

0: ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप शाइस्ता बानों से इलाकाई खबरें सुनिए। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज देवरिया में 655 करोड़ रुपए से ज्यादा के 19 प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संघ की बुनियाद रखा। प्रोग्राम को खिताब करते वजीर आला ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की कयादत में 2014 के बाद हम नए भारत के दर्शन कर रहे हैं, ये वजीर आजम का विजन है।
1: हम सब इस बात को जानते हैं कि 2014 के बाद आज जिस नए भारत का हम सब दर्शन कर रहे हैं, इसके पीछे प्रधानमंत्री मोदी

0: जी का नेतृत्व और उनका वह विजन है जो विकास को प्राथमिकता देता है, और प्रधानमंत्री जी के उसी विजन को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इस बात को हमेशा प्राथमिकता दी है कि गति जितनी तेज होगी विकास का लाभ उतनी तेजी के साथ आम जन को प्राप्त होगा।
1: इस मौके पर वज़ीर-ए-आला ने मुख्तलिफ स्कीमों से फायदा उठाने वालों में सर्टिफिकेट भी तकसीम किए। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने राजा राम मोहन राय को उनकी यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश की। जनाब शाह ने कहा कि ब्रह्म समाज के क्याम के जरिए राजा राम मोहन राय ने समाजी तौहियात तगयानूसी तस्वरात और अदम मसावात के खिलाफ लोगों में बेदारी पैदा की। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने खराज अकीदत पेश करते हुए एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, कहा जाता है कि राजा राम मोहन राय ने समाज को तोहम परस्ती से लेकर अक्ल की तरफ, बुरे तरीकों से तरक्की पसंद शऊर की तरफ ले गए। जदीद तालीम के फैलाव में उनका ताउन हमेशा कौम को मुतासर करता रहेगा। रियासती सनअती तरक्की के वजीर नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने कल अहदेदारों के साथ मीटिंग की ताकि यमुना एक्सप्रेसवे, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरक्याती प्रोजेक्टों, जारी प्रोजेक्टों और एक्सप्रेसवे के साथ तैयार किए जाने वाले सनअती इलाकों का जायजा लिया जा सके। उन्होंने कहा कि नोएडा बैनुल अक्वामी हवाई अड्डे के खुलने से पूरा खित्ता कार्गो का एक अहम मरकज बनने के लिए तैयार है। ऐसे में यमुना एक्सप्रेसवे, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के तमाम अफसरान और मुलाजमीन की जिम्मेदारी मजीद बढ़ गई है कि वो पूरी लगन के साथ काम करें और पूरे इलाके की तरक्की करें। रियासती हुकूमत ने कल रियासती सरकारी मुलाजमीन के महंगाई अलाउंस में 2% इजाफा किया है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बराए खजाना दीपक कुमार ने सिलसिले में एक हुक्मनामा जारी किया। हुक्मनामे के मुताबिक मुलाजमीन को बढ़ा हुआ अलाउंस 1 जनवरी 2026 से अदा किया जाएगा। इससे कबल रियासती मुलाजमीन को 58% डीए मिलता था, अब उन्हें 60% डीए मिलेगा। रियासती हुकूमत ने 1/5 रुकनी पसमानदा तबकाती कमीशन की तकरीरी की, जिसकी सदारत रियासती हुकूमत कर रही है और मेंबरान की तकरीरी की है। इस कमीशन की तश्कील की मंजूरी काबीना के हालिया इजलास में दी गई है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह को इस नए 5 सदस्यीय आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि सेवानिवृत्त अपर जिला न्यायाधीश ब्रजेश कुमार और संतोष कुमार विश्वकर्मा, सेवानिवृत्त आईएएस डॉ. अरविंद कुमार चौरसिया और एसपी सिंह को आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। इस आयोग पर प्रदेश में आगामी त्रिस्तरीय ग्रामीण स्थानीय निकाय चुनावों में पिछड़ा वर्ग के लिए सीटें आरक्षित करने की जिम्मेदारी होगी। आयोग के सभी सदस्यों का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने से 6 महीने की अवधि के लिए होगा। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
1: मर्दमशुमारी 2027 के तहत रियासत के खुद मर्दमशुमारी का दूसरा मरहला आज से शुरू हो गया है, जिसका आगाज घरों की गिनती से होगा। आज से मर्दमशुमारी के लिए मुकर्र करदा शुमार कुंदगान घर घर जाकर लोगों से 33 सवाल पूछेंगे। इस सिलसिले में मर्दमशुमारी करने वाले हापुड़ में घर घर जा रहे हैं। शुमार कुंदगान मकानात को मुस्तकिल नंबर तफवीज कर रहे हैं, जिसके बाद वो मर्दमशुमारी के मकाम पर खानदान की तफसीलात जमा करेंगे और उन्हें डिजिटल तौर पर दर्ज करेंगे। मर्दमशुमारी 2027 के एक हिस्से के तौर पर रियासत में 7 मई से खुदगिनती का अमल जारी हुआ था, जो कल खत्म हुआ। रियासती मर्दमशुमारी के डायरेक्टर और चीफ मर्दमशुमारी अफसर शीतल वर्मा ने कहा कि अगले मरहले में आज से शुरू होने वाले मर्दमशुमारी कारकुन घर घर जाकर फॉर्म भरेंगे। जिन लोगों ने खुद शुमारी के तहत पोर्टल पर अपनी मालूमात दर्ज की है, उन्हें अपने घर जाने पर 11 हिंसों का कोड फराहम करना होगा, जो मालूमात की तस्दीक करेगा। यह सिलसिला 22 जून तक जारी रहेगा। गवर्नर आनंदीबेन पटेल की हिदायत पर अमल करते हुए तमाम रियासती यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों में ड्रेस कोड को लाजमी बनाया जाएगा। रियासत के आला तालीम के वजीर योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि तमाम तालीमी इदारों में यूनिफॉर्म नाफिज किया जाएगा, जिससे तलबा में मसावात और नज़्म व ज़ब्त को फ़रोग मिलेगा। रियासत शदीद गर्मी और हीट वेव के हालात से दो चार है। जिला बांदा गुज़िश्ता रोज मुल्क के गर्म तरीन जिले से रहा। दीगर अजला में भी दर्जे हरारत 46 डिग्री सेल्सियस से तजावुज कर गया। हमारे नामा निगार की इतला है कि रियासती दारुल हुकूमत लखनऊ में भी कल पारा 43.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो मामूल से 5 डिग्री ज्यादा रहा। वहीं शदीद गर्मी के पेश नजर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट विशाख जी ने आज से सभी बोर्ड के स्कूलों में गर्मी की छुट्टी का ऐलान कर दिया है, जिस पर सख्ती से अमल करने के अहकाम दिए गए हैं। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नशर किया जाएगा।
3: यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। 1:15 और 47 सेकंड हुए हैं। अब महिलाएं सुनेंगी।

0: अपना कार्यक्रम गृहलक्ष्मी।
1: सखियों के साथ,
2: सखियों की बात,
3: सखियों के जज्बात,
4: गृहलक्ष्मी।
1: लक्ष्मी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपकी रेडियो सखी मंजरी। सखियों, गर्मी अपने चरम पर है और साल दर साल यह बढ़ती ही जा रही है, और कारण भी तो हम ही है ना, क्योंकि हमें लगता है कि हम बस पृथ्वी पर हैं तो पृथ्वी हमारी ही है और सारे संसाधन, जीव जंतु सब हमारे लिए ही हैं। पर वास्तविकता ऐसी नहीं है, क्योंकि पृथ्वी पर जीवन का संतुलन पेड़ पौधे और विविध प्रकार के जीव जंतुओं के कारण है। सखियों, आज 22 मई को हर साल यही याद दिलाने के लिए विश्व जैव विविधता दिवस मनाया है। वर्ष 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिवस को प्रथम बार मनाया। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को जैव विविधता के महत्व के प्रति जागरूक करना था। सखियों, आज जब जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग जैसी चुनौतियां अपने चरम पर हैं, जैव विविधता का संरक्षण और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। हमारी आधुनिक जीवन शैली और बढ़ते प्रदूषण के कारण आज प्रजातियों के विलुप्त होने की दर सामान्य से 100 गुना या ये कहें कि 1000 गुना अधिक हो गई है, और कारण बहुत सारे हैं। क्योंकि सिर्फ सरकार ही नहीं, यह हमारा व्यक्तिगत संकल्प ही होना चाहिए कि हम प्रकृति संरक्षण का हिस्सा हैं, हम प्रकृति का हिस्सा हैं, पूरी प्रकृति हमारी नहीं है, और इसके लिए हमें बहुत सारी छोटी छोटी बातों का ध्यान भी रखना होगा। तभी तो हमारी पृथ्वी हरी भरी होगी और हमारे लिए प्राणवायु यानी कि ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होगी। और सखियों, इसके लिए हमें वृक्षारोपण पर ध्यान देना होगा, चाहे एक ही पेड़ लगाएं लेकिन हमको ज़रूर लगाना चाहिए। और प्लास्टिक तो जैसे हम सभी के दिनचर्या का एक हिस्सा बन गया है। अक्सर क्या होता है कि जब हम बाजार जाते हैं तो हम साथ में कैरी बैग नहीं ले जाते हैं, और नतीजा दुकान वाले से हम कहते हैं भैया ये सामान दे दो, और वो एक प्लास्टिक का थैला हमें पकड़ा देता है। सरकार ने बहुत सारे नियम बनाए हैं और प्लास्टिक पर नियंत्रण भी किया गया है, लेकिन अभी भी आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको चोरी छिपे प्लास्टिक दिख ही जाएगा। और चोरी छिपे क्या, बहुत जगह तो वैसे भी दिखता है। तो वो प्लास्टिक का उपयोग हम कम से कम करें। हम अपने घर से निकल रहे हैं, अगर कोई इमरजेंसी है तो बात अलग है, लेकिन अगर अपने घर से निकल रहे हैं तो एक थैला जो कपड़े का हो या कागज का हो तो अपने घर से लेके जाएं, जिससे कि प्लास्टिक का उपयोग कम हो। और जल संरक्षण तथा उसकी स्वच्छता का ध्यान भी हमें रखना चाहिए, क्योंकि आप कहेंगी ये सारे काम हम कैसे करेंगे। अरे सखियों, तो जल तो हम अपने घर में भी बचा ही सकते हैं कि अगर नल खुला है तो नल बंद कर दे, और अगर जो पानी हम थोड़ा रीयूज़ कर सकते हैं, रीयूज़ का मतलब पुनः उसका हम प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि अगर हमने घर में कुछ सब्जियां धोई हैं, हमने चावल धोया है, तो उस पानी को हम अपने पेड़ पौधे में डाल दें, और आसपास कोई अगर ऐसा दिखे कि हाँ जो पानी का दुरुपयोग कर रहा, तो उसे हम समझा भी सकते हैं। और जो हमारा पर्यावरण है ना, उसके लिए आपको स्वयं जागरूक होना चाहिए। हो सकता है कुछ लोग आपको कहें कि अरे ये तो ज़्यादा ही सोचती है, लेकिन कहने दीजिए, कोई बात नहीं, आप अपना काम करें। और अगर आपके आसपास वृक्षारोपण के लिए आप कुछ कर सकती हैं और लोगों को प्रोत्साहित कर सकती हैं, तो सखियों मानिए ये पर्यावरण के साथ साथ आपके लिए बहुत बड़ा पुण्य का काम भी होगा। तो ऐसा ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि हम तो जो झेल रहे हैं वो तो चलो झेल ही रहे हैं, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ी भी न झेले, तो इसके लिए प्रयास हमें अभी से करना होगा। और यह दिवस प्रकृति के प्रति कृतज्ञता को प्रकट करने का दिन है, इसलिए न केवल आज के दिन बल्कि प्रतिदिन हम यह याद रखें कि प्रकृति है तो हम हैं, इसलिए इसे बचाना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। आपका छोटा सा प्रयास भी प्रकृति संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है, और जब हम सभी मिलजुल कर प्रयास करेंगे तो धरती फिर से हरी भरी हो जाएगी, नदियाँ स्वच्छ होंगी, और जो हवा बहती है ना उसमें दम घुटेगा नहीं, और उस हवा में मन मचल जाएगा, जीवन से भरपूर हो जाएगा, और मन कुछ इस तरह से गुनगुनाने लगेगा।

0: दीदी नौकरी लग गई।
1: अरे वाह बधाई हो, तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
0: हाँ दी नया मोबाइल।
1: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
2: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
1: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
0: पर दीप
1: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
0: हाँ दी पार्टी मेरी बजट तुम्हारा।
1: अच्छा
3: RBI कहता है
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
5: सुनो ना।
6: हाँ?
5: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
6: तो रोका किसने है? हाँ?
5: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
6: मुझसे।
5: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
6: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
5: पर उससे मेरा क्या फायदा?
6: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
5: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
6: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो
7: 0542227658।
5: ओ
8: 0542227658।
5: लो अभी फोन लगाता।

0: 054-222-7658। आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
1: सखियो, जब बात समय की हो रही है और गर्मी की हो रही है, वातावरण की हो रही है, तो ये जो गर्मियों का सीजन हो ना, गर्मियों के सीजन में लोग घूमने फिरने भी बहुत जाते हैं। छुट्टियां हो जाती हैं तो लोग जगह जगह पे घूमने चले जाते हैं, लेकिन अभी तो ऐसा लगता है ना कि घर से बाहर ही कैसे निकलें। अगर स्टेशन जाना हो तो वैसे भी लगेगा कि अरे बाप रे, कौन जाएगा। तो सब लोग अगर घूमने जाते हैं तो हम अब भी तो जा सकते हैं ना। आप सोच रही होंगी कि भाई स्टूडियो में बैठ के कहाँ घुमाने की बात हो रही है और कैसे घूमेंगे हम साथ साथ। तो सखियों, परेशान नहीं करूंगी, गर्मी में क्यों जाना है कहीं। सखियों, यात्रा दो तरीके से हो सकती है। एक यात्रा शरीर के साथ होती है और एक यात्रा हम मन से करते हैं, मन की आंखों से उस यात्रा को महसूस कर सकते हैं। जैसे कि हमारा आपका रिश्ता देख लीजिए, आपने हमें कभी देखा नहीं है और हमने आपको कभी नहीं देखा है, लेकिन आवाज़ के माध्यम से हम एक दूसरे को जानते हैं, समझते हैं और हम एक दूसरे का इंतज़ार करते हैं। और आकाशवाणी में तो ऐसे बहुत सारे ऐसे हमारे प्रस्तोता हुए या ऐसे हमारे उद्घोषक हुए जिन्हें हम उनकी आवाज़ से जान लेते थे और एक इमेज भी अपने आप ही दिमाग में हम बना लेते थे। और याद करिए, अगर हम अपने बचपन की बात करें तो हम में से बहुत सारी सखियों ने आकाशवाणी को बचपन में ज़रूर सुना होगा। हमारी मम्मियों की बात करें तो उनकी तो बहुत सारी यादें जुड़ी होंगी, हर कार्यक्रम से संबंधित कोई ना कोई याद ज़रूर होगी। और अगर हम में से दादा दादी या नाना नानी किसी के जीवित है ना, तो उनका तो एकमात्र सुख दुख का साथी आकाशवाणी ही रहा होगा। वो उसके हर कार्यक्रमों को बहुत चाव से सुनते थे और बहुत भावनात्मक संबंध था उनका आकाशवाणी के साथ में। वह कहीं ना कहीं उद्घोषक के साथ में अपने आप को कनेक्ट पाते थे, उन्हें ऐसा लगता था कि वो उनके दिल की बात कह रहा है। तो जब ये आकाशवाणी इतनी पुरानी है तो इसकी अपनी एक कहानी भी होगी। तो अब जब कि इसके 90 वर्ष यानी कि जो आगामी जून महीना आएगा उसमें आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे हो जाएंगे, तो ये 90 वर्ष की यात्रा में जाहिर सी बात है बहुत सारे उतार चढ़ाव आए होंगे, बहुत सारा समय बदला तो बहुत सारी चीज़ें भी बदल गई। तो हम आज आपको एक विशेष रूपक के माध्यम से आकाशवाणी के 90 वर्षों की यात्रा पर ले चलते हैं। तो सुनते हैं विशेष रूपक, जिसका कि शीर्षक है आकाशवाणी के 90 वर्ष तरंगों की समय यात्रा। आलेख व स्वर मंजरी तिवारी का है और प्रस्तुति है आकांक्षा सिंह की। तो सखियों, आइए चलते हैं आकाशवाणी की समय यात्रा पे।

नमस्कार सखियों, आज हम यहाँ एक ऐसी आवाज का उत्सव मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं, जिसने समय की सीमाओं को लांघकर हर भारतीय के दिल में अपनी जगह बनाई है। यह आवाज है आकाशवाणी की। 1936 को जब ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत हुई, तब किसी ने सोचा भी नहीं था कि आकाशवाणी की तरंगे एक दिन पूरे राष्ट्र की धड़कन बन जाएंगी। रेडियो केवल एक तकनीक नहीं है, यह एक संस्कृति है। याद कीजिए वह समय जब घर में बिजली नहीं होती थी, लेकिन एक ट्रांजिस्टर जरूर होता था। वह दौर जब सेल खत्म होने पर उसे धूप में सुखाया जाता था, ताकि शाम को रेडियो के माध्यम से आकाशवाणी से प्रसारित समाचार या कमेंट्री सुनी जा सके। आज जब हम 90 वर्षों का हिसाब रखते हैं, तो हमें समझ में आता है कि आकाशवाणी ने हमें केवल सूचना नहीं दी, बल्कि हमें एक साथ रहना और सपने देखना सिखाया है। आकाशवाणी का इतिहास भारत के संघर्ष और विजय की

गाथा है। 1920 के दशक में जब बॉम्बे और कलकत्ता में रेडियो क्लबों ने अपनी छोटी छोटी तरंगे छोड़नी शुरू की तो वह एक नए युग की आहट थी। फिर आया आजादी का दौर। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जब अंग्रेजों ने प्रेस पर ताले लगा दिए, तब डॉक्टर उषा मेहता और उनके साथियों ने कांग्रेस रेडियो के जरिए क्रांति की अलग जगाई थी। हवाओं के जरिए आजादी का संदेश फैलाना उस समय की सबसे बड़ी जासूसी और देशभक्ति थी। 15 अगस्त 1947 की वह रात भला कौन भूल सकता है। लाल किले की प्राचीर से जब पंडित नेहरू ने कहा था कि पूरी दुनिया सो रही है और भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जाग रहा है, तो उस आवाज को देश के सुदूर गांवों तक पहुंचाने वाला माध्यम केवल रेडियो ही था। रेडियो उस दिन से लेकर आज तक स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा गवाह रहा है। सखियों, 1950 के दशक में इसे आकाशवाणी का सुंदर नाम मिला। पंडित नरेंद्र शर्मा के सुझाव ने रेडियो को भारतीयता के रंगों में सरोबार कर दिया। आकाशवाणी ने हमारी संस्कृति को सहेजने का काम किया। बड़े गुलाम अली खान, पंडित रविशंकर और बिस्मिल्ला खान जैसे दिग्गजों की कला को महलों से निकालकर आम आदमी की झोपड़ी तक पहुंचा दिया। सोचिए उन दिनों के बारे में जब टीवी नहीं था, तब हवा महल के नाटक हमें दूसरी दुनिया की सैर कराते थे।

हम आवाज सुनकर पात्रों के चित्र अपनी आंखों में खुद बुनते थे। आकाशवाणी ने हमारी कल्पना शक्ति को जीवित रखा और फिर आया विविध भारती का दौर। उन्नीस सौ सत्तावन में शुरू हुई यह सेवा भारतीय सिनेमा के लिए वरदान साबित हुई। अमीन सयानी जी की वह जादुई आवाज बहनों और भाइयों आज भी जब कानों में पड़ती है ना, तो मन पुरानी यादों की गलियों में खो जाता है।

0: बहनों और भाइयों, आज एक खास अहमियत और शान के साथ बजा है दुनिया के सबसे मशहूर रेडियो प्रोग्राम गीतमाला का ये संगीत, क्योंकि आज आपका दोस्त अमीन सायानी आपके लिए पेश कर रहा है गीतमाला की छांव में का 50वां और आखिरी वॉल्यूम।
1: बिना का गीतमाला केवल गानों की गिनती नहीं थी, वह करोड़ों लोगों का साझा प्रेम था। झुमरी तलैया जैसे छोटे से शहर को रेडियो ने ही विश्व प्रसिद्ध बना दिया। आकाशवाणी का असली चरित्र संकट के समय उभर कर सामने आता है। 1962 का चीन युद्ध हो या 1965 का पाकिस्तान युद्ध या 1971 का बांग्लादेश मुक्ति संग्राम, रेडियो एक सेनापति की तरह खड़ा रहा।
2: जय हिंद। आपसे मैं इस खतरे के समय बोल रही हूँ। कुछ ही घंटे पहले करीब 5:30 बजे शाम के 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने हमारे ऊपर एक हमला किया। पाकिस्तानी हवाई जहाजों ने हमारे अमृतसर, पठानकोट, श्रीनगर, अवंतीपुर, उत्तरलाई, जोधपुर, अंबाला और आगरे के हवाई अड्डों पर बमबाजी की।
1: उस समय समाचारों का मतलब केवल और केवल रेडियो ही होता था। लोग सड़कों पर रुक जाते थे, चाय की दुकानों पर भीड़ लग जाती थी, सिर्फ यह सुनने के लिए कि सीमा पर क्या चल रहा है। इतना ही नहीं, आकाशवाणी ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने में भी भूमिका निभाई। हरित क्रांति के दौरान कृषि जगत और चौपाल जैसे कार्यक्रमों ने किसानों को नई तकनीकों के बारे में बताया। जब वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में प्रयोग कर रहे थे, तब आकाशवाणी उन प्रयोगों को खेतों तक पहुंचा रहा था।

0: आकाशवाणी ने हमें सिखाया कि मनोरंजन और शिक्षा को कैसे एक साथ पिरोया जाता है। खेल की दुनिया में, विशेषकर क्रिकेट में, रेडियो की कमेंट्री ने जो रोमांच पैदा किया उसे आज का एचडी कैमरा छू भी नहीं सकता।
1: लेग स्पिन बॉलिंग, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद, बैक फुट पे गए और उसको स्विंग कर दिया स्क्वायर लेग की अमेरिका की तरफ, चार रन।
0: सुशील दोषी और जसदेव सिंह की आवाजों ने हमारे ड्राइंग रूम को स्टेडियम बना दिया था। 90 के दशक के उत्तरार्ध में जब निजी चैनलों और रंगीन टीवी की बाढ़ आई तो विशेषज्ञों ने भविष्यवाणी की कि अब रेडियो का युग समाप्त हो गया। लेकिन रेडियो तो वह चिराग है जो आंधी में और तेज जलता है। 1993 में एफएम रेडियो की शुरुआत ने इसे फिर से युवाओं के बीच लोकप्रिय बना दिया। रेडियो अब गंभीर से कूल हो गया। रेडियो जॉकी शहर के नए दोस्त बन गए। वे न केवल गाने सुनाते थे बल्कि शहर के ट्रैफिक, मौसम और स्थानीय मुद्दों पर भी बात करने लगे। आज के इस डिजिटल दौर में आकाशवाणी ने भी खुद को बदला है। पॉडकास्ट और इंटरनेट रेडियो के रूप में यह अब हमारे स्मार्टफोन में कैद है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब मन की बात के लिए रेडियो को चुना तो इस माध्यम की शक्ति का सबसे बड़ा आधुनिक प्रमाण था।
2: मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ।
0: उन्होंने साबित कर दिया कि अगर आपको देश की अंतिम कतार में खड़े व्यक्ति से बात करनी है तो आकाशवाणी से बेहतर कोई रास्ता नहीं है। अंत में मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि रेडियो केवल 90 वर्षों का सफर नहीं है, यह एक अटूट रिश्ता है। यह वह साथी है जो आपसे आपकी आंखें नहीं मांगता। आप काम करते हुए, गाड़ी चलाते हुए या आराम करते हुए इसे सुन सकते हैं। यह थिएटर ऑफ द माइंड है जहाँ पर्दे पर नहीं बल्कि हमारी सोच में दृश्य बनते हैं। तकनीकी कितनी भी बदल जाए, हम 5G या 6G की दुनिया में पहुंच जाएं, लेकिन आकाशवाणी की वह सिग्नेचर ट्यून जब बजती है ना, तो जो दिल को सुकून मिलता है वह किसी और ऐप या गैजेट में नहीं मिल सकता। रेडियो कल भी था, आज भी है, और जब तक इंसान के पास सुनने के लिए कान और महसूस करने के लिए दिल है तब तक रेडियो रहेगा। 9 दशकों की इस शानदार यात्रा को नमन। आकाशवाणी की आवाज हमेशा गूंजती रहे। जय हिंद, जय आकाशवाणी।
3: सखियों, अभी आप सुन रही थी विशेष रूपक आकाशवाणी के 90 वर्ष तरंगों की समय यात्रा। आलेख व स्वर था मंजरी तिवारी का और प्रस्तुति थी आकांक्षा सिंह की। सखियों, आकाशवाणी ने हमें बहुत सारी यादें दी हैं, हम सभी की यादें जुड़ी हैं, और गानों के लिए तो पहले एकमात्र स्तोत्र हमारे पास आकाशवाणी ही हुआ करता था। क्यों विविध भारती हो चाहे हमारे स्थानीय चैनल हो, हम उनके माध्यम से बहुत सारे कार्यक्रम सुनते थे और अपने गीतों की फरमाइश भी करते थे, जो आज भी जारी है। तो गीतों की बात हो रही है सखियों, तो हम भी अपने कार्यक्रम में एक गीत सुन लेते हैं।

0: सो क्यों, आपने बहुत प्यारा सा गीत सुना और वो बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि दिमाग थोड़ा सा शांत रहना चाहिए, क्योंकि वैसे भी गर्मियों में ना बहुत गर्मी लगती है तो दिमाग भी ख़राब सा रहता है और गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। तो चलते चलते सखियों यही कहूँगी कि ज़्यादा क्रोध गर्मी हो या ठंडी हो कभी भी ना करें, क्योंकि ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया तो है, पर जब ये हद से ज़्यादा होता है ना तो इसका असर हमारे तन और मन दोनों पर पड़ता है। इससे हमारा रक्तचाप बढ़ जाता है जिससे हार्ट अटैक का भी खतरा हो सकता है, यह हमारे तनाव का भी कारण होता है और साथ साथ हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता पर भी इसका असर पड़ता है। और स्वास्थ्य के अलावा सखियों, हमारे रिश्ते में गुस्से के कारण दरार आ सकती है और बाद में बस हमारे पास पछतावा रह जाता है। जो लोग ज़्यादा गुस्सा करते हैं उन्हें नींद की कमी भी हो जाती है क्योंकि उनका दिमाग जो शांत नहीं रहता। गुस्सा हमारे सामाजिक पारिवारिक जीवन को प्रभावित करता है, इसलिए जब भी गुस्सा आए गहरी सांस लें और संभव हो तो उस जगह से हट जाएं। और सखियों, अभी भी हमें भी हटने का टाइम हो चला है, यानी कि हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त हो चुका है, तो अब मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: सखियों के साथ,
2: सखियों की बात,
1: सखियों के जज्बात,
2: गृह लक्ष्मी।
3: महिलाएं सुन रही थी अपना कार्यक्रम गृह लक्ष्मी। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत। कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं तेज बहादुर यादव और साथियों के गाए कुछ लोकगीत। सबसे पहले एक कहरवा।

मोहलियो भस्मासुर को छमकाय पायल लीला धारी। नाचे नाचे जब गण थैया सर सर पे धर हाथ दुराचारी। तुरत पापी भस्म हुआ

0: इस पूर्वी के साथ ही आज का लोक संगीत कार्यक्रम समाप्त होता है। कार्यक्रम में आज के कलाकार थे तेज बहादुर यादव और उनके साथी।
1: मन की बात, प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
2: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली, अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
1: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें। मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
2: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।
0: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में 2 बजे आप सुनेंगे मिड डे न्यूज, उसके बाद 2:15 पर होंगे दोपहर समाचार। ये दोनों ही समाचार बुलेटिन हम दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
3: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वर्षा विलियम्स विद द मिड डे न्यूज। The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds discussion with President of Cyprus Nikos Christodoulidis in New Delhi, says India and Cyprus aim to double investment flows in next 5 years. Election Commission announces biennial elections for 24 Rajya Sabha seats from 10 states on the 18th of next month. Supreme Court to hear plea against CBSE's 3-language compulsory study for class 9 students from July the 1st. IMD issues red alert for severe heat wave over Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Vidarbh till tomorrow. And in IPL cricket, Sunrisers Hyderabad to take on Royal Challengers Bengaluru in Hyderabad this evening. India and Cyprus exchanged several agreements in different areas, including establishing a joint

0: योग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने बहुपक्षीय मंचों में सहयोग सहित क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त वक्तव्य में कहा कि भारत और साइप्रस के बीच मित्रता न केवल मजबूत है बल्कि भविष्योन्मुखी भी है। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग दोगुना हो गया है।
1: साइप्रस भारत के टॉप 10 इन्वेस्टर्स में से एक है। पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग डबल हुआ है। दोनों देशों के बीच ट्रस्ट बढ़ा है। भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से तमाम नई संभावनाएं बनी हैं। इसका लाभ उठाते हुए हम अगले 5 वर्षों में इस इन्वेस्टमेंट को फिर से डबल करने का लक्ष्य रख रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्ष में साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग बढ़ा है।
1: हमें बहुत खुशी है कि पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच मिलिट्री एक्सचेंज और ट्रेनिंग सहयोग बढ़े हैं। आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देश यूक्रेन और पश्चिम एशिया संघर्ष को शीघ्र समाप्त करने और शांति के प्रयासों का समर्थन करते हैं।
1: यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर भी एकमत है कि बढ़ते हुए ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशन का रिफॉर्म अर्जेंट और इम्पोर्टेंट है।
0: साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। इससे पहले आज सुबह विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने साइप्रस के राष्ट्रपति से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि उन्होंने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और भारत यूरोपीय संघ सहयोग के लिए राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइट्स के विचारों और मार्गदर्शन की सराहना की। साइप्रस के राष्ट्रपति 4 दिवसीय भारत दौरे पर हैं। राष्ट्रपति पद पर रहते हुए श्री क्रिस्टोडोलाइट्स का ये पहला भारत दौरा है। साइप्रस के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भेंट करेंगे। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को नई दिल्ली में होगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के निमंत्रण पर ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो बैठक में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड के दृष्टिकोण के अनुरूप क्वाड विदेश मंत्री प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे और क्वाड के अंतर्गत की गई पहलों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। भारत की यात्रा पर रवाना होने से पहले अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को एक महान साझेदार बताते हुए कहा कि इस यात्रा के दौरान उन्हें क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों से मिलने का अवसर मिलेगा।
2: भारत के साथ बहुत कुछ करने को है। वो एक महान सहयोगी और साझेदार है। क्या एक महत्वपूर्ण यात्रा है। मुझे लगता है कि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा और हम वहाँ क्वाड के साथ भी बैठक करेंगे। विदेश मंत्री के रूप में मेरी पहली बैठक क्वाड के साथ ही हुई थी। मुझे खुशी है कि हम अब भारत में यह बैठक कर पा रहे हैं और हम इस साल के अंत में भी एक और बैठक करेंगे।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। निर्वाचन आयोग ने आज 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की है। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा, केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन और रवनीत सिंह सहित कई सदस्यों का राज्यसभा का कार्यकाल अगले महीने पूरा हो रहा है। एक रिपोर्ट।
3: आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक की 4, राजस्थान और मध्य प्रदेश की 3, झारखंड की 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम की 1-1 सीट के लिए चुनाव होगा। अधिसूचना 1 जून को जारी की जाएगी और मतदान 18 जून को होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। आयोग ने महाराष्ट्र और तमिलनाडु में राज्यसभा की 1-1 सीट के लिए उपचुनाव की घोषणा की।

0: है। ये सीटें महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री सुनीत्रा अजीत पवार और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके सांसद षणमुगम के राज्य विधानसभा के लिए हाल ही में निर्वाचित होने के बाद खाली हुई है। उपचुनाव भी अगले महीने की 18 तारीख को होगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ अमीशा।
1: केरलम में 7 बार के कांग्रेस विधायक तिरुवंचूर राधाकृष्णन को 16वीं केरलम विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। विधानसभा के इतिहास में पहली बार इस चुनाव में सत्ताधारी यूडीएफ, वामदल और भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार मैदान में थे। एक रिपोर्ट।
2: 140 सदस्यों वाली विधानसभा में सत्तारूढ़ यूडीएफ गठबंधन के उम्मीदवार तिरुवंचूर राधाकृष्णन 101 वोटों के साथ स्पीकर चुने गए। विपक्षी एलडीएफ गठबंधन के उम्मीदवार एसी मोहिद्दीन को 35 वोट मिले, जबकि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बीबी गोपाकुमार को 3 वोट हासिल हुए। ये पहली बार है जब भारतीय जनता पार्टी ने केरल में स्पीकर पद का चुनाव लड़ा है। डिप्टी स्पीकर के लिए चुनाव 1 जून को होगा। तिरुवनंतपुरम से स्मिति एम पल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने तिरुवंचूर राधाकृष्णन को अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने विश्वास व्यक्त किया कि श्री राधाकृष्णन का व्यापक विधायी अनुभव और संसदीय परंपराओं की गहरी समझ सदन को निष्पक्षता, बुद्धिमत्ता और गरिमा के साथ मार्गदर्शन प्रदान करेगी। सर्वोच्च न्यायालय 1 जुलाई से कक्षा 9 के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने वाली सीबीआई के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागजी तथा विपुल एम पंचोली की पीठ के समक्ष ये मामला उठाया। उन्होंने कहा कि ये जनहित याचिका छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों द्वारा दायर की गई है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज उमर खालिद को वर्ष 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों में कथित बड़ी साजिश से जुड़े गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए मामले में 3 दिन की अंतरिम जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह और न्यायमूर्ति मधु जैन की खंडपीठ ने उन्हें 1 जून से 3 जून तक कड़ी शर्तों के साथ रिहा करने की अनुमति दी। खालिद ने अपने दिवंगत चाचा के 40वें में शामिल होने और अपनी मां की शल्य चिकित्सा के दौरान उनकी देखभाल करने के लिए 15 दिन की अंतरिम जमानत मांगी थी। दिल्ली की एक अदालत ने आईआरसीटीसी होटल घोटाले से जुड़े कथित धनशोधन मामले में राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव, उनके परिवार के सदस्यों और अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय करने का फैसला 9 जून तक के लिए टाल दिया है। इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय ईडी कर रहा है और ये केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई द्वारा दर्ज एक मूल अपराध पर आधारित है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी नेता गोपाल राय और पत्रकार सौरभ दास को एक आपराधिक अवमानना याचिका के मामले में नोटिस जारी किया। यह याचिका आबकारी नीति मामले में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को निशाना बनाने वाली कथित तौर पर अपमानजनक और अवमाननापूर्ण सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर दायर की गई थी। रेल, सूचना प्रौद्योगिकी तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव 2 दिन के राजस्थान दौरे पर हैं। उन्होंने जोधपुर रेलवे स्टेशन से दिल्ली कैंट के लिए 20 डिब्बों वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना किया। इस रेलगाड़ी में पहले 8 डिब्बे थे। इस अवसर पर उन्होंने भगत की कोठी में वंदे भारत स्लीपर कोच कार्यशाला के 2रे चरण की भी घोषणा की। उन्होंने जैसलमेर स्टेशन पर नवनिर्मित कोच केयर कॉम्प्लेक्स का वर्चुअल उद्घाटन भी किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री वैष्णव ने कहा कि पूरे देश में रेल संपर्क तेजी से बढ़ रहा है। रेल मंत्री आज शाम जालौर जाएंगे, जहां वे नई भुज बरेली एक्सप्रेस को रवाना करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की सीमाओं को और अधिक अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। नई दिल्ली में आज सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के अलंकरण समारोह में श्री शाह ने कहा कि इस परियोजना में ड्रोन, रडार, कैमरे और अन्य तकनीकी संसाधन शामिल होंगे।
3: आने वाले 1 साल के अंदर ही स्मार्ट बॉर्डर कंसेप्ट के साथ सीमा सुरक्षा बल की सुरक्षा में सभी प्रकार की तकनीक को लैस कर एक अभेद बॉर्डर की हम सुरक्षा की ग्रिड बनाने का काम आगे बढ़ रहा है और बहुत कम समय में गृह मंत्रालय, ड्रोन, रडार, आधुनिक कैमराज और बाकी सारी तकनीक के साथ एक स्मार्ट बॉर्डर के प्रोजेक्ट को लेकर देश के सामने आएगा।
1: गृहमंत्री ने कहा कि बीएसएफ ने 1965 में 25 बटालियन और सीमित

0: संसाधनों के साथ शुरुआत की थी। लगभग 270,000 कर्मियों की संख्या के साथ अब यह सीमाओं की रक्षा करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा बल बन गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि घुसपैठ पर रोक लगाकर प्रत्येक घुसपैठिए को देश से बाहर किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। श्री अधिकारी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास समृद्ध राजनीतिक और विधायी अनुभव है। विज्ञान प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान के केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने भारत के चंद्रयान 3 चंद्र मिशन को अमरीका विमानन और अंतरिक्ष संस्थान द्वारा 2026 के गोडार्ड अंतरिक्ष पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ सिंह ने कहा कि चंद्रयान 3 मिशन देश को गौरवान्वित करता रहा है। पंजाब पुलिस ने देश भर के स्कूलों और अन्य संवेदनशील स्थानों पर बम की धमकी भरे ईमेल भेजने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करने में बड़ी सफलता हासिल की है। आरोप है कि इस गिरोह में बांग्लादेश और पाकिस्तान में रहने वाले लोग शामिल थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @ATIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले 2 दिन में बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी लू चलने की आशंका है। हिमाचल प्रदेश में आज सुबह से कई स्थानों पर रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम के इस बदलाव से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। एक रिपोर्ट।
1: राजधानी शिमला सहित चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, हमीरपुर व लाहौल स्पीति जिलों में हल्की वर्षा होने से प्रदेश भर में तापमान में हल्की गिरावट आई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मौसम में यह बदलाव आया है। विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश में 7 जिलों कुल्लू, शिमला, चंबा, ऊना, हमीरपुर, मंडी और बिलासपुर में अनेक स्थानों पर अगले 48 घंटों में बारिश के साथ अंधड़ और तेज हवा चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: सरकार ने आज सूचित किया कि ईद उल अजहा बकरीद पर दिल्ली के सभी केंद्रीय सरकारी कार्यालय 28 मई को बंद रहेंगे। पहले यह छुट्टी 27 मई को निर्धारित थी। आईपीएल क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से होगा। ये मैच हैदराबाद में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोराइड्स के साथ वार्ता की। श्री मोदी ने कहा भारत और साइप्रस का लक्ष्य अगले 5 वर्ष में निवेश को दोगुना करना। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव की घोषणा, मतदान 18 जून को। सर्वोच्च न्यायालय कक्षा 9 के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन 1 जुलाई से अनिवार्य करने के CBSE के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में कल तक भीषण लू की चेतावनी। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 2:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही कलाकार।
1: कार्यक्रम एक ही कलाकार में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। 80-90 के दशक में जिन अदाकाराओं ने फिल्म जगत पर राज किया था, मीनाक्षी शेषाद्री का नाम उनमें प्रमुख है। 16 नवंबर 1963 को झारखंड के सिंदरी में एक तमिल परिवार में शशिकला का जन्म हुआ था, जिन्हें आज हम मीनाक्षी शेषाद्री के नाम से जानते हैं। एक्ट्रेस मीनाक्षी शेषाद्री भरतनाट्यम, कथक समेत 4 डांस फॉर्म जानती हैं। मीनाक्षी ने केवल 17 साल की उम्र में मिस इंडिया का खिताब अपने नाम कर लिया था। इसके बाद बॉलीवुड में उनके नाम को लेकर चर्चा होने लगी थी। उस वक्त मनोज कुमार इनको लॉन्च करना चाहते थे और उन्होंने मीनाक्षी से संपर्क किया था। तब मीनाक्षी ने कहा था कि उन्होंने कभी एक्टिंग नहीं की है, फिर भी मनोज कुमार ने उन्हें फिल्म के लिए साइन कर लिया था। जब मीनाक्षी फिल्म के लिए सेलेक्ट हो गईं, तब उनका नाम काफी परेशानी बन गया था। उस वक्त फिल्म इंडस्ट्री में शशिकला नाम की एक और हीरोइन मौजूद थी, जो विलन का रोल करने के लिए मशहूर थी।

मीनाक्षी ने 1983 में आई फिल्म पेंटर बाबू के साथ बॉलीवुड में कदम रखा था, जो कि फ्लॉप हो गई थी। वैसे कुछ समय के बाद एक्ट्रेस की

फिल्मों ने सुपरहिट होना शुरू कर दिया था और 18 साल की उम्र में मीनाक्षी ने सुपरहिट एक्ट्रेस का खिताब भी अपने नाम कर लिया था। दामिनी, हीरो और घातक जैसी सुपरहिट फिल्मों को करने के बाद 1996 में एक्ट्रेस ने बॉलीवुड छोड़ दिया था और वो शादी करके न्यूयॉर्क में चली गई थी।

मीनाक्षी की माँ भरतनाट्यम में पारंगत थी, तो बचपन से ही उन्होंने मीनाक्षी और उनकी बहन निम्मी को भरतनाट्यम की ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी थी। पढ़ाई के साथ साथ मीनाक्षी स्कूल में डांस प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लिया करती थी। मीनाक्षी की खूबसूरती देखकर स्कूल की इनकी सहेलियां अक्सर इनसे कहा करती थीं कि तुम्हें तो मॉडलिंग के लिए ट्राई करना चाहिए। उस वक्त मीनाक्षी अपनी सहेलियों की बातों को मजाक में उड़ा दिया करती थी। लेकिन जब 12वीं के एग्जाम्स देने के बाद ये घर पर छुट्टियां बिता रही थी, तो इन्होंने अखबार में एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट का विज्ञापन देखा। उस विज्ञापन को देखकर मीनाक्षी को अपनी सहेलियों की बात याद आ गई और उन्होंने अपनी एप्लीकेशन भी उस ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भेज दी। किस्मत ने कुछ ऐसा खेल खेला कि मीनाक्षी वो ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीत भी गईं।

फिर उसी साल इन्हें मिस इंडिया पेजेंट में हिस्सा लेने का भी मौका मिल गया। महज 17 साल की मीनाक्षी ने साल 1981 में हुए मिस इंडिया कॉन्टेस्ट को भी अपने नाम कर लिया। इसके बाद तो रातों रात सिंदरी की ये आम लड़की पूरे देश में खास बन गई। इसी साल मीनाक्षी शेषाद्री को जापान की राजधानी टोक्यो में हुए मिस इंटरनेशनल ब्यूटी कॉन्टेस्ट में इंडिया का प्रतिनिधित्व करने का मौका भी मिला। वैसे इस कॉन्टेस्ट में मीनाक्षी को कोई कामयाबी तो नहीं मिल सकी, मगर इस कॉन्टेस्ट के बाद ही मीनाक्षी के लिए मनोरंजन जगत के दरवाजे भी खुलने शुरू हो गए। जापान से लौटने के बाद मीनाक्षी के पास मॉडलिंग के ढेरों ऑफर्स थे। कुछ ऑफर्स तो इन्होंने साइन भी किया था। मुंबई में मीनाक्षी की बड़ी बहन निम्मी रहती थी। मीनाक्षी का ठिकाना भी उन दिनों अपनी बहन का मुंबई वाला घर ही था। एक दिन मशहूर एक्टर मनोज कुमार का फोन मीनाक्षी के पास आया और मनोज कुमार जी ने मीनाक्षी से कहा कि वो एक फिल्म बना रहे हैं जिसके लिए उन्हें एक नई लड़की की तलाश है। बस इस तरह से मीनाक्षी के करियर की शुरुआत हो गई। मीनाक्षी ने मनोज कुमार का वो ऑफर स्वीकार कर लिया और वो उनकी पहली फिल्म बनी जिसका नाम था पेंटर बाबू। ये फिल्म साल 1983 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही मीनाक्षी ने सुभाष घई की फिल्म हीरो साइन कर ली थी और ये सुभाष घई ही थे जिनके कहने पर ये शशिकला शेषाद्री से मीनाक्षी शेषाद्री बनी थी। पेंटर बाबू फिल्म रिलीज हुई लेकिन बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म कोई कमाल न दिखा सकी। वैसे यूपी बिहार में इस फिल्म को जरूर पसंद किया गया था लेकिन फिर भी इस फिल्म को फ्लॉप फिल्म ही माना गया। मगर इसी साल मीनाक्षी की दूसरी फिल्म हीरो रिलीज हुई तो मीनाक्षी को फिल्म स्टार होने का स्टेटस भी मिल गया। हीरो जबरदस्त हिट रही थी। इसके बाद तो मीनाक्षी ने ढेरों फिल्मों में काम किया। हर बड़े स्टार के साथ काम किया, राजेश खन्ना रहे हो या फिर अमिताभ बच्चन, जितेंद्र रहे हो या फिर अनिल कपूर, हर हीरो के साथ मीनाक्षी की जोड़ी को दर्शकों ने पसंद किया।

मीनाक्षी शेषाद्री के करियर की प्रमुख फिल्मों की बातें करें तो ये नजर आई अल्लाह रखा, दिलवाला, सत्यमेव जयते, डकैत, औरत, तेरी यही कहानी, 20 साल बाद, गंगा जमुना सरस्वती, तूफान, बड़े घर की बेटी, अम्बा, घायल, हम शकल, आज का गुंडा राज, आदमी खिलौना है, क्षत्रिय और घातक में। घातक ही इनके करियर की आखिरी फिल्म भी थी। मीनाक्षी शेषाद्री की फिल्मों की बात हो तो कुछ फिल्मों की बात करना जरूरी हो जाता है। साल 1986 में आई फिल्म स्वाति में इनकी एक्टिंग को बहुत ज्यादा सराहा गया था। उस दौर की कई फिल्मी पंडितों ने माना था कि मीनाक्षी शेषाद्री केवल अपनी खूबसूरती और डांस के दम पर ही फिल्म इंडस्ट्री में नहीं है, बल्कि वो एक बढ़िया अदाकारा भी है। इस फिल्म में मीनाक्षी के साथ माधुरी दीक्षित ने भी काम किया था। सनी देओल की फिल्म घायल में भी इन्होंने क्लास एक्टिंग की थी। वहीं विनोद खन्ना साहब के साथ फिल्म जुर्म, सत्यमेव जयते में भी इनके काम की खूब तारीफ हुई थी। 90 के दशक में मीनाक्षी शेषाद्री ने एक तेलुगु और एक तमिल फिल्म में भी काम किया था, जिसमें इनके हीरो थे चिरंजीवी।

वर्तमान में अमेरिका में ही रहकर मीनाक्षी शेषाद्री अपने एक डांस इंस्टीट्यूट चलाती हैं और वहां बच्चों को भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक और ओडिसी डांस सिखाती हैं। यानी फिल्मी चकाचौंध से दूर अमेरिका में मीनाक्षी अपने परिवार के साथ एक शांत और सुकून भरी जिंदगी गुजार रही हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि मीनाक्षी शेषाद्री हमेशा अपनी जिंदगी में खुश रहें, उन्हें अच्छी सेहत मिले और उनका परिवार हमेशा सुखी रहे। फिल्म इंडस्ट्री को किए मीनाक्षी शेषाद्री के योगदान के लिए हम सभी उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। और इसी के साथ अब एक ही कलाकार कार्यक्रम को संपन्न करने की शिखा को दे इजाजत। नमस्कार।

मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़ डीटीएच डीआरएम वेव्स ओटीटी और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। अपराह्न के 3 बजे हैं। आज की हमारी पहली सभा अब संपन्न होती है। शाम 5 बजे अपनी दूसरी सभा के कार्यक्रमों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए।

मीडियम एफ 241.5 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्स, डीआरएम 1233 किलोहर्ट्स, डीटीएच, ओटीटी वेब्स और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं, आरंभ होती है आज की हमारी सायंकालीन सभा। सभा के आरंभ में आइए सुने फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

0: यह गीत हमने लिया है फिल्म जॉली LLB 2013 से। आवाज कैलाश खेर की है, गीतकार हैं शब्बीर कुमार।
1: गले पड़ गए
2: स्कूटर की स्कूटर की स्कूटर की स्कूटर की

ये गीत आप सुन रहे थे कैलाश खेर की आवाज में। फिल्म थी जॉली एलएलबी 2013। अब आइए गोलमाल 3 का एक गीत सुने। आवाजें हैं शान और अनुष्का मनचंदा की। कुमार ने इस गीत को लिखा है, प्रीतम ने संगीत तैयार किया है। गोलमाल 3।

और अब कार्यक्रम के अंत में आए सुने फिल्म तारा रमपम का ये गीत। शान और सुनिधि चौहान ने इस गीत को गाया है, जावेद अख्तर का लिखा हुआ है और संगीतकार हैं विशाल शेखर।

अभी आप सुन रहे थे शान और सुनिधि चौहान को। फिल्म थी तारा रामपम। इस गीत को लिखा था जावेद अख्तर ने और संगीतकार थे विशाल शेखर। इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। शाम के 5:15 हुए हैं। युवा साथी सुने अपना कार्यक्रम युववाणी।

0: पौधे, नदी, पहाड़, इनसे सुंदर होता संसार। जीव जंतु सब है खास, इनसे ही धरती में है सांस।
1: स्वागत है आप सभी का आज के युववाणी कार्यक्रम में, जहां आज हैं आपके साथ आपकी ये दो रेडियो साथी, मैं शालिनी
0: और मैं दिव्या। आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार।

0: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
1: वैसे दिव्या, अभी जो तुमने कविता सुनाई ना, वो वाकई बहुत सुंदर थी। इसमें प्रकृति की महत्वता जो बताई गई है।
2: बिल्कुल, पेड़ पौधे हमें शुद्ध हवा और फूल फल देते हैं, नदियां हमें पानी देती हैं जिससे जीवन चलता है,
1: और पहाड़ भी तो बहुत जरूरी हैं। वे मौसम को संतुलित रखते हैं और प्राकृतिक सुंदरता बढ़ाते हैं। जीव जंतु भी प्रकृति का अहम हिस्सा है, अगर ये ना रहे तो पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा।
2: बिल्कुल, और इसीलिए दोस्तों हमें पेड़ लगाना चाहिए और जानवरों की रक्षा करनी चाहिए, साथ ही नदियों को गंदा नहीं करना चाहिए।
1: सही कहा, जब प्रकृति सुरक्षित रहेगी ना, तभी हमारा भविष्य भी सुरक्षित होगा।
2: और इसीलिए दोस्तों हर साल आज ही के दिन यानी 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य लोगों को प्रकृति और जीव जंतुओं के महत्व के बारे में जागरूक करना है। जैव विविधता का मतलब होता है धरती पर पाए जाने वाले सभी प्रकार के पेड़ पौधे, जानवर, पक्षी, कीड़े मकोड़े और छोटे मोटे जो जीवों की विविधता।
1: ये सभी जीव मिलकर पर्यावरण का संतुलन बनाए रखते हैं। अगर धरती पर केवल इंसान ही हो और बाकी जीव जंतु न हो तो जीवन सही तरीके से चल ही नहीं सकता। इसलिए जैव विविधता हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है।
2: प्रकृति हमें जीने के लिए जरूरी चीजें देती हैं, जैसे शुद्ध हवा, पानी, भोजन और दवाइयाँ। पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं और वातावरण को स्वच्छ रखते हैं। जानवर और पक्षी प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने में मदद करते हैं।
1: और मधुमक्खी फूलों से पराग इकट्ठा करके फसलों की वृद्धि में सहायता करती है। जंगल बारिश लाने और मिट्टी को सुरक्षित रखने में मदद करते हैं। इस तरह हर जीव का अपना एक महत्वपूर्ण काम होता है।
2: और आज के समय में जैव विविधता को बहुत खतरा हो रहा है दोस्तों। जंगलों की कटाई, बढ़ता प्रदूषण, प्लास्टिक का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग और जलवायु परिवर्तन के कारण कई जीव जंतु और पेड़ पौधे धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं और कुछ जानवर तो पूरी तरह विलुप्त भी हो चुके हैं।
1: अगर यही स्थिति बनी रही ना, तो आने वाले समय में प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा और इसका असर मानव जीवन पर भी पड़ेगा। इसलिए हमें अभी से पर्यावरण की रक्षा के लिए कदम उठाने होंगे।
2: भारत जैव विविधता से भरपूर देश है। यहाँ कई प्रकार के पेड़ पौधे और वन्य जीव पाए जाते हैं। बाघ, हाथी, गेंडा, मोर और शेर जैसे जानवर भारत की पहचान है। हमारे देश में कई राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य बनाए गए हैं, जहां जानवरों और पेड़ों की रक्षा की जाती है।
1: भारतीय संस्कृति में भी प्रकृति को बहुत सम्मान दिया जाता है। लोग पेड़ों, नदियों और पशु पक्षियों की पूजा करते हैं और उन्हें भगवान का रूप मानते हैं। विश्व जैव विविधता दिवस हमें ये सिखाता है कि हमें प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए।
2: हम छोटे छोटे काम करके

0: ही पर्यावरण को बचाने में मदद कर सकते हैं दोस्तों, जैसे अधिक पेड़ लगाना, पानी बचाना, प्लास्टिक का कम उपयोग करना और आसपास सफाई रखना। हमें जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और जंगलों को बचाने का ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी चाहिए।
1: जैव विविधता धरती की सबसे बड़ी संपत्ति है। अगर प्रकृति सुरक्षित रहेगी तभी मानव जीवन भी सुरक्षित रहेगा। इसलिए हम सभी को मिलकर पर्यावरण और जीव जंतुओं की रक्षा करनी चाहिए।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा

0: होता है। जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
0: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो
2: 0542227658।
3: 0542227658।
1: लो अभी फोन लगाता हूँ।
3: 0542227658।
4: दोस्तों, क्या आप जरथोस्ट नोर डिसो के बारे में जानते हैं? तुम बताओ शालिनी।
5: हाँ बिल्कुल, ये पारसी धर्म का एक महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन पैगंबर जरथुस्त्र जोरास्टर की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। पारसी समुदाय इस दिन को बहुत श्रद्धा और शांति के साथ याद करता है। डिसो शब्द का अर्थ होता है स्वर्गवास दिवस या किसी महान व्यक्ति की मृत्यु की तिथि।
4: इस दिन पारसी लोग अपने धर्म के संस्थापक जरथुस्त्र को श्रद्धांजलि देते हैं और उनके बताए अच्छे विचारों और आदर्शों को याद करते हैं। जरथुस्त्र ने लोगों को सच्चाई, अच्छाई और ईमानदारी का मार्ग अपनाने की शिक्षा दी थी
5: और उन्होंने कहा था कि हर व्यक्ति को अच्छे विचार, अच्छे शब्द और अच्छे कर्म अपनाने चाहिए। यही पारसी धर्म का मुख्य संदेश माना जाता है। पारसी लोग मानते हैं कि यदि मनुष्य अच्छे काम करेगा तो समाज और दुनिया दोनों बेहतर बनेंगे।
4: इसीलिए इस दिन लोग उनके उपदेशों को याद करके अपने जीवन में अच्छाई लाने की कोशिश करते हैं। इस अवसर पर पारसी समुदाय के लोग अग्नि मंदिरों में जाकर प्रार्थना करते हैं। पारसी धर्म में अग्नि को पवित्र माना जाता है, इसीलिए मंदिरों में जलती हुई अग्नि के सामने श्रद्धा से पूजा की जाती है।
5: लोग सफेद कपड़े पहनते हैं क्योंकि सफेद रंग शांति और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। इस दिन धार्मिक ग्रंथ अवेस्ता का पाठ भी किया जाता है। परिवार के लोग एक साथ बैठकर प्रार्थना करते हैं और अपने पूर्वजों को भी याद करते हैं।
4: जरथोस्त नो डिसो का दिन खुशी मनाने के बजाय शांति और श्रद्धा से बिताया जाता है। दोस्तों, पारसी लोग इस दिन किसी प्रकार का उत्सव या सजावट नहीं करते, वो सादगी से दिन बिताते हैं और जरूरतमंद लोगों की सहायता भी करते हैं। कई लोग गरीबों को भोजन और कपड़े दान करते हैं।
5: इससे समाज में प्रेम भाईचारे की भावना बढ़ती है। भारत में पारसी समुदाय की संख्या कम है लेकिन देश की उन्नति में बहुत बड़ा योगदान दिया है। उद्योग, शिक्षा, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में पारसी लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए हैं।
4: जैसे जमशेद जी टाटा, एक जो महान व्यक्ति हैं, उन्होंने देश के विकास में बड़ी भूमिका निभाई। पारसी समुदाय अपने धर्म और संस्कृति को आज भी पूरी श्रद्धा से निभाता है। आज के समय में जरथोस्त नो डिसो हमें ये सीख देता है कि हमें हमेशा सच्चाई, ईमानदारी और अच्छे कर्मों का पालन करना चाहिए।
5: यह दिन केवल पारसी समुदाय के लिए ही नहीं बल्कि सभी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। जरथुस्त के विचार हमें यह एक अच्छा इंसान बनाने की भी शिक्षा देते हैं, इसलिए हमें उनके संदेश को अपने जीवन में अपनाकर समाज में प्रेम, शांति और सद्भाव फैलाना चाहिए।
4: वैसे शालिनी, क्या तुम्हें पता है कि आज हम अपने सीने दर्पण में अपने दोस्तों को किसके बारे में बताने जा रहे हैं?
5: नहीं, पता तो नहीं है, लेकिन बताओ कौन है वो?
4: वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हमारे बीच ना रहकर भी अपने टैलेंट से एक छाप छोड़ गए हैं। चलो मैं तुम्हें एक ना छोटा सा हिंट देती हूँ। उनका जो उपनाम है वो चिंटू है।
5: अच्छा, कहीं ये ऋषि कपूर तो नहीं?
4: बिल्कुल सही। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं ऋषि कपूर के बारे में। हिंदी सिनेमा का इतिहास कई ऐसे कलाकारों से सजा है जिनकी लोकप्रियता सिर्फ उनकी फिल्मों तक सीमित नहीं रही बल्कि एक दौर की पहचान बन गई।
5: दोस्तों, सिनेमा सिर्फ मनोरंजन का माध्यम नहीं बल्कि समाज का आईना भी है और इस आईने को चमकाने वाले होते हैं वो कलाकार जो अपने अभिनय से किरदारों में जान डाल देते हैं।
4: आज हम ऐसे ही एक कलाकार के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हिंदी सिनेमा के इतिहास में एक ऐसा नाम है जिसने अपनी अदाकारी, स्टाइल और ऊर्जा से कई पीढ़ियों को प्रभावित किया।
5: जी हाँ, आज के हमारे सीने दर्पण के सितारे हैं ऋषि कपूर, जो हिंदी सिनेमा के सबसे लोकप्रिय और

0: सफल अभिनेताओं में से एक थे। उनका जन्म 4 सितंबर 1952 को मुंबई में हुआ था। वे प्रसिद्ध अभिनेता और फिल्म निर्माता राज कपूर के पुत्र थे।
1: उनका परिवार हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार माना जाता है। बचपन से ही ऋषि कपूर का माहौल फिल्मों से जुड़ा हुआ था, इसीलिए अभिनय के प्रति उनका रुझान स्वाभाविक रूप से विकसित हुआ। उनकी माता का नाम कृष्णा कपूर था।
0: परिवार में कला और अभिनय का वातावरण होने के कारण उन्होंने बहुत कम उम्र में ही फिल्मों की दुनिया को करीब से देखना शुरू कर दिया था। ऋषि कपूर ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के प्रसिद्ध कैंपियन स्कूल और बाद में मेयो कॉलेज से प्राप्त की। पढ़ाई के दौरान वे एक सामान्य छात्र की तरह जीवन जीते थे, लेकिन फिल्मों में उनकी रुचि लगातार बनी रही।
1: हालांकि उन्होंने उच्च शिक्षा पर अधिक ध्यान नहीं दिया क्योंकि उनका रुझान अभिनय की ओर था, और जल्द ही उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रख दिया। उनके परिवार की विरासत और उनकी अपनी प्रतिभा ने उन्हें एक सफल अभिनेता बनने का अवसर दिया।
0: ऋषि कपूर ने पहली बार बाल कलाकार के रूप में मेरा नाम जोकर में काम किया। इस फिल्म में उन्होंने अपने पिता राज कपूर के बचपन का किरदार निभाया था। इस भूमिका के लिए उन्हें काफी सराहना मिली और राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिली थी।
2: ए भाई, दर देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं।

0: पड़ता है।
1: इसके बाद उन्होंने नायक के रूप में अपने अभिनय करियर की शुरुआत बॉबी से की। ये फिल्म बहुत बड़ी हिट साबित हुई और रातों रात ऋषि कपूर युवा दर्शकों के पसंदीदा अभिनेता बन गए थे। इस फिल्म में उनकी जोड़ी डिंपल कपाड़िया के साथ दिखाई दी, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया।

1970 और 1980 के दशक में ऋषि कपूर रोमांटिक फिल्मों के बड़े सितारे में गिने जाते थे। उनकी मुस्कान, आकर्षक व्यक्तित्व और सहज अभिनय ने उन्हें युवाओं के बीच बेहद लोकप्रिय बना दिया। उन्होंने कई सफल फिल्मों में काम किया, जिनमें कर्ज, अमर अकबर एंथनी, नगीना, चांदनी और हिना जैसी फिल्में भी शामिल हैं।

0: अभिनेता बना दिया। उनके अभिनय की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि वो अपने किरदारों को बहुत स्वाभाविक तरीके से निभाते थे।
1: ऋषि कपूर ने अपने लंबे फिल्मी करियर में लगभग 150 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। उन्होंने केवल रोमांटिक भूमिका ही नहीं निभाई, बल्कि एक समय के साथ स्वयं को बदलते हुए चरित्र भूमिकाओं में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया।
0: उम्र बढ़ने के साथ उन्होंने अलग अलग प्रकार के किरदार निभाने शुरू किए। उनके बाद के फिल्मों में अग्निपथ, कपूर एंड सन्स, मुल्क और 102 नॉट आउट विशेष रूप से उल्लेखनीय है।

0: इन फिल्मों में उनके अभिनय को समीक्षकों और दर्शकों दोनों ने बहुत सराहा। उन्होंने ये साबित किया कि एक सच्चा कलाकार किसी भी प्रकार की भूमिका को प्रभावशाली बना सकता है।
1: ऋषि कपूर का निजी जीवन भी काफी चर्चित रहा। उन्होंने प्रसिद्ध अभिनेत्री नीतू कपूर से विवाह किया। दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया और उनकी जोड़ी दर्शकों के बीच बहुत लोकप्रिय रही है। उनके दो बच्चे हैं जिनमें अभिनेता रणबीर कपूर भी शामिल है।
0: ऋषि कपूर को उनके शानदार अभिनय के लिए कई पुरस्कार भी मिले। उन्हें विभिन्न फिल्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया और भारतीय सिनेमा में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। वो एक ऐसे अभिनेता थे जिन्होंने कई पीढ़ियों का मनोरंजन किया, चाहे रोमांटिक नायक की भूमिका हो या फिर गंभीर चरित्र अभिनेता की। उन्होंने हर किरदार में अपनी अलग पहचान छोड़ी।
1: 30 अप्रैल 2020 को ऋषि कपूर का निधन हो गया। उनके जाने से हिंदी सिनेमा को एक बड़ी क्षति हुई, लेकिन उनके फिल्म, उनके यादगार किरदार और उनका योगदान हमेशा जीवित रहेगा। वे उन कलाकारों में से थे जिन्होंने अपनी मेहनत, प्रतिभा और समर्पण से भारतीय सिनेमा को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया।
0: आज भी जब उनकी फिल्में देखी जाती हैं, तो दर्शकों को उनका जीवंत अभिनय और आकर्षक व्यक्तित्व याद आ जाता है। ऋषि कपूर केवल एक अभिनेता नहीं थे दोस्तों, बल्कि हिंदी सिनेमा के एक ऐसे सितारे थे जिनकी चमक आने वाली पीढ़ियों तक बनी रहेगी।

0: तो दिव्या, इस गीत के बाद अब अपना और अपने दोस्तों का कुछ जनरल नॉलेज भी बढ़ाया जाए।
1: बिल्कुल शालिनी, और इसकी शुरुआत हम अपनी यू डायरी से ही करते हैं, जिसमें आज का हिंदी शब्द है अवबोधन, जिसका अर्थ होता है किसी विषय, तथ्य या बात को गहराई से समझना, उसका अर्थ ग्रहण करना या फिर ज्ञान प्राप्त करना। इसके कुछ पर्यायवाची शब्द हैं जैसे समझ, ज्ञान, बोध, जानकारी या चेतना।
0: अगर हम इसका वाक्य प्रयोग करें तो कह सकते हैं कि गुरु के उपदेश से छात्रों में अच्छे संस्कार का अवबोधन हुआ, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि पर्यावरण के महत्व का अवबोधन हर व्यक्ति को होना चाहिए।
1: और इसी के साथ हमारा आज का इंग्लिश वर्ड है वेनरेट, जिसकी स्पेलिंग होती है VENERATE, और इसका मतलब होता है आदर करना, पूजना, श्रद्धा रखना या फिर सत्कार करना। Some synonyms of this word could be respect, honor, etc.
0: और अगर इसके सेंटेंस फॉर्मेशन की बात करें तो होगा, वी शुड वेनरेट अवर ग्रैंड पेरेंट्स फॉर देयर लाइफ एक्सपीरियंस एंड विस्टम। और एक और सेंटेंस फॉर्मेशन कर सकते हैं, इन मेनी ट्रेडिशनल फैमिलीज चिल्ड्रन वेनरेट देयर पेरेंट्स एज रोल मॉडल्स।
1: तो दोस्तों, हमने आज जो नए वर्ड सीखे यानी वेनरेट और अवबोधन, हम उम्मीद करते हैं कि आपको इनका अर्थ समझ आया होगा और ज़रूरत पड़ने पर आप इनका इस्तेमाल भी कर पाएंगे। तो इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं इतिहास की ओर और जानते हैं कि आज के दिन इतिहास में क्या कुछ खास हुआ था। पहले तो 1772 में आज ही के दिन राजा राम मोहन रॉय का जन्म हुआ था और उन्हें भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक माना जाता है।
0: इसके साथ ही साथ आज के दिन 1936 में लॉर्ड बैब्रोन ने बम्बई में बैब्रोन स्टेडियम की नींव रखी। यह देश का पहला स्टेडियम था।
1: और 1963 में आज ही के दिन पहले ग्लाइडर रोहिणी ने उड़ान भरी थी। और 1984 में बछेंद्री पाल दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट को फतह करने वाली भारतीय महिला बनी थी।
0: 1988 में भारत ने स्वदेश में ही विकसित अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र अग्नि का सफल परीक्षण किया।
1: तो दोस्तों, कुछ आवाजें जो होती हैं वो वक्त के साथ पुरानी नहीं होती, वो याद बनकर नहीं बल्कि एहसास बनकर हमारे साथ चलती हैं। एक ऐसा ही एहसास जो कभी गांव की चौपाल में गूंजा, कभी शहरों की बालकनी में, तो कभी देर रात पढ़ाई करते किसी छात्र की साथी बना।
0: वो दौर याद है जब हम घर में एक रेडियो होता था और किसी खजाने से कम नहीं होता था। सुबह की शुरुआत भक्ति संगीत से, शाम को हवा महल और रात में छाया गीत, पूरा परिवार रेडियो के इर्द गिर्द बैठ जाता था किसी को गीत सुन

0: होता था तो किसी को क्रिकेट कमेंट्री का इंतजार था।
1: दोस्तों, भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत 1923 में रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे से मानी जाती है। 23 जुलाई 1927 को इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी यानी IBC ने बम्बई और कलकत्ता से नियमित प्रसारण शुरू किया था।
0: आर्थिक कठिनाइयों के कारण 1930 में IBC बंद हो गई, जिसके बाद भारत सरकार ने प्रसारण सेवा अपने हाथ में ले ली। 1930 में इसका नाम इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस रखा गया।
1: 8 जून 1936 को ISBS का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो यानी AIR कर दिया गया। आज़ादी के समय भारत में AIR के केवल 6 स्टेशन थे। आज ये दुनिया के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क में गिना जाता है।
0: आकाशवाणी का समाचार प्रभाग देश की सबसे पुरानी और विश्वसनीय समाचार सेवाओं में माना जाता है। विविध भारती सेवा की शुरुआत 3 अक्टूबर 1957 को हुई थी। विविध भारती एक प्रसारित होने वाला हवा महल और जयमाला जैसे कार्यक्रम बेहद लोकप्रिय हुए।
1: जयमाला कार्यक्रम में कई बार तो भारतीय सैनिकों के लिए फिल्मी कलाकार संदेश और गीत प्रस्तुत करते थे। प्रसिद्ध उद्घोषक अमीन सायानी का कार्यक्रम बिना का गीतमाला रेडियो इतिहास का बेहद लोकप्रिय शो माना जाता है।
0: आकाशवाणी ने भारतीय शास्त्रीय संगीत, लोक संगीत और साहित्य को संरक्षित करने में बड़ी भूमिका निभाई है। कई बड़े कलाकारों जैसे बिस्मन जोशी, लता मंगेशकर और बिस्मिल्ला खान की आवाज़ें आकाशवाणी से घर घर तक पहुंची हैं।
1: समाचार पढ़ने की गंभीर और स्पष्ट शैली ने AIR उद्घोषकों को एक अलग पहचान दी। आज आकाशवाणी अनेक भाषाओं और बोलियों में प्रसारण करती है और रेडियो के साथ साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी सक्रिय है।
0: और जरा सोचिए, मोबाइल नहीं थे, इंटरनेट भी नहीं था, लेकिन फिर भी खबरें हर घर तक पहुंचती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं तक रेडियो तो बचता ही होगा ना। आकाशवाणी ने सिर्फ खबरें ही नहीं दी है, इसने संस्कृति को संजोया है, लोकगीतों को पहचान दी है, नए कलाकारों को मंच दिया है और भाषा की मिठास को घर घर तक पहुंचाया है। इतना ही महान स्वर पहली बार इसी मंच से गुजरे हैं
1: और वो नॉस्टैल्जिया आज भी बरकरार है। 90 साल का ये सफर तकनीक के बदलते दौर का गवाह भी रहा है। रेडियो सेट से लेकर डिजिटल स्ट्रीमिंग तक माध्यम बदले, समय बदला, लेकिन आवाज का अपनापन नहीं बदला। आज भी वही सुनाई देता है तो मन अपने आप बीते दिनों की गलियों में लौट जाता है।
0: तो आइए इस खास अवसर पर सलाम करें उन सभी आवाजों को जो कभी हमारे सुबह की शुरुआत बनी तो कभी रातों की तन्हाई का साथी, उन उद्घोषकों को, उन तकनीशियनों को, उन कलाकारों को जिन्होंने आकाशवाणी को सिर्फ संस्था ही नहीं एक भावना बनाया।
1: 90 वर्षों की इस गौरव गाथा को हमारा नमन, हमारा प्रणाम।
0: आकाशवाणी आवाज जो पीढ़ियों से दिलों में बसती आई है।
1: तो दोस्तों, अब ये तो था हमारा आकाशवाणी के 90 वर्षों का सफर, लेकिन अब आप तैयार हो जाइए क्योंकि अब शुरू होने वाला है दिमाग का असली गेम, जहां आपका सही जवाब दिलाएगा आपको खास पहचान और नाम,
0: यानी क्वेश्चन ऑफ द डे। तो कल तो हमारा कल का सवाल आपसे था, मई 2026 में प्रतिष्ठित बैडमिंटन टूर्नामेंट थॉमस और उबेर कप 2026 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है, जिसका सही जवाब है डेनमार्क।
1: और जिन लोगों ने इसका सही जवाब दिया है उनके नाम है, सबसे पहले प्रवीण चौहान खरगोन मध्य प्रदेश से, ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से हैं, दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू दिव्यांश और सूरज कुमार ढाक से, ग्राम खैगांव तहसील महेश्वर से हैं प्रेमलाल वर्मा, वेदिका, वंश, निकेश, धर्मेंद्र, मेघा, नंदिनी, हर्षिता और ममता बाई वर्मा, रिंग रोड नर्मदा नगर मध्य प्रदेश से हैं सूरज वर्मा, नीरज, शिवम, धीरज, चिंता वर्मा, ऋषभ कनक और भावना वर्मा, उत्तर प्रदेश आजमगढ़ ग्राम सेमरौल से हैं रवि मौर्य। तो आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत बधाई। फिलहाल अब बढ़ते हैं अपने आज के प्रश्न पे, और हमारा आज का सवाल आपसे ये है कि वर्ष 2026 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है। हमारा सवाल एक बार फिर से सुनिए, वर्ष 2026 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है।

और इसका उत्तर आपको कहाँ देना है ये तो आपको पता ही है। हम एक बार आपको फिर से याद दिला देते हैं, आप इसका उत्तर हमारे इंस्टा आईडी यूथ AIR वाराणसी या फिर हमारी मेल आईडी यूथ AIRVNS@gmail.com पर भेज सकते हैं। तो फटाफट से अपना उत्तर भेजिए और तब तक इस गीत का भी आनंद उठाते रहिए।

0: दोस्तों, अब बारी है रोजगार सूचना की। तो आपको बता दें कि रेलवे भर्ती बोर्ड RRB की तरफ से आई है, जिसने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर सहायक लोको पायलट पदों की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। यह भर्ती 11,127 पदों के लिए की जा रही है। RRB आवेदन प्रक्रिया 15 मई 2026 से शुरू हो गई है और उम्मीदवार 14 जून 2026 तक आवेदन कर सकते हैं।
1: इसके लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष है, जो कि 1 जुलाई 2026 तक मान्य होगी। और बात करें इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो उम्मीदवारों को संबंधित ट्रेड में ITI प्रमाण पत्र के साथ 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, या फिर संबंधित क्षेत्र में इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या फिर डिग्री होनी चाहिए। और अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट rrbapply.gov.in पर विजिट कर सकते हैं।
0: अच्छा दिव्या, एक बात बताओ, फिटनेस हमारे लिए क्यों जरूरी है और हम कैसे फिट रह सकते हैं?
1: शालिनी, फिट रहने का एक सबसे बेस्ट तरीका होता है योग, जो हमारे शरीर को हेल्दी और फिट रखने में मदद करता है, और इसके साथ ही साथ हमें कई सारे बीमारियों से भी दूर रखता है। योग सिर्फ व्यायाम नहीं है, बल्कि ये एक जीवन पद्धति है। ये तन, मन और आत्मा, ये तीनों चीजों को जोड़ता है।
0: एकदम सही कहा। दरअसल आजकल की जो तेज तर्रार जिंदगी में तनाव, थकान और बीमारियां आम सी हो गई हैं, लेकिन योग हमें इन सब से बचाता है और प्राकृतिक वे में हमें फिट रखता है।
1: बिल्कुल, जैसे प्राणायाम से श्वसन तंत्र मजबूत होता है, आसन से शरीर लचीला और

0: हमारी जो इम्यूनिटी होती है वो भी स्ट्रांग होती है, ध्यान जो लगाते हैं उनसे मन को शांति मिलती है, और ओवरऑल योग जो है वो हमें केवल निरोग ही नहीं बनाता है बल्कि जीवन जीने की एक नई ऊर्जा भी देता है।
1: तो दोस्तों आज हम यही कहना चाहेंगे कि योग अपनाएं, निरोग जीवन पाएं, फिट रहें और अपने हेल्थ पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें।
0: बिल्कुल। तो और आपको तो ये पता ही है कि समय की भी कद्र करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हमारी जिम्मेदारी भी है। तो आज के लिए कार्यक्रम में बस इतना ही। अपना ख्याल रहिए, रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हर रोज़ ये वाणी सुनते रहिए। कार्यक्रम में आज आपके साथ थी मैं दिव्या।
1: और मैं शालिनी।
0: दीजिए हमें इजाज़त।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।

अभी आप सुने थे युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। शाम के 6 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे भोजपुरी में समाचार, जिन्हें हम गोरखपुर केंद्र से प्रसारित करेंगे।

0: है गोरखपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार, समाचारन के साथ हम वेद प्रकाश पाठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर काल नई दिल्ली में भइल मंत्रिपरिषद के बैठक के बारे में पुरहर जानकारी साझा कैलें। वहां के बतौनी कि काल के बैठक में मंत्रिपरिषद जीवन में सुगमता और कारोबार में सुगमता के बढ़ावा देहले से जुड़ल महत्वपूर्ण दृष्टिकोण आ सर्वोत्तम कार्य प्रणालियन पर विचार विमर्श कैलस। प्रधानमंत्री बतौलन कि चर्चा के मुख्य केंद्र बिंदु विकसित भारत के साझा सपना के साकार करे बदे प्रभावी ढंग से सुधारन के आगे बढ़ौले पर केंद्रित रहल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज देवरिया में 655 करोड़ रुपया से बेसी लागत के परियोजनन का लोकार्पण आ शिलान्यास कैले। एह मौका पर मुख्यमंत्री कहलें कि वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज आ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट आज नया यूपी का पहचान हो।
1: कोई सोचता था पहले कि कुशीनगर में कृषि विश्वविद्यालय बन जाएगा, आज वह बन करके तैयार हो रहा है कृषि विश्वविद्यालय। ये कृषि विश्वविद्यालय केवल एक भवन नहीं है, हमारे अन्नदाता किसानों को तकनीक के साथ जोड़ करके लागत को कम करना, उत्पादन को बढ़ाना, उसकी आमदनी को बढ़ाना, प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप अपने अन्नदाता किसानों के चेहरे पर खुशहाली लाने का एक अभिनव प्रयास है।
0: ऐसे पहले मुख्यमंत्री श्री योगी आज सवेरे गोरखनाथ मंदिर परिसर में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में करीब 150 लोगों का समस्या सुनल। रेल मंत्रालय रेलवे के बुनियादी ढांचा और ट्रेन संचालन के निशाना बना के हलिये में भइल घटनन के बीच यात्री लोगों से जतरा के दौरान सतर्क रहे के कहले हवे। साथ ही रेलवे परिसर में कौनहूं संदिग्ध गतिविधि चाहे मनई का सूचना हेल्पलाइन नंबर 139 पर जुड़ते दिहले का आग्रह कैल गैल बा। एगो रिपोर्ट।
2: नई दिल्ली के रेल भवन में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक के बाद ये आग्रह किया गया। मंत्रालय के अनुसार आग लगने की कुछ घटनाओं सहित हाल ही में हुई कई घटनाओं की प्रारंभिक जांच में असामाजिक तत्वों की संलिप्तता के संकेत मिले हैं। कई मामलों में रेलवे अधिकारियों द्वारा समय पर और सक्रिय कार्रवाई से बड़ी दुर्घटनाओं को रोकने में सहायता मिली है। बैठक में रेलवे नेटवर्क में सीसीटीवी कवरेज बढ़ाने और रेलवे बोर्ड मुख्यालय तथा जोन के बीच समन्वय सुधारने पर भी विचार विमर्श किया गया। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: जनगणना 2027 के तहत आज से प्रदेश भर में मकानन का गणना शुरू हो गई बा। राज्य का जनगणना निदेशक का मुख्य जनगणना अधिकारी शीतल वर्मा बतौलिन की एह फेरा में जनगणना कर्मी घरे घरे जाके फॉर्म भरवाई हैं। जे लोग स्वगण

0: योजना के तहत अपन जानकारी पोर्टल में दर्ज करा देले हमें, उन्हें 11 अंक वाला कोड के प्रगणक के घरे एले पर देवे के होई। ई प्रक्रिया 22 जून ले चली। सर्वोच्च न्यायालय 1 जुलाई से कक्षा 9 के छात्रन बदे 3 भाषा के पढ़ाई अनिवार्य करे वाला नया CBSE नीति के चुनौती देवे वाली याचिका पर अगला हफ्ता सुनवाई करी। एगो रिपोर्ट।
1: वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति जॉय माल्य बागची और विपुल एम पंचोली की पीठ के समक्ष यह मामला उठाया। उन्होंने कहा कि यह जनहित याचिका छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों द्वारा दायर की गई है। उन्होंने कहा कि नई CBSE नीति के तहत कक्षा 9 में 2 अतिरिक्त भाषाओं को अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे अव्यवस्था उत्पन्न होगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी एक हालिया परिपत्र के अनुसार कक्षा 9 के छात्रों को इस वर्ष 1 जुलाई से 3 भाषाओं का अध्ययन करना होगा। इनमें से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
0: मौसम विभाग प्रदेश के पूर्वी जिलन में 24 मई ले दिन के समय भीषण लू आ रात में उमस भरल गर्मी पड़े का रेड अलर्ट जारी कैले बा। ए बीचे गोरखपुर, अयोध्या आ वाराणसी के सतही कईगो औरियो पूर्वी जिलन के साथे साथे प्रदेश के करीब सज्जो जिलन में अजुओ तेज घाम, भीषण गर्मी आ लू से लोग परेशान रह रहे हैं।
2: राज्य में भीषण गर्मी का कहर जारी है, जहां पारा हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। बुंदेलखंड सबसे ज्यादा तप रहा है, जहां अधिकांश इलाकों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। रात में भी तापमान 30 डिग्री के आसपास पहुंचने के कारण लोगों का बुरा हाल है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: मौसम विभाग पूर्वी उत्तर प्रदेश में 24 मई ले मौसम शुष्क रहले आ तेज धुरियाइल बेरियो चलले का संभावना जतौले बा। समाचार पूरा भइल, नमस्कार।
3: आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। मीडियम वेव 241.5 सेंटीमीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम विवरण में प्रस्तुत है आज के शेष और कल के प्रमुख कार्यक्रमों की रूपरेखा। पहले आज के शेष कार्यक्रम। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात्रि 10:30 पर सुनेगा पल्लव दास का ध्रुपद गायन। शाम 7:31 पर सुनेगा पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। रात्रि 10 बजे सुनेगा मंजूषा कार्यक्रम में काशी के अमर स्वर, जयशंकर प्रसाद, विषय पर डॉक्टर उमाकांत सिंह की वार्ता और डॉक्टर नसीमा निशा की काव्य पाठ। अंजुमन कार्यक्रम सुनेगा रात्रि 9:30 पर। सुगम संगीत के कार्यक्रम में रात्रि 8 बजे सुनेगा दीप्ति तैलंग के गाए भजन। किसीगत कार्यक्रम में शाम 6:30 पर सुनेगा पशुओं के दाना मिश्रण तैयार करते समय सावधानियां विषय पर डॉक्टर अमरेश कुमार सिंह से दिनेश कुमार सिंह की बातचीत। साथ ही साथ किसान भाई सुनेंगे तेज बहादुर यादव और साथी का गाया लोकगीत। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकेंगे अब यानी शाम 6:10 पर, शाम 7 बजे और रात्रि 8:15 पर रस्माधुरी कार्यक्रम में। ये थे आज के शेष कार्यक्रम और अब कल के प्रमुख कार्यक्रमों की रूपरेखा। कल रात्रि 10 बजे सुनेगा संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम, जिसे हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कल सुबह 9:30 पर सुनेगा उर्दू कार्यक्रम, जिसे हम लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। सुगम संगीत के कार्यक्रम में रात्रि 8 बजे कलाकार होंगे बेगम अख्तर और कल दिन 12:30 पर इसी कार्यक्रम में सुनेगा राम शंकर का गाया गीत। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में कल सुबह 7:31 पर सुनेगा डॉक्टर RP शास्त्री का वायलिन वादन और कल दिन 12:45 पर इसी कार्यक्रम में सुनेगा मुराद बानो का उपशास्त्रीय गायन। कल प्रातः 6:05 पर खेती की बातें कार्यक्रम में राइजोबियम कल्चर एवं इसकी उपयोगिता विषय पर जानकारी देंगे दिनेश कुमार सिंह। भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम आराधना सुनेगा कल प्रातः 6:10 पर। विचार बिंदु होगा 6:30 पर। स्वर चर्चा कार्यक्रम में दूषित जल से होने वाली बीमारी

0: और इनका इलाज विषय पर जानकारी देंगे डॉक्टर विनोद कुमार कल प्रातः 6:35 पर। श्री रामचरितमानस से संगीत में पाठ सुनेगा कल प्रातः 6:40 पर। गुड मॉर्निंग बनारस कार्यक्रम सुनेगा प्रतिदिन की तरह कल सुबह 7 बजे। मधुरिमा सुनेगा कल सुबह 8:45 पर। लोक संगीत के कार्यक्रम में कल सुबह 9:50 पर और कल दिन 1:45 पर कलाकार होंगे अमलेश कुमार पांडे। इनके गाय लोकगीत आप कल शाम 6:30 पर किस जगत कार्यक्रम में भी सुन सकेंगे। साथ ही साथ किस जगत कार्यक्रम में आप सुनेगा आकाशवाणी गांव में। फिल्म संगीत का कार्यक्रम झंकार सुनेगा कल सुबह 10 बजे। अंगनैया कार्यक्रम में कल दिन 1:15 पर बने सुनेंगी मिलावटी खाद्य पदार्थों के प्रयोग से कैसे बचे विषय पर डॉक्टर ज्योत्सना चतुर्वेदी से बातचीत। गीत संगीत और अन्य कार्यक्रम गीतांजलि सुनेगा कल दिन 2:30। कल शाम 5 बजे नन्ही दुनिया कार्यक्रम में सुनेगा बाल गीत और अन्य कार्यक्रम। कल शाम 5:15 पर युवाणी कार्यक्रम में कल के आकर्षण होंगे आज की बात, यूथ जंक्शन, यूथ डायरी, इतिहास में आज का दिन, रोजगार सूचना और अन्य कार्यक्रम। ये थे कल के प्रमुख कार्यक्रम। कार्यक्रम विवरण में अभी आप सुने थे आज के शेष और कल के प्रमुख कार्यक्रम की रूपरेखा। ये आकाशवाणी वाराणसी है। अब आइए सुने फिल्म संगीत एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए
3: 0542227658।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें
4: 0542227658।
0: कार्यक्रम के आरंभ में ये गीत हमने लिया है फिल्म नाम से। आवाज कविता कृष्णमूर्ति की है। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने। संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

अभी आप कविता की स्मृति की आवाज में सुने थे फिल्म नाम का गीत। अब आइए अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू को सुने। फिल्म का नाम आशिकी, गीतकार हैं समीर और संगीतकार नदीम श्रवण। फिल्म का नाम आशिकी।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी वाराणसी से बोल रहे हैं। शाम के 6:20 होने वाले हैं। संस्कृत में समाचार आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से, जिन्हें हम सम प्रसारित करेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: दिनाङ्के दशराज्याणां चतुर्विंशतिराज्यसभासनानां द्वितीये वर्षे आयोक्ष्यमाणस्य निर्वाचनस्य घोषणामकरोत्। सर्वोच्चन्यायालयेन जुलाई मासस्य प्रथमदिनाङ्कात् नवमी कक्षायाः छात्राणां कृते CBSE इत्यस्य त्रिभाषीयाध्ययनस्य अनिवार्यतायाः विरुद्धं याचिकां विचारं समारब्धम्। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः उक्तवान् यत् सम्पूर्णे सीमाक्षेत्रेषु अभेद्यतरं कर्तुं सर्वकारः स्मार्ट सीमा परियोजनायाः आरम्भं करिष्यति। अपि च IPL क्रिकेट क्रीडायां सनराइजर्स हैदराबाद दलम् अद्य सायंकाले हैदराबादे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलम सम्मुखी करिष्यति। अथ वार्ताः विस्तरेण। भारत साइप्रस देशयोः मध्ये अद्य नवदिल्ल्यां आतंकवादावरोधस्य विषये नवान्वेषण तंत्रज्ञानयोः उच्चशिक्षायाम् अनुसन्धाने सांस्कृतिक सहयोगे च संयुक्त कार्यसमूहस्य स्थापने इत्यादीनां विभिन्नेषु क्षेत्रेषु अनेकेषां सन्धिपत्राणाम् आदान प्रदानम् अभवत्। प्रधानमन्त्री श्रीनरेन्द्र मोदी साइप्रस देशस्य राष्ट्रपतिना निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स इत्यनेन सह विविधेषु क्षेत्रेषु द्वैपाक्षिक सहकारं सुदृढीकर्तुं चर्चां कृतवान्। बहुपाक्षिक मञ्चेषु सहकारं सह क्षेत्रीय वैश्विक महत्वस्य विषयेषु अपि तौ विचाराणाम् आदान प्रदानं कृतवन्तौ। संयुक्त वक्तव्ये प्रधानमन्त्रिणा श्रीनरेन्द्र मोदिना भारत साइप्रस देशयोः मैत्री न केवलं दृढः अपि तु भविष्याभिमुखी अपि अस्तीति उक्तम्। सः अवदत् यत् गत दशके साइप्रस देशात् भारते निवेशः प्रायः द्विगुणितः अभवत्। तेनोदीरितं यत् भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समन्वये अनेकाः नूतनाः सम्भावनाः उद्भूताः सन्ति। उभयोः देशयोः मध्ये विश्वासः च वर्धितः अस्ति। अग्रिमेषु पञ्चवर्षेषु पुनः निवेशप्रवाहं द्विगुणीकर्तुं भारत साइप्रस देशयोः लक्ष्यम् अस्ति इति श्रीमोदी अवदत्।
1: भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से तमाम नई संभावनाएं बनी हैं। इसका लाभ उठाते हुए हम अगले 5 वर्षों में इस इन्वेस्टमेंट को फिर से डबल करने का लक्ष्य रख रहे हैं और इस संकल्प को साकार करने के लिए आज हम अपने विश्वसनीय संबंधों को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में एलिवेट कर रहे हैं।
0: प्रधानमन्त्री श्रीमोदी अवदत् यत् उपवेशनावधौ तौ वैश्विक विषयेषु अपि चर्चितवन्तौ।
1: भारत और साइप्रस के बीच यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों के फाइनेंशियल और सर्विसेज हब को जोड़कर कॉमर्स के लिए कैपिटल अनलॉक करेगी। यह साइप्रस के इंफ्रास्ट्रक्चर एनर्जी

0: श्री राजनाथ सिंहः अवदत् यत् शुभेन्दु अधिकारी समृद्धेन राजनैतिक विधायी अनुभवेन युक्तः व्यक्तिः अस्ति। सः आत्मविश्वासं प्रकटितवान् यत् श्री अधिकारी पश्चिम बंगाल राज्यं नूतन औन्नत्यं प्रतिनेतुं कार्यं करिष्यति। आईपीएल क्रिकेट क्रीडायाम् अद्य हैदराबादे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलं सनराइजर्स हैदराबाद दलं सम्मुखीकरिष्यति। क्रीडायाः आरम्भः सायं सार्धसप्तवादने भविष्यति। गतरात्रौ अहमदाबादस्य नरेन्द्र मोदी क्रीडांगणे गुजरात टाइटन्स दलेन चेन्नई सुपर किंग्स दलं 91 धावनांकैः पराजितम्। अन्ते मुख्यवार्ताः पुनः एकवारम्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नवदिल्ल्यां साइप्रस देशस्य राष्ट्रपतिना निकोस क्रिस्टाडो लाइट्स इत्यनेन सह चर्चितवान्। सः उक्तवान् यत् अग्रिमेषु पञ्चवर्षेषु निवेश प्रवाहः द्विगुणीकर्तुं भारत साइप्रस देशयोः लक्ष्यमस्ति। निर्वाचनायोगेन अग्रिमे मासे 18 दिनांके 10 राज्याणां 24 राज्यसभासनानां कृते निर्वाचनस्य घोषणा कृता। सर्वोच्चन्यायालयेन जुलाई मासस्य प्रथमदिनांकात् नवमी कक्षायाः छात्राणां कृते सीबीएसई इत्यस्य त्रिभाषीयाध्ययनस्य अनिवार्यतायाः विरुद्धं याचिकायां विचारं समारब्धम् इति वार्ताः।
1: मीडियम 241.5 सेंटीमीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन एआर मोबाइल ऐप पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है किसान भाइयों का कार्यक्रम कृषि जगत।

0: पंचो राम राम।
1: राम। बोला भैया,
0: हाँ सुधु भैया।
1: देखा हो ये समय कहल जात हो कि अपन विश्व जन है ना, समझ ला कि देश में नहीं पूरे विश्व में एक विकास का दौर हो, लहर हो, एक नई तकनीकी नया युग जैसे कहल जात हो, और अपन देश भी जो है ना
0: हाँ भैया
1: भाई वही गति से चलत हो
0: बिल्कुल।
1: है। जिहर देखा चाहे अपने खेती से किसानी से उठाए ल, तो घर गृहस्थी में अपने रसोइया से लेकर के कल कारखाना रोजी रोजगार उद्योग धंधा जहाँ देखा भाई विकास का एक लहर हो,
0: कहे ना वे विकास होके भी चाहिए।
1: होए के भी चाहिए। बाकी तो ये विकास देखा हो तो साथे साथे भैया कुछ ऐसा भी विकास के पहिया जेके कहल जाए कि लोग पंचर करे के फेरा में रहलन है।
0: वो कैसे भैया।
1: और एक कैसे का दिक्कत तो हुआ विकास भइल, कब्बो ही सोचले रहला कि तू जौन हो विदेश बैठल हुआ हम यहाँ है, और अंगुरी के टिप से खाली टुक टुक टुक टुक कह दे हमार तोहार बात हो जाए,
0: बात हो जाए।
1: और सात समुंदर पार बैठल आदमी उनका चेहरा तू देख ला, कब्बो कल्पना कैले रहला
0: कहने
1: सोचले
0: भैया
1: रहला
0: ना ना बिल्कुल ना
1: है।
0: भैया
1: बाकी तो आज वो संभव हो तो ना
0: एक बिल्कुल हो तो।
1: ऐसा तकनीकी आयल तोहरे मोबाइल वाली है। बाकी तो ओके कुछ लोग जोन कहलिए पंचर करा वाली बात ना कि ओकर देखा दुरुपयोग करत हूँ, दुरुपयोग ए मामले में कि देखा ई कौनो तरह से हम तू वित्तीय रूप से और चाहे समझ लो शारीरिक रूप से प्रभावित हुई, तो ऊ जौन हो एमए के पंचर करे जैसा हुई कि ना हुई
0: बिल्कुल हुई।
1: है। अब देख ल कि बतियाओ बदे कि इतना जरूरी संयंत्र हमें तुम्हें मिल गल कि
0: मोबाइल।
1: हाँ कि कौनो काम अगर भुलाए गेला बजारे चल गेला झोला ना ले गेला तो वो जौन हो बतिया लेवा घरे।
0: ऐसे दुबिया जो यंत्र का नाम लेला है ना लोग खाना भूल जाते हैं पर ये यंत्र ना भूलत
1: ना
0: हूँ।
1: भूलत हूँ ऐसे कि एप पर बड़ी निर्भरता बढ़ गई हो। अब तो देखा हुआ पैसा का लेन देन है ना, खर्चा गृहस्थी कुल जमा समझ ला कि यही पर हो जाता हो,
0: बिल्कुल भैया
1: पैसा जेबा में ना हो मोबाइल निकल ला टुक से समझ ला फोटो खींच के ऊपर पैसा डाल देला चल गल।
0: चल गया।
1: दूसरा समस्या जो फुटकर वाली रहल है ना
0: वो समस्या भी दूर हो
1: वो
0: गई।
1: समस्या खत्म हो गई। 62 पैसा 63 पैसा भी अगर तुम भुगतान करे के तो वो पर डाल दो कुल सही सही एकदम हो जाए। अच्छा इमन देखा एक बात बाने
0: हाँ
1: कि
0: सुधु
1: ये
0: भैया।
1: पैसा के जो लेन देन हो इमन काफी धोखाधड़ी भी होए लगल, कुछ भैया लोग इमन रास्ता निकाल ले ना है ना, कुछ ज्यादा विकास कर गई ना वो ए मामले में कि तोखे देखा फोन करी है ना, फोन करके तरह तरह के देखा लालच दी है कि भाई हमारे कंपनी की तरफ से देखा आपका नाम जो हो

0: निकली आल हो लॉटरी में, आपका इतना पैसा निकलल हो,
1: इस स्कीम में निकल गल हो,
0: निकल गल हो, है, जबकि तू कौनो फार्म ना भरले हो,
1: ना भरले
0: हो, कत्तो ना गईला कहे वो देखे ना लॉटरी का टिकट खरीदला कुछो नहीं, एक बाजू तुहार नाम आ गल,
1: कैसे आ गल,
0: कैसे आ गल, सोचे वाली बात हो। बाकी तो कुछ लोग ये लालच में आ जाए,
1: यही बतिया तो लोग ना सोचत हो ना,
0: तो ना सोचत हुआ तो वह धोखो खात हो,
1: धोखा खात हो।
0: ये तरह का सूचना अगर कोनो मोबाइल पर आवत हो तोहरे कि भाई तोहार इतना रुपया के देखा लॉटरी निकलल हो या कंपनी की तरफ से स्कीम हो तो वहाँ देवल जाई, बाकी एकरे बदे का हो कि कुछ पैसा तो वहाँ पहले डाले के पड़ी हमारे खाता में, जौन हम लिंक भेजत है ना वो खाते में तोहर इतना पैसा कुछ डाले को ही कहे से ओकर जौन कुछ प्रोसेसिंग का खर्चा हो वो चाही और ओकरे बाद तोहरे खाते में पैसा पहुँच जाए।
1: हाँ तो सुध भैया जो लिंक भेजे ना लोग ना एके पहले लोग छू के वो बतावे ना अपने माध्यम से कि एके भैया टच करा, एके छुआ, एके खोला,
0: खोला
1: तो एपे सब हमार जो स्कीम हो ये तो है दिखाई दे,
0: दिखाई दे।
1: और उस लिंक के छूते ही भैया आदमी का पूरा डिटेल सब
0: पूरा
1: अपराधी के पास
0: तोहार
1: पहुंच
0: जो हो
1: जाला,
0: पैन कार्ड का नंबर हो,
1: आधार
0: आधार का
1: नंबर
0: नंबर
1: हो,
0: हो, बैंक खाता हो, कर पासवर्ड हो, कुल समझ ला के ले लिया
1: कहे ना भैया यही नंबर से तो आपका कुल केवाईसी बा, बैंक का
0: बिल्कुल
1: पूरा डिटेल
0: बिल्कुल
1: जुड़ल बा,
0: बिल्कुल
1: तो तुरंत
0: एकदम पूरा
1: चल
0: जानकारी
1: जाई।
0: ले ली है। अब तुहार पैसा पता चल कुछ देर बाद तोरे मोबाइल पर सूचना है कि इतना पैसा तोरे खाते से निकल गया, तब जरा चुन्नी खड़ी हो जाले,
1: चुंडी खड़ी हुई कि भैया स्कीम तो मिले वाला रही कैसे चल गए।
0: चल गल। तो पहली बात तो ये जान ले कि हाँ कोनो तरह का पैसा अगर देवे वदे के कहल जात हो तो ओके जो हो कायदे से अपने से संतुष्ट जब तक न हो
1: हाँ
0: जाए,
1: जांच लें,
0: हाँ
1: परख
0: कि
1: लें।
0: भाई हम ये योजना में भाग ले ले रही कि नहीं ले ले रही है, वहाँ जाए के समझ लें कहाँ से बोलत हो आदमी के बोलत हो, है ना, संतुष्ट हो ले के बाद अब भाई ये तरह के अगर कोनो योजना बात होकर लाभ भी ले सकल ना हो सकल कि हाँ लाभान्वित हो उसे, है ना,
1: बिल्कुल
0: बाकी तब
1: भैया।
0: पूरी तरह से संतुष्ट भइले के बाद। अच्छा कभी कभी होला ना कि भेजल जाला सूचना कि भाई आपका जो बैंक हो ना वो बैंक में खाता जो ना बंद कर देवल जाए, चाहे आपका एटीएम कार्ड बंद कर देवल जाए, है ना, और ना ही तो अपन हाई हाई जो ओटीपी जात हो
1: एक ही बतावा,
0: एक ही बतावा, ये तो बहुत है खतरनाक हो।
1: सही कला सुधु भैया। देखा सरकार भी एकरे लिए जागरूक करत हो कि कोई भी ओटीपी अगर तुम्हें तो फोन करके कोई पूछत बा
0: हाँ
1: तो ओके शेयर मत करा,
0: एकदम सही कहा
1: अपन
0: हुआ।
1: गोपनीयता भंग मत करा।
0: सबसे बड़ी बात ये हो कि कौनो भी ए तरह का सूचना बैंक से ना ही मांगल
1: ना
0: जात,
1: मांगल
0: ये
1: जाता
0: जान ल, है
1: सुधु
0: ना,
1: भैया इतने ना। अब तो देखा फोन पे, अरे नया नया तकनीक से जो साइबर अपराध वाले हुआ ये वीडियो कॉल कह देते हुआ।
0: हाँ
1: अब
0: हाँ हाँ
1: वीडियो कॉल करके तरह तरह के मतलब प्रोपोगंडा दिखा के तरह तरह के समस्या और मतलब तरीका से कि इस समस्या हो तोरे बैंक में इतना पैसा चल गया हो तो तू इस चीज़ में पकड़ायल हुआ, तुम्हारे यहाँ ये सामान छूटल हो, ई माध्यम से भी लोगन के डरा के धमका के क्राइम करत
0: अरे
1: हुआ।
0: कबो कबो तो होत हो ना कि केहू मान ला लड़िका गल बा बाहरे जो ना पढ़ाए, है ना, अब का करिए कि ओकरे नाम से कि भाई तोहार लड़िका देखा हमारे गिरफ्त में हो ऐसा निशा जो ना अपराध कैले हो, तू इतना पैसा भेज दा हमारे खाते में तब छोड़ा बा नहीं तो इनके जेल हो जाइए, है ना, जेके कहल जाला कि डिजिटल अरेस्ट।
1: अरेस्ट।
0: तो देखा सरकार की तरफ से जागरूकता फैलावल गल हो कहल गल हो कि डिजिटल अरेस्ट जैसा कोनो चीज़ नहीं हो, ऐसा
1: ना
0: कोनो कानूनी व्यवस्था नहीं
1: हाँ
0: हो,
1: हाँ
0: है ना,
1: सही कहते हो सुधु भैया।
0: हाँ
1: समय समय पे सरकार देखा अब तो विज्ञापन के माध्यम से और संदेश के माध्यम से लोगन के जागरूक करत हो।
0: एकदम। और देखा कहीं भी कोनो बैंक से अपने सिम कार्ड के या तो बैंक खाता का या तोरे एटीएम जो कार्ड हो एकर केवाईसी करे बदे के ना सूचना नहीं मांगल जात,
1: ना मंगल जात,
0: है ना,
1: ये गोपनीयता रखल जाला।
0: गोपनीयता रखल जाला, और अगर अपडेट करे के भी हो तो बैंक शाखा में जा करके आमने सामने करा,
1: हाँ कोनो जरूरत
0: हाँ
1: हो तो सीधे शाखा में जाके
0: पहले,
1: पूछा।
0: हाँ वहाँ जाए के पहले संतुष्ट हो जाए कि भाई ये तरह का फोन कैल रहल कि नहीं गल
1: ना
0: रहल,
1: कर ले
0: अगर इस तरह का कोनो कमी हो तो वहाँ जाए के पूरा करा,
1: पूरा कर ला।
0: है ना, अगर थोड़ा सा सावधानी रखी है जागरूक रही है तो निश्चित रूप से समझ ला कि इसे बचल नहीं है, है? और दूसरा चीज़ ये हो कि जो अपन पासवर्ड होला बैंक का, है ना, ओके कब्बो केहू से न बतावे के चाहिए।
1: हाँ और साथे साथे ना बतावे के चाहिए, और अपन जो पासवर्ड हुई है ना एके थोड़ा सा मतलब
0: लेन देन के वक्त थोड़ा गुप्त रखे,
1: गुप्त रखे,
0: छिपाए के करे,
1: छिपा
0: हाँ
1: के करे, और
0: हाँ
1: मजबूत पासवर्ड बनाए, हल्का
0: बिल्कुल,
1: ना, सीधा
0: बिना कि
1: सीधा ना,
0: भरे आसानी से खुल
1: आसानी
0: जाए,
1: से खुल जाए। तो ये
0: हाँ।
1: सब विशेष बातन के ध्यान देवे के चाहिए।
0: अब कुल मिला के एक बात और हो कि अगर इतनी सावधानी रखने पर भी कोनो तरह

0: का कुछ समस्या आ
1: आ
0: जाले
1: जाता हूँ।
0: तो ओके जोन हो जोन हेल्पलाइन नंबर हो साइबर क्राइम का 1930,
1: अच्छा,
0: ए पर कॉल करके शिकायत अपन दर्ज करा दें,
1: दर्ज
0: और
1: करा
0: जितनी
1: दें
0: जल्दी शिकायत दर्ज करा दी है ना
1: उतना
0: उतने
1: जल्दी
0: जल्दी इनका पैसा वापस मिलने का संभावना हो जी।
1: बढ़ जाएगा।
0: और एकरे अलावा भारत सरकार का जो नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल हो ऊपर भी अपन शिकायत दर्ज करा
1: शिकायत दर्ज
0: सकेना
1: कर दा
0: है।
1: ताकि भाई
0: और ओकरे साथ साथ अपन जो बैंक हो जोने बैंक का ही खाता अपन रहल हो वो बैंक के भी तत्काल सूचित कर
1: सूचित
0: दें
1: कह दा
0: जैसे कि वो
1: ताकि
0: पैसा होल्ड हो
1: हाँ
0: जाए।
1: होल्ड हो जाए, आगे कोई प्रकार का फ्रॉड ना हो सके।
0: तो हम कही कि हे देखा बत कही तो हम ढेर कह ली, अब आगे अपने खेती किसानी में और बत कही हुई बाकी पहले है संदेश।
1: सुनवा दे भैया।
2: हैप्पी बर्थडे माय डियर। अरे ये क्या एब्सोल्यूट
3: मेरी नई स्कूटी के लिए?
2: ओ बनो से आनी नहीं तो पैसों पे फिर जाएगा पानी।
3: मतलब
2: सुनो, ऑनलाइन लर्निंग एप्स को जांच परख कर RBI अधिकृत बैंक NBFC से ही आप लोन लीजिए। और अधिकृत एप्स या जान लोगों से निजी जानकारी शेयर करना यानी धोखा।
3: दादू बन गई सियानी।
2: गिफ्ट नहीं करेंगे
3: स्कूटी?
2: RBI कहता है इनसे सुनिए,
4: जानकार बनिए,
2: सतर्क रहिए।
5: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
0: बोला भैया।
1: हाँ सुधु भैया।
0: भाई देखा खेती किसानी के साथे साथे अपने कुछ भैया लोग हुए जो उनकी पशुपालन वगैरह का भी काम कैले हुए, तो देखा अधिक दूध उत्पादन बदे के का चाहना कि भाई कुछ इन्हें अतिरिक्त कुछ ऐसा खिलाए द जिससे कि दूध जो हो ओकर गुणवत्ता भी बनल रहे और ज्यादा उत्पादन भी हो,
1: उत्पादन भी
0: हरा चारा वगैरह भैल या कुछ दोनों दाना बनावा न घरे है ना ओकर भी गुणवत्ता चाहना कि बढ़िया रहे। बाकी तो सही जानकारी न भइले से ना कबू कबू देखा होकर नुकसान भी उठावे के पड़ला, और जौन चाहत हो उत्पादन लेना उत्पादन भी ना मिल पावत है ना। तो इ पशुअन का दाना जौन मिश्रण होला एके बनावट के बखत सावधानी का रखे के चाहिए, यही विषय पर आज बात कही बा डॉक्टर अमरेश कुमार सिंह से दिनेश कुमार सिंह भैया का है ना। एके पंच भैया ध्यान से सुना।
6: डॉक्टर अमरेश कुमार सिंह, आप वैज्ञानिक हुए कृषि विज्ञान केंद्र गाजीपुर में। आज हम आपसे दाना मिक्सचर के बारे में जानना चाहब। किसान भाई जो पशुपालन करते हैं तो जो दाना खिलावत हैं जानवरन का, तो उसके तरीका का हो? अक्सर देखा जाता है कि खाली एक का अनाज को उन्होंने रखे रहे हैं और जानवर को दे देते हैं सीधे हो, तो कल ये जो वैज्ञानिक विधि हो थोड़ा सा आप बताओ कि का हो, कैसे प्रयोग करें लोग?
7: आपका बहुत अच्छा प्रश्न रहा कि कई बार हम लोग गाँव में जाते हैं तो देखते हैं कि किसान भाई के पास जो बीज रहता है, जैसे चोकर है तो चोकरे खिला देता है, खली है तो खली ही खिला देता है, या गेहूँ जैसे अनाज है, गेहूँ हो गया, जौ हो गया, जई हो गया,
6: हाँ।
7: मक्का हो गया, जैसे खराब कंडीशन में आ गया तो उसी को खिला देता है।
6: हुँ।
7: लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, तो मजबूरी में खिलाता है और अज्ञानता के बस खिलाता है।
6: हाँ।
7: तो जानवरों का जो दुधारू पशुओं के लिए जो आहार बनता है, मतलब दाना मिश्रण बनता है, उसमें चार पांच चीजों का बड़ा महत्व है। जैसे कि उसमें प्रोटीन कितनी है, कार्बोहाइड्रेट युक्त है कि नहीं है, उसमें फैट कितना है, खनिज तत्व है कि नहीं, तो इसको देखने के लिए देखा गया है कि इसमें जो है ये कंपोनेंट होने चाहिए। तो जैसे कि जब हम दाना बनाते हैं तो ऊर्जा के लिए, जैसे कार्बोहाइड्रेट तुरंत मिले उसके लिए हम अनाज प्रयोग करते हैं। जैसे कि उसमें गेहूं का दर्रा हो सकता है, जौ का दर्रा होता है, ज्वार बाजरा मक्का का दर्रा हो सकता है, अनाज, ये कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि तेजी से जो है जानवरों को मतलब कि ऊर्जा देता है।
6: अच्छा।
7: और दूसरा कंपोनेंट होता है कि उसमें प्रोटीन की मात्रा अच्छी होनी चाहिए। प्रोटीन की मात्रा अच्छी होने से ही जो है दूध की मात्रा बढ़ती है। तो प्रोटीन के लिए हम ज्यादातर सरसों की खली यूज करते हैं, कपास की खली यूज करते हैं, मूंगफली की खली है, तीसी की खली है, तो जो एरिया वाइज
6: चुनी हो रहा
7: दाल की चुन्नी है, जैसे अरहर हो गया, जैसे गांव में पहले दाल खूब होता था, अरहर उर्द मूंग मटर चना, तो दाल बनती थी जो उसका चुन्नी बन जाता था, वो भी 18 से 20% प्रोटीन का जो है सोर्स रहता था। तो खली जो है और ये दलहन की चुन्नी जो होती है ये प्रोटीन का सोर्स होता है। और वसा के लिए जो हम प्रयोग करते हैं तो वसा जो है खली में भी ज्यादा पाया जाता है।
6: अच्छा।
7: खली का वसा का मतलब घी होता है, तो ये जितने तिलहन होते हैं इसमें तेल होता है, तो उससे जो है वसा की मात्रा उसमें ज्यादा होती है, तो वसा के लिए हम और प्रोटीन के लिए खली का प्रयोग करते हैं।

0: और खनिज तत्वों का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि जानवरों में देखा गया है कि जैसे दूध जैसे जानवर देते हैं, जैसे आजकल की संकर गायें हैं, तो दूध लगातार ज़्यादा देने से उनके शरीर से जो है सूक्ष्म पोषक तत्व, जिसमें कि कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम जो होता है, ये जो है अक्सर दूध के माध्यम से निकल जाता है।
1: जी
0: तो उससे जब निकल जाता है तो जानवर को जब ऊपर से नहीं दिया जाएगा, तो जब ऊपर से नहीं दिया जाएगा
1: जी
0: तो उनको जो है शरीर में जो है पोषक, उसकी कमी होती है सूक्ष्म पोषक तत्वों की, तो उससे स्वास्थ्य खराब रहता है। मिल्क फीवर भी एक बीमारी जैसे होती है, पोषक तत्वों की कमी से आती है, खनिज
1: हाँ
0: तत्वों की कमी से। दूसरी चीज, बांझपन की समस्या बढ़ जाती है। तो इसके लिए भी जो है जब दाना बनाया जाता है तो खनिज तत्व को भी जो है उसे रोज दें तो 40 से 50 ग्राम खनिज तत्व रोज देना चाहिए, जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम होता है, और नमक भी देना चाहिए। तो ये होता है। तो जैसे कि दाना बनाने में हम, जैसे मैंने बनाया कि अनाज, खली, गेहूं का चोकर और खनिज तत्व और नमक की आवश्यकता होती है। अब इसमें जो है जैसे जानवर निर्वाह राशन बनाना है कि उत्पादक राशन बनाना है, उस हिसाब से इनकी मात्रा को हम ऊपर नीचे करते रहते हैं। तो जैसे कि जानवर अगर हमारा 6-7 लीटर दूध देने वाला है, तो उसके लिए जैसे कि हम सस्ता अनाज बनाते हैं, जैसे कि उसमें जैसे 4-5 किलोग्राम भूसा हम जानवर को खिलाते हैं और 15 से 20 किलोग्राम हरा चारा मिल जाता है, तो 2-3 किलो दाना भी खिला देंगे तो 6-7 लीटर दूध पैदा हो जाता है। 2 किलो दाना मिश्रण दे दिया जाए तो उसको हम बहुत जो है मतलब कि महंगा नहीं बनाते हैं, सस्ता बनाने की कोशिश करते हैं। तो उस तरह का अगर अनाज बनेगा, जैसे दाना मिश्रण बनेगा, तो उसमें हम अनाज जो है 30 भाग रखते हैं। और खली, जैसे कि हमारे यहाँ सरसों की खली बहुत आयत पाई जाती है, तो बाजार से किसान को न खरीदना पड़े, 30 किलोग्राम उसमें हम लोग खली मिला लेंगे। अब 25 किलोग्राम गेहूं का चोकर, जैसे हम लोग आटा लेते हैं तो छानते हैं, तो जो गेहूं की पालिश होती है ना ऊपर से, जैसे कि आटा छानने पर निकल जाता है, वो गेहूं का चोकर कहलाता है। ये पशु जो भी चारा दाना खाता है उसको पचाने में उसको सहयोग देता है, तो 25 भाग उसको ले लेंगे। अब ये हो जाएगा मतलब कि लगभग जो है 85 के आसपास रहता है। अब इसमें 12 किलोग्राम जो है दालाल की चुनी, जैसे गांव में आजकल दालाल तो कम पाई जाती है, दाल की, इसीलिए दाल की चुनी जो है 10 से 12 किलोग्राम डालें किसान भाई, और इसमें 2 किलोग्राम खनिज तत्व डाल लें और 1 किलोग्राम नमक डाल लें। तो ये जो है 10 लीटर दूध उत्पादन तक के जो जानवर हैं उनको जो है ये दिया जा सकता है। तो इसमें जैसे कि निर्वाह राशन के रूप में जैसे दिया जाता है,
1: निर्वाह राशन मतलब का है?
0: निर्वाह का मतलब ये होता है कि जैसे कि पशु जो होता है, जैसे कि मतलब वो अपनी दैनिक क्रियाओं को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जैसे कि उस उत्पादन बहुत कम हो रहा है या उत्पादन नहीं लिया जा रहा है, तो दैनिक क्रियाओं
1: मतलब
0: को उस,
1: जानवर खाली बैठा रहा
0: हाँ,
1: थे।
0: जैसे बैठा रहा है, या गाय जैसे कि 1-2 लीटर दूध दे रही है गर्भावस्था में है, तो उनको निर्वाह राशन दिया जाता है। खासकर वो भी कि जब 5 महीना 6 महीना जब गर्भावस्था में, गर्भावस्था के 6 महीने से पहले तक जो है हम उसको निर्वाह राशन दे सकते हैं। निर्वाह राशन में यह है कि अगर आप 20 किलोग्राम हरा चारा दे रहे हैं और 5-6 किलोग्राम भूसा दे रहे हैं और 1 किलोग्राम ही दाना दे देते हैं, तो उसका निर्वाह हो गया। इसके
1: मतलब
0: बाद
1: निर्वाह के लिए 1 किलोग्राम
0: हाँ
1: दाना।
0: बस इतना हो गया। हरा चारा जरूरी है, अगर हरा चारा नहीं है, जैसे गर्मी का दिन चल रहा है, बहुत से किसान भाइयों का हरा चारा तैयार नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में अगर हरा चारा आपके पास नहीं है तो 5-6 किलोग्राम भूसे के साथ जो है कम से कम 3 किलोग्राम दाना देना पड़ेगा। हाँ, कि कम से कम जो हरे चारे की जो हमारी मात्रा है एकदम नहीं है, उसमें भी विटामिन्स होते हैं, खनिज होता है और प्रोटीन होती है, तो उसके लिए हमको दाना देना पड़ेगा।
1: दाना मतलब वो दाना मिश्रण जो
0: हाँ,
1: बनेगा
0: वही जो दाना मिश्रण हमने
1: सब मिला जुला के।
0: बताया है उसको उसको दे दिया पड़ेगा, देना पड़ेगा। अब तो निर्वाह हो गया जैसे कि हमने बताया था। अब उसमें से जितना जानवर जैसे दूध दे रहा है, जैसे कि भैंस के लिए जो है, गाय के लिए 2.5 लीटर और भैंस के लिए 2 लीटर दूध, क्योंकि भैंस के दूध में थोड़ा वसा की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, तो 2 लीटर पे ही 1 किलो देते हैं और गाय को जो है 2.5 लीटर पर 1 किलो दाना देते हैं। तो निर्वाह राशन के अतिरिक्त जैसे जितना भी, जैसे हमने बताया था कि 5 किलोग्राम भूसा और 15 से 20 किलोग्राम हरा चारा देने के बाद, उसके बाद जितना दूध हो उस हिसाब से 2 से 2.5 किलोग्राम दूध के ऊपर 1 किलो दाना बढ़ाते जाना चाहिए, केवल 10 लीटर दूध तक। और जानवर जैसे संकर गायें हैं, 18 लीटर, 20 लीटर, 15 लीटर दूध देती हैं, उनके लिए फिर दाना अलग तरह का बनता है। तो ऐसे किसान भाई जिनके जानवर 15-20 लीटर दूध देते हैं, वो बाजार से दूध बेचते हैं बाजार में, तो उनको इनकम भी होती है, आय भी होती है, तो उस आय का कुछ पोर्शन जो है जानवरों के लिए दाना बनाने में खर्च करना चाहिए। जो मैंने बताया था कि 8-10 लीटर तक या निर्वाह राशन के लिए दाना बनता है, उसमें प्रोटीन जो है 15-16% पाई जाती है, और कुल पाचक जो तत्व होता है वो 60 से 62% 65% तक होता है। लेकिन उससे ऊपर जैसे 20 लीटर दूध दे रहा जानवर, उसके लिए प्रोटीन जो हम दाना

0: बनाएंगे उसमें प्रोटीन कम से कम 20% होना चाहिए, और कुल जो पाचक जो पोषक तत्व तो होने चाहिए वो जो है आपका कम से कम जो है 70 से 75% होना चाहिए। तो उसके लिए दाना बनाने में क्या करते हैं कि थोड़ा हम कंपोनेंट तोड़ देते हैं, जैसे कि मक्का उसमें हम 16 भाग ले लेंगे, गेहूं है और जौ है, जई है, इसका जो है हम 15 भाग लेंगे।
1: मतलब कुछ कम कर देते
0: हाँ, कुछ
1: हैं।
0: धीरे धीरे अलग अलग प्रोटीन की मात्रा बढ़ानी है तो उसको बढ़ाते जाएंगे। मूंगफली की खली इसमें 18 भाग कर लेंगे क्योंकि उसमें तरह प्रोटीन ज़्यादा पाई जाती है। सरसों की खली 8 भाग करते हैं क्योंकि उसमें थोड़ा प्रोटीन इनकी अपेक्षा कम पाई जाती है। इसी तरह से कपास की खली होती है उसमें 7 किलोग्राम करेंगे। राइस ब्रान होता है, जैसे डी ऑयल्ड होता है ना, जिसमें तेल निकला हुआ राइस का ब्रान होता है, उसको 8 किलोग्राम डालेंगे। नमक जो है 1 किलोग्राम, और 2 किलोग्राम खनिज तत्व तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये दाना जो है इस तरह से बनाएंगे तो 20% प्रोटीन तक हो जाता है। तो इस तरह का दाना देना चाहिए। जैसे माना कि जानवर 20 लीटर दूध दे रहा है तो उसको भूसा की मात्रा कम खिलाते हैं, क्योंकि भूसे को जब हम खिला देंगे तो पेट उसी से ज़्यादा भर लेगा, तो पोषक तत्व तो नहीं मिलेगा। भूसा का मतलब कि जीरो, केवल पेट भरने के और कार्बोहाइड्रेट के काम आता है। बहुत रफ क्वालिटी होती है, बहुत कम पचता है, बहुत कम पोषक तत्व तो होता है। तो जब जानवर 15 से ऊपर लीटर दूध देने वाला हो तो उसके लिए जैसे हम चाहेंगे तो जैसे कि 40 किलोग्राम, 50 किलोग्राम, जैसे कि हम अगर हरा चारा दे रहे हैं, ज्वार बाजरा मक्का है, तो इसके साथ 6-7 किलोग्राम जो है दाना देना पड़ेगा। उससे 18-20 लीटर हमारा दूध मेंटेन हो जाएगा। 1-2 किलोग्राम भूसा चाहे तो मिला लें, पर जैसे कि अन्य पशुओं के लिए जैसे 6-7 किलोग्राम भूसा खिलाते हैं, पर तो लेकिन जो जानवर 18-20 लीटर 25 लीटर दूध देने वाले हैं उनको भूसे की मात्रा कम करते जाएंगे और हरे चारे और दाने की मात्रा हम बढ़ाते जाएंगे। तो दाना बनाने में थोड़ा सा पशुपालक भाइयों को ये सावधानी रखनी
1: जी जी
0: पड़ेगी।
1: अच्छा, और एक अलावा जो उन्होंने मिले हैं।
0: हाँ, एक और चीज़ मैंने बता देता हूँ कि जैसे नई चीज़ें क्या पुरानी चीज़ें हैं, पर किसान भाई उसको अपनाना चाहिए। एक
1: नहीं तो
0: बाई
1: अच्छा, खनिज लोन फिर कैसे मिले हैं हमें?
0: जैसे कि माना जैसे कि 100 किलोग्राम का जैसे दाना हमने बताया था,
1: हाँ
0: तो उसमें 2 किलोग्राम पाउडर, 1 किलोग्राम नमक से 97 किलोग्राम तो खली मली से हो गया, अनाज से हो गया, और 2 किलोग्राम जो उसमें मिनरल मिक्सचर मिला लेंगे और 1 किलो नमक, इसको पूरी अच्छी तरह से मिला लेंगे, वो दाना बन गया।
1: अच्छा, हम लोग बना बनाया बाजार से
0: हाँ
1: आवा था खनिज लोन,
0: हाँ
1: वो का मिला
0: हाँ
1: दें
0: उसको
1: इसमें।
0: बाजार से कई ब्रांड में मिलता है, और ऐसे अगर खड़िया मड़िया कुछ किसान भाई चूना उना भी बुझा डाल सकते हैं,
1: अच्छा।
0: पर वो रिफाइंड नहीं होता है। लेकिन रिफाइंड जो है जैसे कि बाजार का जो मिलता है ना, वो रिफाइंड होता है। अब जैसे कि कैल्शियम वेल्शियम की जैसे बात करें हम, तो 5 ग्राम हम अगर 250-200 ग्राम खड़िया खिलाएंगे तब तो उसमें से 30-40-50 ग्राम के आसपास कैल्शियम मिलेगा, क्योंकि उसमें रॉ मटेरियल भी ज़्यादा है, और जो बाजार से मिलता है वो रिफाइंड मिलता है, उसमें मतलब
1: तो मैं
0: कि
1: ज्यादा
0: हाँ
1: मात्रा में।
0: संशोधित होता है वो, इसलिए बाजार का ही यूज करें तो
1: कुछ
0: ज़्यादा
1: लोग
0: अच्छा है।
1: जानवर के चाटे के लिए रखा थे खड़िया वगैरह।
0: हाँ, इसलिए जैसे कि अब देखिए उसमें भी आपने बड़ा अच्छा ध्यान दिलाया हमें, इसमें जो है UMB बोलते हैं, यूरिया मिनरल मोलासेस ब्लॉक बोलते हैं। जैसे उसमें यूरिया मिला रहेगा और खनिज तत्व, मिनरल का मतलब खनिज तत्व तो रहेगा वही पूरा, कैल्शियम फास्फोरस पोटेशियम मैग्नीशियम, और मोलासेस मतलब सीरा होता है, चोटा वोटा इसको हम लोग बनाते हैं, तो इसको जो है ब्लॉक बनाते हैं इसका, उसी का ईंटा बना के रख देते हैं। तो जानवर जो है कम से कम डेली जो है इसको आधा 300 से 500 मतलब ग्राम, एक पाव से आधा किलोग्राम तक तो जानवर चाट लेता है, तो इससे से उसकी डाइजिबिलिटी जो है बहुत बढ़िया हो जाती है। और कुछ जानवर जैसे ज़्यादा दूध देते हैं तो उसको बाईपास प्रोटीन एक कहा जाता है। बाईपास प्रोटीन का मतलब ये होता है कि जो हम पशुओं को दाना खिलाते हैं, चारा खिलाते हैं, वो आधा शरीर में रुकता है और आधा से ज़्यादा जो है जितना बढ़िया होगा, जब बढ़िया होगा तो शरीर में रुकेगा, रफ क्वालिटी का होगा तो गोबर और पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाता है। तो जैसे उसमें अगर हम देखते हैं कि अगर मक्के का ग्लूटिन मिल होता है, मक्का का एक ग्लूटिन मिल मिलता है खली, कपास की खली होती है, नारियल की खली होती है, सुबबुल का लीफ होता है, मिल होता है, इसको जब हम जानवरों को जो है खिलाते हैं, जब इसको 1 किलोग्राम तक तो हम खिला सकते हैं डायरेक्ट इन खलियों को, 1 किलोग्राम जो खिलाएंगे तो क्या होगा कि उनका जो प्रोटीन जो होता है ना वो पेट में नहीं टूटेगा, वो धीरे धीरे घुलेगा और आंत में पहुंच जाएगा। तो धीरे धीरे घुलेगा और आंत में जब पहुंचेगा तो एमिनो एसिड के रूप में उसके आंत में जब पहुंच जाएगा, शोषित कर लेगा, तो वो पूरा का पूरा जो है पोषक तत्व तो पशुओं के शरीर में समाहित हो जाता है,
1: बेकार ना हो
0: हाँ बेकार
1: एकदम।
0: ना हो। और जैसे कि कुछ जैसे कि हमारा ये है मूंगफली की खली है, तीसी की खली है, सरसों की खली है, इनको अगर 1-2 किलो खिला देंगे तो क्या होगा कि पेट में जाके टूट जाता है, और टूटने के बाद अमोनिया गैस के रूप में वो हो जाता, प्रोटीन टूट जाती है, वो जो है फिर पेशाब के रास्ते और गोबर के रास्ते धीरे धीरे गैसेज के रूप में नष्ट हो जाती है।
1: जी, जी।
0: तो वो प्रोटीन पूरा शरीर को नहीं मिलती है तो नुकसान होता है। तो बाईपास प्रोटीन देने का मतलब ये है कि उसमें, और जैसे सरसों का बताया ना मैंने, सरसों का पास ये तीसी हो गया, सरसों हो गया, ये मूंगफली हो गया, इसको क्या करना है कि आता है ट्रीटमेंट होता अलग से डी

0: फॉर्मल्डिहाइड से किया जाता है कि प्रोटीन को बाउंड कर देते हैं, प्रोटेट कर देते हैं, तो धीरे धीरे टूटती है, तो धीरे धीरे शरीर में टूटेगी तो पशु उसको सोखता जाएगा, उसकी शरीर तो पोषक तत्व तो ज्यादा
1: अच्छा,
0: मिलेगा।
1: सुबबुल पत्ती के भी आप नाम ले हैं भाई,
0: हाँ,
1: तो उनका प्रयोग कैसे हो?
0: सुबबुल जो है ना, हमारे यहाँ तो जैसे नहीं पाया जाता है, जंगली झाड़ियों में बहुत ज्यादा पाया जाता है, लेकिन जो बड़े किसान हो, चाहे तो दो चार बिस्सा या तालाब वाला जैसे मछली का है, तो उस तालाब के भीटे के ऊपर इसका बीज छीट देंगे, तो इसके इसकी पत्तियों में जो है 25

0: प्रोटीन बेस्ड जो डाइट होती है
1: हाँ
0: वो जानवरों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। दूध पैदा करने में ये प्रोटीन युक्त और वसा युक्त जो दाना मिश्रण बनाते हैं हम, उसका बहुत महत्व है।
1: तो सुबह बोल जो माने जब बेकार जमीन हो या
0: हाँ,
1: खेत
0: बहुत
1: किनारे
0: तेजी
1: है।
0: से फैलता है, हम लोग यहाँ बेहक खूब तेजी से फैलता है,
1: हाँ
0: खत्म नहीं
1: वैसे
0: होता जल्दी, वैसे भी नहीं खत्म होता है, वो जमीन से निकलता ही रहेगा, उसकी जड़ें नीचे फैली रहती हैं और उससे पत्तियां बहुत अच्छी मात्रा में निकलती हैं। तो खासकर भेड़ बकरियों के लिए तो बहुत ही उपयोगी होता है, पर बड़े जानवरों में भी काफी अच्छे इसका, अगर हम एक आध आधा बीघा एक बीघा का प्लाट बना लेते हैं तो बहुत बढ़िया इससे पत्ती पैदा होती है।
1: तो बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी आज आप दें। दाना मिश्रण किसान भाई कौन तरह से तैयार करें और उनके अगर प्रयोग करते हैं तो क्या सावधानी बरतें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: सुद्धू भैया,
1: हाँ बोला भैया,
2: कितना नगद के बात कह रहे, डॉक्टर अमरेश कुमार सिंह और दिनेश कुमार भैया का तब
1: हम
2: बाद।
1: कहे कि नगद के बात कही तो सुनवाई देला, अब नगद के गौनाई भी सुनवाई दा।
2: हाँ, कहने भैया तो देखा तेज बहादुर यादव और साथी के विकास गीत हो,
1: सुनवाई दा
2: पांच लोग भी सुना और
1: आनंद
2: हम लोग भी
1: ले।
2: सुना।
1: हाँ।

0: बोला
1: शुक्रिया।
0: भैया गांव में विकास के किरणिया दिखाई किए
1: दिखाए
0: गावत रहा ना।
1: ई देखा तेज बहादुर यादव और साथी के विकास गीत रहल
0: भाई मन
1: तो
0: मन शांत
1: मन
0: हो
1: मन
0: गल।
1: साइन तो हो
0: अब
1: गए।
0: हम कई काल अपने पंच भैया लोगन की का सुनवावत हुआ।
1: देखा कल के कार्यक्रम में प्रातः 6:05 पे खेती की बातें में विषय रही गर्मी के जुताई का महत्व, जिकरे बारे में जानकारी दें दिनेश कुमार सिंह। और सांझी के का सुनौत हुआ कृषि जगत में भैया?
0: साझी के भाई देखा 6:30 पर जोन अपन कृषि जगत कार्यक्रम होता ना एमन बात कही हुई प्रोफेसर कल्याण घड़ेई और सतीश कुमार यादव भैया का कि कृषि प्रसार और ग्रामीण विकास है ना कैसे एक दूसरे के संबंध हो कैसे ग्रामीण विकास हो ला कृषि प्रसार के माध्यम से ये विषय पर। तो ये कार्यक्रम कभी बात कही हो गई हम
1: बिल्कुल
0: कही
1: भैया,
0: अब देखा चला चलावत कहे कही हो कि घाम जो है बड़ा जोर होता
1: बहुत
0: जल्ला
1: बहुत भैया,
0: तो बहुत बचाए के रहे के जरूरत हो अपने संगे जो है प्याज रखा है अगर बाहर निकले की जरूरत पड़त हो तो आना ही तो न निकले तो सबसे बढ़िया
1: ए
0: हो।
1: भैया का बात कहला, हम तो आज प्याज रख के आ लली है धूप देख के
0: बहुत भाई
1: ना।
0: जानकार सचेत
1: हाँ
0: आदमी हुआ तो पहले से हम कहे एक साथे सनेश के साथे ना चल के बेला भाई पंच भैया लोगों से आज्ञा लेवल जाए तो पंचो
1: राम
0: राम राम।
1: राम।

अभी आप सुन रहे थे किसान भाइयों का कार्यक्रम कृषि जगत, आकाशवाणी का यह वाराणसी केंद्र है। अब आए सुने फिल्म संगीत। यह गीत हमने लिया है फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी से। आवाजें हैं नीरज श्रीधर, सुजाने डीमेलू। गीत लिखा है इशाद कामिल ने और संगीतकार हैं प्रीतम।

यह गीतों ने लिया है फिल्म जब तक है जान से। राघव माथुर और शिल्पा राव ने इस गीत को गाया है। शब्दकार हैं गुलजार और संगीत रचना ए आर रहमान की है।

अभी अब फिल्म जब तक है जान फिल्म का गीत सुन रहे थे राघव माथुर और शिल्पा राव की आवाज थी। अब आइए के मोहन और यशिता शर्मा को सुने। बोल लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। फिल्म का नाम टू स्टेट्स। संगीत निर्देशन एहसान शंकर एहसान लॉय।

और अब कार्यक्रम के अंत में आए सुने यारियां टू का एक गीत। आवाज सचेत टंडन की है, गीत मनन भारद्वाज और मीराबाई की, संगीत रचना मनन भारद्वाज, नुसरत फतेह अली खां का।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। मीडियम वेव 241.5 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए सुने खोई हुई व्यक्तियों संबंधित सूचना। श्रीमती रेशमा, पत्नी रमेश बिंद, निवासी महेशपुर, थाना डमडमगंज, जनपद मिर्जापुर, ये कहीं खो गई हैं। इनके हुलिया इस प्रकार है। उम्र 28 वर्ष, कद 5 फीट, इकहरा बदन, चेहरा गोल, रंग गोरा है। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक जनपद मिर्जापुर को सूचित करें। पुलिस अधीक्षक जनपद मिर्जापुर से प्राप्त सूचना के अनुसार श्रीमती चंदा, पत्नी धर्मेंद्र कुमार, ग्राम लुड्डी कला, थाना जमालपुर, जनपद मिर्जापुर, कहीं लापता हो गई हैं। इनके हुलिया इस प्रकार है। उम्र 30 वर्ष, कद 5 फीट 2 इंच, सामान्य इकहरा बदन, रंग सांवला, लंबा चेहरा है। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर थाना जमालपुर, जनपद मिर्जापुर को सूचित करें।

पुलिस अधीक्षक जनपद मिर्जापुर से प्राप्त एक और सूचना के अनुसार संदीप पटेल, प्रीति पटेल पत्नी, पुत्री गुलाब पटेल, उम्र 20 वर्ष, इकहरा बदन, रंग गोरा, कद 5 फीट है, चेहरा लंबा है। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर कृपया थाना दलहाट जनपद मिर्जापुर को सूचित करें। ये निवासी पकड़ी की रहने वाली हैं। कोई भी व्यक्ति संबंधित सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। 7:18 हो रहे हैं। थोड़ी देर में यानी 7:20 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम लखनऊ केंद्र से संप्रसारित करेंगे।

0: भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना।
4: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 51,000 से अधिक युवाओं को वितरित करेंगे नियुक्ति पत्र। राजधानी लखनऊ सहित देश भर के 47 स्थानों पर होगा रोजगार मेले का आयोजन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवरिया में 655 करोड़ रुपए की लागत से 19 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, डबल इंजन सरकार ने उत्तर प्रदेश को विकास, सुरक्षा और विरासत के नए मॉडल में बदला। जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत आज से प्रदेश भर में मकानों की गणना शुरू। पहले दिन 1,35,00,000 से अधिक मकानों की हुई गिनती। और प्रदेश भर में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी। प्रयागराज में आज दोपहर 46 डिग्री सेल्सियस रहा पारा। अगले 4 दिनों तक प्रदेश में लू की चेतावनी। कई इलाकों में चलेंगी तेज धूल भरी हवाएं। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 19वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। वे आयोजन को संबोधित भी करेंगे। एक रिपोर्ट।
5: 19वें रोजगार मेले का आयोजन प्रदेश की राजधानी लखनऊ सहित देश भर के 47 स्थानों पर किया जाएगा। लखनऊ में केंद्रीय राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह कार्यक्रम में शामिल होंगे। देश के सभी हिस्सों से चयनित नव नियुक्त उम्मीदवार रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग सहित केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्यभार ग्रहण करेंगे। रोजगार मेला आरंभ किए जाने के बाद देश में अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से लगभग 12 लाख नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। समाचार कक्ष से सुशील चंद्र तिवारी।
4: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज देवरिया में 655 करोड़ रुपए की लागत से 19 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश और उत्तर प्रदेश ने विकास की नई गति पकड़ी है और अब विकास की यात्रा रुकने वाली नहीं है। श्री योगी ने कहा कि अच्छी सड़कें, फ्लाईओवर, पुल और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर ही रोजगार और निवेश की नींव होते हैं। आज पूरे देश में उत्तर प्रदेश का नाम सम्मान और गर्व के साथ लिया जाता है। यूपी विरासत और विकास दोनों का संगम बन चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वर्ष 2014 के बाद नए भारत का निर्माण हुआ है।
6: 2014 के बाद आज जिस नए भारत का हम सब दर्शन कर रहे हैं, इसके पीछे प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व और उनका वह विजन है जो विकास को प्राथमिकता देता है। और प्रधानमंत्री जी के उसी विजन को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इस बात को हमेशा प्राथमिकता दी है कि गति जितनी तेज होगी, विकास का लाभ उतनी तेजी के साथ आम जन को प्राप्त होगा।
4: इस अवसर पर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, राज्य मंत्री ग्राम्य विकास विजय लक्ष्मी गौतम सहित कई गणमान्य उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में यमुना एक्सप्रेसवे और औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अंतर्गत 17 निवेशकों को औद्योगिक आवंटन पत्र प्रदान किया। इस पहल से प्रदेश में नए निवेश, रोजगार और औद्योगिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी। मुख्यमंत्री ने निवेशकों के साथ संवाद कर उन्हें प्रदेश में उपलब्ध औद्योगिक संभावनाओं और सरकार की योजनाओं से भी अवगत कराया। इस कार्यक्रम में औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता भी उपस्थित रहे। जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत आज से प्रदेश में मकानों की गणना और सूचीकरण का कार्य शुरू हो गया है। आज से राज्य के

ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है

0: 3,89,312 मकान सूचीकरण ब्लॉक में प्रगणकों और पर्यवेक्षकों द्वारा सर्वेक्षण कार्य शुरू किया गया। इस दौरान लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास और आगरा में ताजमहल परिसर की भी गणना की गई। आज 1,35,00,000 से अधिक घरों पर जनगणना मकान संख्या अंकित की गई। इससे पूर्व 7 से 21 मई तक स्वगणना का कार्य किया गया। मऊ के जिलाधिकारी आनंद वर्धन ने जनगणना कार्य को समयबद्ध, पारदर्शी और गुणवत्ता के साथ संपन्न कराने के निर्देश दिए हैं। अमरोहा में जनगणना में संपूर्ण जिले को कुल 3,682 गणना ब्लॉक में विभाजित किया गया है। अमरोहा के जिलाधिकारी डॉ. नितिन गौड़ ने बताया कि प्रगणक घर घर जाकर जनगणना संबंधी आंकड़ों को इकट्ठा कर रहे हैं।
1: हमारे 3,680 HLBs हैं और हर किसी को अराउंड 150 एवरेज यानी कि अराउंड 600 टू 800 की पॉपुलेशन हर किसी एन्यूमरेटर को करना है और ये काम जैसे वो अपने स्कूल की ड्यूटी करते हैं उसके बाद के एक घंटे में करना है। और जो ये कैलकुलेशन हुई है इसकी साइंटिफिक टूल्स के हिसाब से, उसके हिसाब से एक परिवार के कराने में लगभग 10 मिनट लग रहे हैं। तो अगर एन्यूमरेटर डेली 1 से 1.5 घंटा भी देंगे तो अपने वो दैनिक लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय आज 1 जुलाई से कक्षा 9 के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने के CBSE के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति जॉय माल्यबागची और विपुल एम पंचोली की पीठ के समक्ष ये मामला उठाया। उन्होंने कहा कि यह जनहित याचिका छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों द्वारा दायर की गई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक दिन बढ़ाकर 24 मई कर दी है। CBSE ने यह निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया है, जिससे वेबसाइट बाधित हो रही थी। बोर्ड ने बताया कि विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच के न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान ने आज लखनऊ के जिला न्यायाधीश मलखान सिंह के नेतृत्व में एक साइकिल जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अभियान का उद्देश्य बढ़ती ईंधन खपत के प्रति लोगों को जागरूक करना तथा पर्यावरण संरक्षण का संदेश देना था। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग की ओर से जारी स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 की रिपोर्ट में वाराणसी को सेंट्रल जोन का सर्वश्रेष्ठ जिला घोषित किया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश राज्यों की श्रेणी में पहले स्थान पर रहा। वाराणसी के मुख्य विकास अधिकारी प्रखर कुमार सिंह ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत ये सर्वेक्षण देश के गांवों में स्वच्छता की वास्तविक स्थिति जानने के लिए कराया गया था।
2: यह जो स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण होता है, ये मुख्यतः इसके 4 पिलर्स हैं। पहला पिलर जिसमें थर्ड पार्टी एजेंसी द्वारा गांव का सर्वे किया जाता है, इसके अलावा जो सेवा स्तरीय प्रगति होती है उसकी भी निगरानी इस सर्वेक्षण में होती है। तीसरा जो हमारे नागरिक हैं उनका जो फीडबैक है, सिटीजन फीडबैक के भी इसमें 100 अंक होते हैं। और इसके अलावा जो विभिन्न तरह के संयंत्र हमारे जनपद में लगे हुए हैं, जैसे कि 3 प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट हैं, बायोगैस प्लांट है, FSTP है, फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट, इन सबके जो कार्य क्षमता है उसका भी आकलन इस सर्वे में किया जाता है।
0: उत्तर रेलवे के मुरादाबाद रेल मंडल में वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक महेश यादव ने आज बताया कि पूर्वोत्तर रेलवे के गोरखपुर कैंट पनियावा रेलखंड में उन्नावला पिपराइच स्टेशन के बीच रेल लाइन दोहरीकरण कार्य के चलते मुरादाबाद मंडल में 18 ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। रेलवे प्रशासन ने 28 मई से 8 जून तक विभिन्न तिथियों में ट्रेनों को निरस्त और परिवर्तित मार्ग से चलाने का फैसला लिया है। प्रदेश भर में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है। प्रयागराज में आज दोपहर तापमान 46 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि आगरा में पारा 45 डिग्री रहा। राजधानी लखनऊ सहित कई शहरों में तापमान 42 डिग्री के पास रहा। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के लिए प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी दोनों हिस्सों में दिन में लू चलने की चेतावनी जारी की है। लखनऊ मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि इस दौरान कई इलाकों में तेज धूल भरी हवाएं चलने की भी

0: आशंका है।
1: प्रदेश में आगामी एक सप्ताह के दौरान कुछ स्थानों पर उष्ण लहर से भीषण उष्ण लहर के साथ कहीं कहीं उष्ण रात होने की संभावना के दृष्टिगत आगामी 3 दिनों के लिए 24 मई तक प्रदेश के दक्षिणी भागों के लिए रेड अलर्ट, जबकि उसके बाद के 4 दिनों में 26 मई तक के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की गई है भीषण लू और उष्ण रात्रि के लिए, और लोगों से दी गई सलाह के अनुसार सावधानी बरतने की अपेक्षा की जाती है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 51,000 से अधिक युवाओं को वितरित करेंगे नियुक्ति पत्र। राजधानी लखनऊ सहित देश भर के 47 स्थानों पर होगा रोजगार मेले का आयोजन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवरिया में 655 करोड़ रुपए की लागत से 19 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, डबल इंजन सरकार ने उत्तर प्रदेश को विकास, सुरक्षा और विरासत के नए मॉडल में बदला। जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत आज से प्रदेश भर में मकानों की गणना शुरू। पहले दिन 1,35,00,000 से अधिक मकानों की हुई गिनती। और प्रदेश भर में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी। प्रयागराज में आज दोपहर 46 डिग्री सेल्सियस रहा पारा। अगले 4 दिनों तक प्रदेश में लू की चेतावनी। कई इलाकों में चलेंगी तेज धूल भरी हवाएं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।
2: स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है, जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं।
3: आकाशवाणी का यह वाराणसी केंद्र है। मीडियम 241.5 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर। आइए सुने पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी।

0: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज सुनते हैं देश की जानी मानी वायलिन वादक श्रीमती एन राजम के साथ हमारी खास बातचीत। इस साक्षात्कार का संचालन कर रहे हैं जयंत पाथरीकर।
2: आज ये कहना चाहूंगा कि आकाशवाणी प्रयोग धर्मिता की ओर बढ़ रही है। समय के साथ जिस तरह के बदलाव प्रसारण की तकनीक में आए हैं, उन सबको आत्मसात करते हुए, उसके साथ अपने आप को परिवर्तित करते हुए आकाशवाणी आगे बढ़ती रही है। आकाशवाणी संगीत सम्मेलन हर वर्ष आयोजित होता है, उनमें आपने महान कलाकारों का गायन वादन देखा होगा, उसका आनंद उठाया होगा। जब जब उसका प्रसारण हुआ है उसे भी आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, मगर ये पहली बार हो रहा है कि मंच पर एक मूर्धन्य कलाकार को प्रत्यक्ष रूप से आप बात करते हुए देखेंगे। ये सजीव साक्षात्कार यहाँ आयोजित किया गया है। और पद्म विभूषण डॉक्टर एन राजम जी, मैं आपको अम्मा जी कहूंगा, अम्मा जी आपको पाकर हम अभिभूत हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि पद्म पुरस्कारों में जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है पद्म विभूषण, इससे आपको सम्मानित किया गया है और इसके लिए बारंबार अभिनंदन आपका। निसंदेह ये आपकी तपस्या का प्रतिफल है। इसका श्रेय आप किसे देंगी? ग्रेटिट्यूड जिसे कहते हैं, वो आप किसके प्रति व्यक्त करना चाहिए?
3: ये सम्मान घोषित हुआ, बड़ा आनंद हुआ, खुशी हुई। सबसे पहले मेरे मन में जिनकी याद आई, जिनकी छवि मेरे सामने आई, वो थी मेरे गुरुजनों का, मेरे माता पिता का। हमारा परिवार जो है एक संगीतकारों का परिवार है, कई पीढ़ियों से संगीत चला आ रहा है। और मुझे सबसे पहले श्री गणेश मेरे पिताजी ने किया, व्हेन आई वाज केवल 3 साल की थी, तो तब से मैं बजाती हूँ, सीख रही हूँ, अभी भी सीख रही हूँ, अभी भी रियाज करती हूँ, सिलसिला जारी है।
2: आपसे मैं जानना चाहूंगा कि आकाशवाणी से आपका रिश्ता कैसा रहा है?
3: उन दिनों जब मैं छोटी थी, मेरी आयु रही होगी 9 साल की, उन दिनों ये नियम नहीं था कि ऑडिशन के लिए 15 साल की जरूरत है, तो मैंने ऑडिशन दिया। उसके बाद उसका रिजल्ट आया कुछ समय बाद, तो मेरे घर में मेरे पिताजी और बड़े भाई लोगों की एक आदत रही कि बच्चों को चिढ़ाना है और उससे वो आनंदित होते हैं। तो कहने लगे मेरे एक भाई,

0: आई और कोई बात नहीं, इस साल इस बार नहीं हुआ, आगे हो जाएगा कोई बात। जैसे उन्होंने कहा, उसको मैंने सही समझा तो लगी रोने, 9 साल की उम्र में और क्या हो सकता है। तो काफी देर चिढ़ाने के बाद पिताजी भी उसमें शामिल थे, तो अब फिर कहा, चने रो मत, तुमको मिल गया है। और इस तरह रेडियो से मेरा संबंध जो है उस समय से है जबकि मैं 9 साल की थी। और चिट्ठी भी जो है कि ऑडिशन में मैं पास हो गई करके जो पत्र आया था वो अंग्रेजी में लिखा हुआ था। उस समय अंग्रेजी विशेष नहीं आती थी, बिल्कुल ही नहीं आती थी, विशेष क्या, तो मैं पढ़ नहीं पाई थी स्वयं। तो उसके पहले ये ड्रामा हुआ घर में, उसके बाद।
1: वाह, इतनी नाजुक उम्र में आपने शुरुआत की और आप बहुत छोटी थी जब आपका पहला प्रेजेंटेशन हुआ था स्टेज पर, तो उस वक्त सुर डर पे हावी थे या डर सुर पे हावी था?
0: डर,
1: हाँ, मन में डर जो होता है।
0: डर ऐसे कोई चीज होती है वो पता ही नहीं चला।
1: क्या बात है।
0: वायलिन हाथ में ले लेते हैं और रियाज करते हैं तो अगर कहीं बजाने, हाँ हमारे घर में ये भी लोग बाग आते रहे क्योंकि संगीतकार का परिवार है, तो कई लोग आते जाते रहे। तो कोई भी आते हैं तो पिताजी उससे तुरंत कहते हैं कि आ जाओ अंकल के लिए एक गाना बजा दो, तो हम आकर के भाग जाते रहे। तो इस तरह का एटमोसफियर था, तो डर की कोई बात नहीं थी।
1: वो आपके स्वभाव में आ गया था बड़े सहज रूप से।
0: बिल्कुल सहज रूप।
1: क्या बात। बहुत जल्दी आपने अम्मा जी कर्नाटक शैली से हिंदुस्तानी शैली की ओर जो है यात्रा शुरू कर दी। ये कितना मुश्किल था, कितना चैलेंजिंग था, क्योंकि आपके पिताजी का तो कहना था कि कर्नाटक शैली में ही वायलिन बज सकता है, हिंदुस्तान में तो बजेगा ही नहीं शायद।
0: हाँ, शुरुआत तो मेरा कर्नाटक म्यूजिक से था। 3 साल की उम्र में पिताजी ने शुरू किया था, फिर जैसे ही 9 साल की हुई रेडियो का ऑडिशन हुआ, सिलेक्शन हो गया वगैरह वगैरह। तो जब मैंने SSLC पास किया, 10th कही 11th कही,
1: जी,
0: तो पास हो गई थी, पर आगे की पढ़ाई के लिए यानी कॉलेज एडमिशन के लिए वो संभव नहीं था क्योंकि उस समय मैं 14 साल और 3 महीने की थी, जबकि कॉलेज एडमिशन के लिए मिनिमम एज रिक्वायरमेंट जो था 14 साल और 6 महीने। तो मेरे पिताजी बड़े, ही वॉज ए स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन, तो उन्होंने कहा कि 1 साल तक घर पे बच्चों को रखना नहीं ठीक है, आलसी बन जाएंगे। तो उन्होंने कहा तुम प्राइवेटली कहीं इंटरमीडिएट की परीक्षा दे दो, और उन्होंने पता भी लगाया कि कहाँ इस तरह की सुविधा मिलती है। तो पता चला उनको कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, और ये सुविधा है कि प्राइवेट गर्ल ओ भी केवल लड़कियों के लिए ये सुविधा दी जाती थी। तो पिताजी ने कहा तुम 8 सब्जेक्ट सोच लो और परीक्षा देख के हो। तो उन्होंने कहा संगीत एक सब्जेक्ट ले लो, संगीत भी एक सब्जेक्ट था। तो तब तक मेरा 12 साल के समय का कर्नाटक म्यूजिक का प्रैक्टिस रहा, 12 साल मैं बजा चुका। और रेडियो में तो 9 साल के बाद बराबर बजाती भी थी, और रेडियो के साथ उतना पुराना संबंध था मेरा। तो पिताजी ने कह तो दिया कि हिंदुस्तानी संगीत ले लो, और उम्र कम थी ना, तो इसीलिए मुझे भी नहीं समझ में आया कि मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, ये सब चिंता इन्हें पिताजी ने कह दिया, तो फादर्स वर्ड वॉज लास्ट, तो ले लिया मैंने। और उसके बाद बातें ऐसी होती गई तो मुझे उसमें रुचि भी आ गई और मैं सीख पाई, और पंडित ओमकार नाथ जी जैसे महान गुरु का शिष्य होने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ।
1: बस मैं उन्हीं के बारे में भी आपसे पूछने वाला था कि गायकी अंग से वादन जो है आपका है, जो आपके वादन की विशेषता है, ये सोच कहाँ से आई, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली?
0: जितने भी वाद्य थे, वीणा कहिए या वायलिन कहिए या फ्लूट कहिए, सभी में वोकल म्यूजिक जिस तरह गाया जाता है उसी तरह बजाने की प्रथा वहां थी।
1: अच्छा,
0: सेपरेट स्टाइल नहीं था इंस्ट्रूमेंट्स के लिए।
1: जी।
0: तो ये बात मेरे मन में आई कि यहाँ भी, जबकि उत्तर भारत में वाद्यों के लिए खास शैली थी गतकारी, तो मेरे मन में आया ये विचार, मेरे पिताजी का भी इसमें बहुत बड़ा आहत रहा। हिंदुस्तानी संगीत को गायकी स्टाइल से यानी जिस तरह कंठ से
1: जी
0: आवाज आती है उस तरह एक अनोखा काम हो भी जाएगा, उन्होंने कहा, तो उस तरह। और चूंकि मुझे 10-12 साल का अभ्यास था कर्नाटक म्यूजिक में, और उसके कारण मुझ में ये एबिलिटी थी ये कि कोई भी कुछ भी फ्रेज गाए
1: जी,
0: तो उसको मैं तुरंत रिप्रोड्यूस करने की शक्ति थी मुझे।
1: वाह, वाह।
0: तो इस तरह

0: शुरू हो गया।
1: और पंडित ओमकारनाथ जी के बारे में कुछ?
0: और मेरा परम सौभाग्य रहा कि उन इतने महान कलाकार से
1: जी,
0: संगीत साधक से संगीत सीखने के, हिंदुस्तानी संगीत सीखने का अवसर मिला। मेरे पास शब्द नहीं कहने के लिए कि कितनी खुशी हुई, कितना आनंद हुआ, और उसके बाद सिलसिला चल पड़ी।
1: जी जी जी। आपके वादन के बारे में एक और प्रश्न है कि बनारस घराने की जो गायकी है उसे आपने वॉयलिन में कैसे उतारा, उसमें जो ठहराव होता है खासतौर से?
0: नहीं, बनारस घराने की बात नहीं उठती है, कैसे मैं गायकी स्टाइल मैंने आत्मसात किया।
1: हाँ जी।
0: मैंने गुरुजी एक राग, मान लीजिए कोई भी राग को लेते थे तो वो एक दो फ्रेज गाते हैं, मैं तुरंत बजा तो लेती थी, पर इससे ये नहीं कह सकती हूँ कि हिंदुस्तानी म्यूजिक आ गया हो गया। वो सिखाते थे, मैं बजाने लगी, और उसमें हिंदुस्तानी म्यूजिक की आत्मा जो है
1: जी जी,
0: उसकी बू जो है उसको कैसे ले आना है, तो मुझे कई साल परिश्रम करना पड़ा, मेहनत करनी पड़ी। इसमें मेरे गुरुजी, मेरे पिताजी सभी ने मेरे साथ काम किया और एक एक करके हो गई बात।
1: निश्चित रूप से किसी भी कला के साधक को निरंतर अभ्यास और प्रैक्टिस, ये उसकी साधना की आत्मा होते हैं। तो रियाज अब भी आपका जारी है? कभी ऐसा होता होगा रियाज छूट गया, नहीं हो पाया?
0: नहीं, खाना छूट जाता है पर रियाज नहीं, किसी कारण से एक दिन नहीं, ऐसा होता नहीं था। हाँ। फिर भी अगर हुआ तो चैन नहीं होता था
1: जी जी,
0: कि आज कुछ मिस किया मैंने, ऐसी भावना आती थी।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और मुझे संगीत के अलावा मेरी दुनिया में और कोई भी बात नहीं थी।
1: किसी भी साधक के जीवन में इससे बढ़कर और क्या होता होगा? एक आपका चूंकि संगीतकारों का, कलाकारों का परिवार रहा है, तो आपके भाई साहब टीएन कृष्णन साहब भी बहुत बड़े कर्नाटक शैली के वायलिन वादक रहे हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो ये सवाल ऐसा है,
0: हम सभी लोग बजाते हैं, यानी हम रहे पांच बच्चे।
1: अच्छा।
0: मेरे पेरेंट्स के।
1: हाँ।
0: तो सभी को, बच्चा जिस दिन 3 साल का हो जाता है, चाहे लड़की हो या लड़का, पिताजी भेंट में दे देते हैं वो एक वायलिन, और वो तब से शुरू हो जाता है। तो आफ्टर दैट देयर इज नो लुकिंग बैक।
1: हाँ हाँ हाँ। जब कृष्ण साहब थे तो बचपन से लेके जब भी कभी पारिवारिक सम्मेलन होता होगा त्योहारों के मौके पे या राखी के समय, भाई दूज के समय, तो आपकी नोकझोंक, किसी तरह का हल्का फुल्का झगड़ा किस बात पे होता था? वो मिठाई को लेके होता था या वायलिन को?
0: नहीं, मेरे बड़े भाई की जो बात है उनको हम सभी लोग, बाकी बच्चे बड़े रिस्पेक्ट से उनके साथ रहते हैं
1: जी, जी।
0: तो इसीलिए उनका, वो हम सब लोगों को वो खुद मार्गदर्शन देते थे, उनका स्थान इतना था।
1: बहुत से कलाकारों को हम देखते हैं कि अपने साज में वो अपने मुताबिक बदलाव करते हैं, आपने वायलिन में कुछ चेंजेस किए हैं?
0: वायलिन में, इंस्ट्रूमेंट में, जब मुझे इंस्ट्रूमेंट में कोई चेंज करने की सूझ नहीं आई और जरूरत भी नहीं थी, इट्स अ परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट।
1: क्या बात। अम्मा जी, वायलिन पर उपशास्त्रीय संगीत जब बजता है उसका अलग ही मजा है, उसका आनंद ही कुछ और है, तो उसके बारे में हमें बताइए। जैसे ठुमरी या टप्पा का जो नखरा होता है वो जिस तरह से प्रदर्शित होता है वॉयलिन पर, जिस तरह बजाया जाता है, उसका आनंद जो आता है, उसके बारे में थोड़ा बताइए।
0: एक बार अच्छी टेक्निक हाथ में मिल जाता है
1: जी,
0: तो उसके बाद क्लासिकल हो, सेमी क्लासिकल हो या लाइट हो, सब कुछ आसानी से बजाया जा सकता है। इतना ही है कि आपके पास सही टेक्निक होना चाहिए।
1: कलाकारों को तारीफें भी मिलती है और ताने भी सुनने पड़ते हैं। आपने अपने परफॉर्मेंसेस शुरू किए 1950 में, और उस वक्त सिनेरियो कुछ ऐसा था कि बहुत से जो कलाकार थे, बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स जिनके होते थे, उनमें मेल आर्टिस्ट ज्यादा थे, पुरुष कलाकार ज्यादा थे, महिलाएं उनके बनिस्बत कम थी। तो कैसा अनुभव था आपका? किसी बड़े कलाकार की तारीफ आपको अब तक याद हो, किसी ने कोई बात कही हो?
0: मुझे किसी से कभी भी कोई तकलीफ नहीं हुई। बड़े बड़े कलाकारों का स्नेह, वात्सल्य मुझे हमेशा प्राप्त हुआ। निसार हुसैन खान साहब, एक का नाम नहीं ले रही, बहुत से लोगों का, बड़े गुलाम अली खान साहब से मेरी मुलाकात हुई है, तो वो मेरा बजाना वगैरह सुन करके खुश होते थे।
1: अब मंच पर जब जब आपने जुगलबंदी का प्रस्तुतिकरण दिया है, उसकी बात करते हैं अम्मा जी, आपकी शहनाई पर बिस्मिल्लाह खान साहब के साथ जो जुगलबंदी है वो बहुत ही पॉपुलर हुई।
0: उनका बड़प्पन है मेरे साथ, उन्होंने बजाया और मुझे प्रोत्साहित किया, खूब उन्होंने प्रोत्साहन दिया।
1: और जो कौन कौन से कलाकार जिनके साथ आपने जुगलबंदी,
0: बिस्मिल्लाह खान साहब के साथ, वो भी बनारस

0: थे,
1: हाँ जी हाँ जी
0: वो भी गायकी बजाते थे, जो भी बजाते हैं वो गायन शैली
1: जी।
0: तो कहाँ शहनाई खत्म होता है और वायलिन कहाँ शुरू होता है और कहाँ वायलिन खत्म होता है वो फिर शहनाई शुरू होती है, मुश्किल से समझ में आती
1: बिल्कुल,
0: था
1: बिल्कुल सही कहा
0: लोगों को
1: जी।
0: तो बड़ा अच्छा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, मुझसे काफी सीनियर थे तो ये जैसे मैंने शुरू में ही कहा था उनका बड़ापन पिता तुल्य थे मेरे लिए वो।
1: और किसी कलाकार को आप याद करना चाहें जिनके
0: मेरे
1: साथ
0: भाई के साथ भी कई जुगलबंदियां हुई है तो वो कर्नाटक म्यूजिक बजाते थे, मैं हिंदुस्तानी बजाती थी, अब कई कॉमन रैग्स रहते हैं दोनों में तो कॉमन जैसे कि यमन है तोड़ी है इस तरह बहुत सी, तो उसको लेकर के एक ही मंच से एट द सेम टाइम लोगों को दोनों का क्या फर्क है, हिंदुस्तानी की विशेषताएं क्या है, कर्नाटक की विशेषताएं क्या है, मींड गामक इत्यादि सब प्रस्तुत करने के लिए मौका मिलता था हम लोगों को और एक ही मन से वो समझ पाते थे दोनों में क्या फर्क है, क्या समानता है।
1: सृजनात्मकता कलाकार की आत्मा होती है, कुछ नया क्रिएशन। तो आपका क्योंकि फंडामेंटल्स आपने कर्नाटक शैली में सीखे और बाद में आप हिंदुस्तानी शैली की ओर बढ़ी, तो इन दोनों शैलियों में जो संप्राकृतिक राग है, एक जैसे राग है, उनको लेकर के कुछ रागों का मिश्रण या कोई नया राग उत्पन्न हुआ हो मन में, ऐसा कुछ कभी हुआ?
0: नया राग बनाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इतना भरा पड़ा है, इतना गहरा समुद्र है
1: जी, जी।
0: फिर भी लोग बनाते हैं तो उससे मुझे संतोष ही मिलता है, आनंद ही मिलता है, पर मैंने कुछ ऐसा नया राग बनाने की चेष्टा नहीं की, जो है ऑलरेडी हजारों की संख्या में उनमें से थोड़े बहुत भी हम ले सकें और आत्मसात कर सकें वही बड़ी बात है, तो नया कुछ मैंने नहीं बना।
1: वाह, आपने पहले ही बताया कि बहुत छोटी उम्र में बीएचयू से, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से आपका संबंध रहा है, तो 40 साल आपने पढ़ाया है बीएचयू में, तो गुरु शिष्य परंपरा में सबसे खूबसूरत पल कौन सा था और सबसे कठिन हिस्सा कौन सा था?
0: गुरु के सानिध्य में सीखने का जो मौका मिलता है उसका बहुत फायदे हैं। हाँ, एक घटना बता दी इस संबंध में
1: जी, बिल्कुल।
0: बनारस में मेरे गुरुजी रहते थे पंडित ओमकारनाथ ठाकुर।
1: हाँ जी।
0: एक बार मुझे हमारे कॉलेज में पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जयंती मनाते थे हफ्ते भर के लिए, तो मेरा कार्यक्रम, टीचर्स के भी कार्यक्रम होते थे और जो सीनियर स्टूडेंट्स है जो गा बजाते हैं ठीक से उनके भी कार्यक्रम होते थे, तो मेरा कार्यक्रम था यानी आज, यानी कार्यक्रम के एक दिन पहले गुरुजी से मुलाकात हुई थी और मैंने कहा कि मैं देश बजाना चाहती हूँ, मेरे पास कोई ठीक से कॉम्पोजिशन नहीं है, ख्याल नहीं है, मुझे बता दीजिएगा। तो उन्होंने कहा कब बजाना है, मैंने कहा कल शाम को, तो पूछा इतने में करोगी, तो मैं कोशिश करूंगी। उसके बाद उन्होंने बड़ा ख्याल का दो सिखा दिया, बड़ा ख्याल स्थाई अंतर। उसके बाद मैं उसके बाद कल वहां से चली गई और दूसरे दिन शाम को कार्यक्रम था, हॉल खचाखच भरा हुआ था, मैं शुरू कर ही रही थी, शुरू पहला फ्रेज शुरू किया तो एंट्रेंस में जैसे एंट्रेंस है ना तो वहां हलचल हुई, थोड़ा कंफ्यूजन जैसे हो रहा था, आवाजें हो रही थी लोग अब, तो उसके बाद मैंने सिर उठा के देखा तो उसके पहले मैंने उस दिन पहले दिन ही उनसे जब सीखने के बाद कहा आप तो नहीं आएंगे ना प्रोग्राम में, तो नहीं नहीं मैं नहीं आऊंगा, तो जो हलचल जो हो रहा था तो मैंने कहा वो देख रही हूँ कि वो छड़ी लिए हुए आ रहे हैं धीरे धीरे, तो मेरा सप्त नाड़ी जो है समाप्त हो गए थे और मैंने उनको कहा अब मैं निश्चिंत थी ये कहाँ आने वाले हैं प्रोग्राम में, मैं बच्चों का प्रोग्राम, तो छड़ी ले करके वहाँ वो उनको लोग बाग जो है जगह दे रहे थे आगे जाने के लिए, तो आके बैठ गए फ्रंट रो में। हाँ चल, उनको देख करके मैं रोक दिया था मैंने और उसके बाद वो आके बैठे, उसके बाद जब आए तो हाँ चल बजा, तो मैंने सोचा आज मुझे डांट पड़ेगी जरूर, तो उसके बाद मैंने 45 मिनट राग देश बजाया, तो उन्होंने क्या किया उठ के खड़े हुए और पूरा एक लंबा चौड़ा भाषण दिया, बहुत सुंदर बोलते थे, चाहे हिंदी हो गुजराती हो मराठी हो सब अच्छी तरह बोलते थे, तो उन्होंने कहा आप लोग एकलव्य जानते हैं, नाम सुनना है उनका एकलव्य का, तो लोग हाँ कर, तो ये वैसा ही एक एग्जाम्पल आपको देखने को मिल रहा है, ये लड़की कल आई थी मुझसे और मुझसे सीख करके आज बजा दिया। तो उसके बाद खूब

0: तारीफ की मेरे बारे में और मैंने सोचा कि बच गई किसी तरह।
1: अम्मा जी, 90 के दशक में संगीत का एक नया रूप हमारे सामने आया जिसे हम सब फ्यूजन म्यूजिक के नाम से जानते हैं, तो आप ये जो स्टाइल है फ्यूजन म्यूजिक का, इसमें क्लासिकल को और सेमी क्लासिकल को और लाइट म्यूजिक को मिला करके कुछ नया बनाने की कोशिश होती है, कई बार फोक म्यूजिक भी इसमें मिलाया जाता है, इसे किस तरह से देखती है, ये कैसा एक्सपेरिमेंट लगता है?
0: मेरा दृष्टिकोण ये है कि लोग करते हैं उसके मैं खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगी
1: जी,
0: पर मैं यही सोचती हूँ हमें ये इतना बड़ा समुद्र है इसमें एक डुबकी भी अब तक नहीं हो पाया है, तो हम कहाँ चले गए कि उसको इसको मिलाओ और एक नई बात बनाओ, उसमें मुझे रुचि नहीं है। और जो लोग करते हैं उनके प्रति मेरा कोई विरोध भी नहीं है, अलग अलग पर्सनैलिटी है।
1: आज के इस सब कुछ इंस्टेंट और फास्ट फटाफट वाला जमाना है, तो इस दौर में आप अपने शिष्यों को ठहराव का जो महत्व है वो कैसे समझाती हैं?
0: अन्य क्षेत्रों में हो सकता है कि जल्दी का जमाना है तो जल्दी फटाफट कर लो, पर जहाँ तक शास्त्रीय संगीत है, वेदर वो कर्नाटक शैली का संगीत हो या हिंदुस्तानी हो, बिल्कुल पूरा अपने को अर्पित करना है और खूब रियाज करना है, उससे बच नहीं सकते हैं।
1: बहुत छोटी उम्र में आपने पहला प्रेजेंटेशन दिया था, वो 9 साल की नन्ही राजम अभी आपके सामने आ जाए तो आप उसे कैसे आशीर्वाद देंगी?
0: यही है, अच्छा किया, इसी तरह हर जन्म में करते रहो।
1: थैंक यू सो मच अम्मा जी, आपसे बात करके आपके अनुभव सुनकर के हम बहुत अभिभूत हुए हैं। आकाशवाणी मुंबई की ओर से और यहाँ उपस्थित सभी प्रेक्षकों की ओर से मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू सो मच, मुझे भी आपके साथ बातचीत करते हुए बड़ा आनंद आया और श्रोताओं के सामने कुछ बातें कहने का अवसर मिला, वो भी अच्छा लगा। थैंक यू सो मच,
1: धन्यवाद। डॉक्टर एन राजम जी अब प्रस्तुत कर रही हैं एक धुन।

0: अभी आप सुन रहे थे वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज आपने सुनी देश की जानी मानी वायलिन वादक श्रीमती एन राजन के साथ हमारी खास बातचीत। इस साक्षात्कार का संचालन कर रहे थे जयंत पाथरीकर। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है podcast.airnews@gmail.com।
1: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।

ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। मेन वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर। रात्रि की 8 बजे हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज के कलाकार हैं दीप्ति तैलंग। सबसे पहले आए सुने इनके आवाज में तुलसीदास का लिखा ये भजन।

आप सुन रहे हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम। कलाकार हैं दीप्ति तैलंग। अब आए सुने इन्हीं की आवाज में कबीरदास की लिखी ये रचना।

अभी आप सुगम संगीत का कार्यक्रम सुन रहे थे। कलाकार थी दीप्ति तैलंग। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है।

0: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। रात्रि के 8:15 हुए हैं। आइए सुने फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस माधुरी।
1: छुपा बादल में
0: यह गीत हमने लिया है फिल्म हम दिल दे चुके सनम से। आवाजें हैं अलका याग्निक और उदित नारायण की। गीतकार हैं महबूब कोतवाल और संगीतकार इस्माइल दरबार।

अब आइए लता मंगेशकर और उदित नारायण को सुनें। फिल्म का नाम दिल तो पागल है। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीतकार हैं उत्तम सिंह।

श्रोता हूँ, आप सुन रहे हैं रसमाधुरी कार्यक्रम। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब आइए सुने उदित नारायण की आवाज में फिल्म रोग का एक गीत। नीलेश मिश्रा ने इस गीत को लिखा है, संगीत रचना MM क्रीम की है।

अभी आप उदित नारायण की आवाज में फिल्म रोग का गीत सुने थी। अब आइए अनुराधा पौडवाल की आवाज में समीर के लिखाए गीत सुने। संगीतकार है नदीन श्रवण और फिल्म का नाम सिर्फ तुम।

अभी आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल और हरिहरन की आवाज़ में फिल्म सिर्फ तुम का गीत। गीतकार थे समीर और संगीतकार नदीम श्रवण। अब आए सुने जगजीत सिंह की आवाज़ में निदा फाजली का लिखा गीत। फिल्म का नाम सरफरोश।

0: वाले हैं। अब आप सुनेंगे समाचार संध्या, जिन्हें हम दिल्ली केंद्र से संप्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। भारत और साइप्रस आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत। द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का निर्णय। आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर। सरकार बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ सभी सीमाओं को अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। भारत ने ओडिशा के चांदीपुर में कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 का सफल परीक्षण किया। भारत ने बाल टीकाकरण कार्यक्रम मजबूत करने के लिए अफगानिस्तान को 20 टन महत्वपूर्ण वैक्सीन सामग्री भेजी। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को नई दिल्ली में होगी। और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। भारत और साइप्रस के बीच आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोलस क्रिस्टोडोलाइडिस के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर भी चर्चा हुई। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया गया है।
2: आज हम अपने विश्वसनीय संबंधों को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में एलिवेट कर रहे हैं। भारत और साइप्रस के बीच यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों के फाइनेंशियल और सर्विसेज हब को जोड़कर कॉमर्स के लिए कैपिटल अनलॉक करेगी। यह साइप्रस के इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और एग्रीकल्चर सेक्टर में भारतीय कंपनीज के लिए नए अवसर प्रदान करेगी और भारत के तेजी से बढ़ते शिपिंग और मैरिटाइम क्षेत्रों में नया निवेश लेकर आएगी।
1: श्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है।
2: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
1: साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। दोनों देश आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत हुए। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों नेताओं ने सीमा पार से आतंकवाद सहित हर प्रकार के आतंकवाद से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई है। साइप्रस ने आतंकवाद से मुकाबले में भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की। श्री जॉर्ज ने बताया कि दोनों नेताओं ने कई क्षेत्रों में संपर्क सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की।
3: Discussions focused on enhancing cooperation.
4: बातचीत में मुख्य रूप से व्यापार और निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, वित्तीय संपर्क, प्रौद्योगिकी और नवाचार, गतिशीलता, शिक्षा, संस्कृति तथा भारत यूरोपीय संघ सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार साझा किए। उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई।
3: इन ऑल इट्स फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशंस इंक्लूडिंग क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म।
1: सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू करेगी तथा बांग्लादेश और पाकिस्तान से लगी पूरी सीमा को अभेद्य बनाएगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि स्मार्ट बॉर्डर अवधारणा के अंतर्गत विभिन्न प्रौद्योगिकी के एकीकरण का कार्य प्रगति पर है।
5: आने वाले एक साल के अंदर ही स्मार्ट बॉर्डर कंसेप्ट के साथ सीमा सुरक्षा बल की सुरक्षा में सभी प्रकार की तकनीक को लैस कर एक अवैध बॉर्डर की हम सुरक्षा की ग्रिड बनाने का काम आगे बढ़ रहा है और बहुत कम समय में गृह मंत्रालय, ड्रोन, रडार, आधुनिक कैमराज और बाकी सारी तकनीक के साथ एक स्मार्ट बॉर्डर के प्रोजेक्ट को लेकर देश के सामने आएगा।
1: गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने न केवल घुसपैठ रोकने का संकल्प लिया है बल्कि हर एक घुसपैठी की पहचान कर देश से बाहर करने का भी प्रण लिया है। गृह मंत्री ने कहा कि सरकार के सशक्त प्रयासों से नक्सलवाद की 5 दशक पुरानी समस्या का

जगजीत सिंह के गाए फिल्म सरफरोश के इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसमात ही अब संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी वाराणसी है, रात्रि के 8:45।

0: के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से आज कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्निवन का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा। यह सफल परीक्षण भारत के रणनीतिक रक्षा तैयारियों में एक अन्य मील का पत्थर है। ये देश की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। अग्निवन कम दूरी की सतह से सतह तक मार करने वाली स्वदेशी स्तर पर विकसित बैलिस्टिक मिसाइल है। ये पारंपरिक और रणनीतिक पेलोड ले जाने में सक्षम है और त्वरित तैनाती के लिए इसे तैयार किया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत के बढ़ते डेटा सेंटर क्षेत्र से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्मार्ट ग्रिड, नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण और उन्नत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित विभिन्न क्षेत्रों में 1,00,000 इंजीनियरिंग नौकरियां सृजित हो सकती हैं। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत डेटा अर्थव्यवस्था को एक रणनीतिक अवसर के रूप में देखता है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से भारत कौशल आधारित समग्र शिक्षा प्रणाली को और मजबूत करने की दिशा में काम कर रहा है। श्री प्रधान ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत स्कूली शिक्षा में बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य, पोषण और खेल गतिविधियों पर व्यापक रूप से ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक दिन बढ़ाकर 24 मई कर दी है। यह निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया गया है। विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट यूजी परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में एक और प्रमुख आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी मनीषा संजय हवलदार नीट यूजी परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थी और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त की गई थी। अब तक मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: यह रोजगार मेला रोजगार सृजन के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सार्थक अवसर प्रदान कर रहा है। देश भर में अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से 12,00,000 नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। यह 19वां रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI भोपाल में मॉडल त्रिशा शर्मा के संदिग्ध मौत की जांच करेगा। त्रिशा 12 मई को अपने घर में मृत पाई गई थी। पुलिस ने त्रिशा के पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह के खिलाफ दहेज मौत की धारा के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। इस बीच उच्च न्यायालय ने त्रिशा शर्मा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराने का आदेश दिया। मध्य प्रदेश के धार जिले में हिंदू समुदाय ने आज भोजशाला में पूजा अर्चना की। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 15 मई को भोजशाला की वागदेवी मंदिर घोषित किया था और साथ ही यहां जुमे की नमाज पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। फैसले के बाद यह पहला शुक्रवार

था। ऐसे में प्रशासन दिन भर हाई अलर्ट पर रहा और माहौल पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। भारत ने अफगानिस्तान के बाल टीकाकरण कार्यक्रम को मजबूत करने के लिए बीसीजी, टेटनेस और डिप्थीरिया के टीकों की 20 टन आवश्यक सामग्री भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि अफगानिस्तान को और खेप भेजी जा रही है। भारत ने स्वास्थ्य क्षेत्र में अफगानिस्तान के लोगों की निरंतर सहायता की प्रतिबद्धता व्यक्त की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस सहायता का उद्देश्य अफगानिस्तान में बाल स्वास्थ्य देखभाल सेवा को मजबूत करना और टीकाकरण का दायरा बढ़ाना है। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को नई दिल्ली में होगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर के निमंत्रण पर ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो बैठक में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड के दृष्टिकोण के अनुरूप क्वाड विदेश मंत्री प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे और क्वाड के अंतर्गत की गई पहलों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। माउंट एवरेस्ट से उतरते समय दो भारतीय पर्वतारोहियों अरुण कुमार तिवारी और संदीप अरे की मृत्यु हो गई। दोनों पर्वतारोही दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर पर विजय प्राप्त करने के बाद नीचे उतरते समय बीमार हो गए थे और हर संभव प्रयास के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। इस सीजन में एवरेस्ट पर यह चौथी मौत है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले दो दिन में बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी लू चलने की आशंका है। बढ़ती गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए डॉक्टरों ने गर्भवती महिलाओं को अत्यधिक सतर्क रहने की सलाह दी है। एम्स नई दिल्ली के प्रसूति और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर के अपर्णा शर्मा ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि गर्भवती महिलाओं को पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए।
2: प्रेगनेंसी के दौरान काफी हीमोडायनेमिक चेंजेस होते हैं जिससे उन पे इसका असर और भी ज्यादा हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में दो चीजों का बहुत ध्यान रखना है कि डे टाइम पे घर के अंदर ही रहें और जब तक शाम को हीट कम ना हो जाए बाहर बहुत ज्यादा नहीं जाने की कोशिश करें। दूसरी चीज इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा हाइड्रेशन मेंटेन करें, मतलब पानी पिए और ना सिर्फ पानी बट उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होने चाहिए। तो जैसे नींबू पानी, नमक डाल के पिए या ORS पिए। तो अगर आप हाइड्रेशन मेंटेन करके रखते हैं तो काफी हद तक हम सेफ रह सकते हैं।
1: बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 232 अंक बढ़कर 75,415 पर बंद हुआ। निफ्टी 65 अंक की बढ़त के साथ 23,719 पर दर्ज हुआ। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक हैदराबाद ने 16वें ओवर में 2 विकेट पर 204 रन बना लिए हैं। हैदराबाद ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। देश में आज वरिष्ठ नागरिकों के लिए जीवन मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के लिए सहायता प्रणालियों को मजबूत करना है। जीवन ऐप सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी, आपातकालीन सहायता और वरिष्ठ नागरिक आवास की जानकारी उपलब्ध कराता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और साइप्रस आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत। द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का निर्णय। आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर। सरकार बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ सभी सीमाओं को अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। भारत ने ओडिशा के चांदीपुर में कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्निवन का सफल परीक्षण किया। भारत ने बाल टीकाकरण कार्यक्रम मजबूत करने के लिए अफगानिस्तान को 20 टन महत्वपूर्ण वैक्सीन सामग्री भेजी। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को नई दिल्ली में होगी और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। भारत और कुबरुस ने दहशतगर्दी से लड़ने के लिए मुश्तरका फोर्स तश्कील देने से इत्तेफाक किया है। दोनों मुल्कों ने बाहमी ताल्लुकात को कलीदी शराकतदारी का दर्जा दिया है। दोनों मुल्कों ने इक्तसादी तआवुन को फरोग देने की गरज से कई माहिदों पर दस्तखत भी किए हैं। हुकूमत स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट शुरू करेगी।

0: ताकि बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ तमाम सरहदों को ऐसा बनाया जाए जिन्हें तोड़कर दाखिल होना मुमकिन न हो। भारत ने ओडिशा के चांदीपुर में मुख्तसर दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि एक की कामयाबी के साथ आजमाइश की है। भारत ने अफगानिस्तान में टीकों से मुतालिक 20 टन अहम तरीन सामान रवाना किया है ताकि बच्चों की टीकाकारी के प्रोग्राम को मजबूत बनाया जा सके। क्वाड वज़राए खारजा की मीटिंग इस महीने की 26 तारीख को नई दिल्ली में होगी। और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के दरमियान मैच जारी है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और कुब्रुस के सदर निकोस क्रिस्टोडिलाइट्स ने आज दहशतगर्दी की तमाम किस्मों और सरहद पार की दहशतगर्दी समेत तमाम मज़ाहिर से मुकाबला आरई के अपने अज़्म का इआदा किया। दोनों लीडरों ने नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में आज एक बाहमी मीटिंग की। दोनों लीडरों के दरमियान मुज़ाकरात के बाद मुख्तलिफ माहदे तय पाए जिसमें इंसदादे दहशतगर्दी के लिए एक मुश्तरक वर्किंग ग्रुप कायम करने से मुतालिक एक मफाहमतनामा और सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट बराए खारजी खिदमात और कुब्रुस की सिफारती अकेडमी के दरमियान सिफारतकारी के शोबे में तरबियत से मुतालिक एक मफाहमतनामा शामिल है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर, कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवाल और खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिश्री इस मीटिंग में मौजूद थे। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर आजम मोदी ने कहा कि भारत और कुब्रुस कनेक्टिविटी से मुतालिक स्कीमों पर मिलकर काम करेंगे, जैसे भारत बहरुल काहिल समंदरों से मुतालिक स्कीम और भारत मशरक वस्ता यूरोप इकतसादी राहदारी दिफा और सलामती के शोबे में ताउन के बारे में जनाब मोदी ने बताया कि दोनों मुल्कों ने साइबर सिक्योरिटी, समंदरी सरहदों की सलामती और इंसदाद दहशतगर्दी में शिरकतदारी को मजीद मुस्तकम करने से इत्तेफाक किया है।
1: रक्षा और सुरक्षा सहयोग भी हमारे संबंधों का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। हमें बहुत खुशी है कि पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच मिलिट्री एक्सचेंज और ट्रेनिंग सहयोग बढ़े हैं। आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: भारत और कुब्रुस ने अपने ताल्लुकात को बढ़ाकर उन्हें कलीदी शराकतदारी की सतह तक पहुंचाने का भी फैसला किया है और एक मुश्तरक टास्क फोर्स का आगाज किया है ताकि बुनियादी ढांचे और जहाजरानी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मुस्तहकम किया जा सके। इस फैसले की सताइश करते हुए वजीर आजम ने कहा कि भारत और कुब्रुस के दरमियान रिश्ता हर अहद में बेहद मजबूत रहा है।
1: आज हम अपने विश्वसनीय संबंधों को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में एलिवेट कर रहे हैं। भारत और साइप्रस के बीच यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों के फाइनेंशियल और सर्विसेज हब को जोड़कर कॉमर्स के लिए कैपिटल अनलॉक करेगी। यह साइप्रस के इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और एग्रीकल्चर सेक्टर में भारतीय कंपनीज के लिए नए अवसर प्रदान करेगी और भारत के तेजी से बढ़ते शिपिंग और मैरिटाइम क्षेत्रों में नया निवेश लेकर आएगी।
0: बाद में मीडिया से बात करते हुए वजारत खारजा में मगरबी उमूर से मुतालिक सेक्रेटरी सिब्बी जॉर्ज ने बताया कि दोनों लीडरों ने वसीतर मामलात पर तबादला ख्याल किया जिनमें तिजारत और सरमायाकारी, दिफा, समंदरी सरहदों की सिक्योरिटी, मालियाती कनेक्टिविटी, टेक्नोलॉजी और इख्तराआत, आमोदरफ्त, तालीम, सकाफत और भारत यूरोपीय यूनियन के दरमियान रिश्तों के मामलात में ताउन को फरोग देने पर तवज्जो मरकूज की गई। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 19वें रोजगार मेले में कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्तलिफ सरकारी महकमों और तंजीमों में 51,000 से ज्यादा नौ तकरर शुदा नौजवानों को तकररी के खत तकसीम करेंगे। इस मौके पर मौजूद अफराद से बातचीत भी करेंगे। हमारे नुमाइंदे ने खबर दी है कि रोजगार मेला एक अहम पहल है जिससे वजीर आजम के रोजगार के मौके पैदा करने को आला तरीन तरजीह देने और इस ख्वाब को ताबीर अता करने के अज़्म का इजहार होता है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: रोजगार मेला वजीर आजम के रोजगार के मौके पैदा करने को अव्वलीन तरजीह देने के अज़्म की तकमील की जानिब एक कदम है। रोजगार मेला नौजवानों को बामाने मौके फराहम करने में अहम रोल अदा कर रहा है ताकि वो बाख्तियार हो सकें और मुल्क की तामीर में हिस्सा ले सकें। अपने आगाज के वक्त से मुल्क भर में मुनक्किदा 18 रोजगार मेलों के जरिए तकरीबन 20 लाख तकरूरियों के खतूत जारी किए जा चुके हैं। 19वां रोजगार मेला मुल्क भर में 47 मुकामात पर मुनक्किद होगा। नौ तकरूरशुदा उम्मीदवार जिन्हें मुल्क भर से मुंतखब किया गया है मुख्तलिफ वजारतों और महकमों को ज्वाइन करेंगे जिनमें रेलवे

मरकजी जांच ब्यूरो सीबीआई ने आज नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में एक और अहम मुलजिम को गिरफ्तार किया है। मुलजिम का नाम मनीषा संजय हवलदार है और ये महाराष्ट्र के शहर पुणे के सेठ हीरालाल सराफ प्रशाला में काम कर रही है। सीबीआई ने बताया कि ये नीट यूजी 2026 इम्तिहान के अमल में शामिल रही है और इसे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एक एक्सपर्ट के तौर पर मुकर्रर किया था। जांच एजेंसी ने बताया कि मुलजिम को फिजिक्स के सवालनामे तक मुकम्मल रसाई हासिल थी। सीबीआई ने इत्तला दी है कि उन्होंने नीट यूजी 2026 इम्तिहान के फिजिक्स मजमून से मुतालिक कुछ सवालात साथी मुलजिम मनीषा मंधारे को शेयर किए थे, जिसे इस महीने की 16 तारीख को गिरफ्तार किया गया था। सानवी तालीम के मरकजी बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं जमात के बोर्ड इम्तिहान के जवाबी पर्चों की स्कैंड कॉपी हासिल करने की आखिरी तारीख में एक दिन की तौसी करते हुए इसे 24 मई तक बढ़ा दिया है। इससे पहले जवाबी पर्चों की कॉपी हासिल करने की आखिरी तारीख कल तक थी। हुकूमत ने कहा है कि गुज़िश्ता 4 दिनों के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बढ़ते दर्जे हरारत की वजह से बिजली की खपत अपनी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई, जो कि एक रिकॉर्ड है। बिजली की वजारत ने कहा कि कल दिन के वक्त बिजली की सबसे ज्यादा खपत 270.82 गीगावाट रही, जिसने अपने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने अहम वजारतों और सरकर्दा सनती एसोसिएशनों के अहलकारों के साथ आज एक मीटिंग की सदारत की, जिसका मकसद मुल्क में मैन्युफैक्चरिंग को फरोग देने की गरज से हिकमत अमली तय करना था। सोशल मीडिया पर जारी पोस्ट में जनाब गोयल ने बताया कि हुकूमत सनत के साथ गहरे रवाबित के साथ काम करने के तई पुरज्म है। भारत के दो कोहे पैमा अरुण कुमार तिवारी और संदीप माउंट एवरेस्ट पहाड़ की चढ़ाई से उतरते वक्त अपनी जान गंवा बैठे। नेपाल के सयाहत के महकमे के हकाम ने बताया कि ये दोनों दुनिया की सबसे बुलंद पहाड़ी चोटी सर करने के बाद नीचे उतर रहे थे। बताया जाता है कि अरुण और संदीप चोटी से नीचे आते वक्त बहुत थक चुके थे और गाइड की हर मुमकिन कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। मणिपुर में आसाम राइफल्स ने कल और आज बिरादरियों तक रसाई की सिलसिलेवार आउटरीच पहल का इनेकाद किया। इन सरगर्मियों का मकसद नौजवानों को तालीम को अपनाने, करियर के इंतखाब से मुतालिक पूरी वाकफियत हासिल करने और सभी शुरका को सेहतमंद तर्ज जिंदगी अपनाने की तहरीक देना था। हैदराबाद के राजीव गांधी बैन अल-अक़वामी स्टेडियम में जारी आईपीएल क्रिकेट मैच में मेजबान सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को जीत के लिए 256 रन का निशाना दिया है। इससे पहले सनराइजर्स हैदराबाद ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। भारत और कुब्रुस ने दहशतगर्दी से लड़ने के लिए मुश्तरका फोर्स तश्कील देने से इत्तेफाक किया है। दोनों मुल्कों ने बाहमी ताल्लुकात को कलीदी शराकतदारी का दर्जा दिया है। दोनों मुल्कों ने इक्तसादी तआवुन को फरोग देने की गरज से कई माहिदों पर दस्तखत भी किए हैं। हुकूमत स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट शुरू करेगी ताकि बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ तमाम सरहदों को ऐसा बना दिया जाए जिन्हें तोड़कर दाखिल होना मुमकिन न हो। भारत ने ओडिशा के चांदीपुर में मुख्तसर दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 की कामयाबी के साथ आजमाइश की है। भारत ने अफगानिस्तान में टीकों से मुतालिक 20 टन अहम तरीन साजो सामान रवाना किया है ताकि बच्चों की टीकाकारी के प्रोग्राम को मजबूत बनाया जा सके। क्वाड वज़राए खारजा की मीटिंग इस महीने की 26 तारीख को नई दिल्ली में होगी। और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के दरमियान मैच जारी है। इस मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को जीत के लिए सनराइजर्स हैदराबाद ने 256 रन का निशाना दिया है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।

0: Good evening, listeners. Welcome to our program, Current Affairs. I'm Arjun Chowdhury, and today we will be discussing about India's
1: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। रात्रि के 9:30 हो चुके हैं। प्रस्तुत है अंजुमन कार्यक्रम।

श्रोताओं नमस्कार, अंजुमन कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। रात्रि की खामोशी में जब जज्बात आवाज बनकर दिल से निकलते हैं, तब गजल और गैर फिल्मी गीत अपनी पूरी रूहानियत के साथ हमारे सामने आते हैं। आज की इस महफिल में हम सुनेंगे कुछ ऐसे चुनिंदा नगमे और गजलें जिन्होंने अपने अल्फाज, सुर और एहसास से संगीत प्रेमियों के दिलों में विशेष स्थान बनाया है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस खूबसूरत महफिल की। पहली प्रस्तुति है जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की युगल आवाज में।

श्रोताओं, गजलें केवल संगीत नहीं होती बल्कि दिल को दिल की उन बातों का आईना होती हैं जिन्हें अक्सर शब्द नहीं मिल पाते। अब पेश है पंकज उधास की एक बेहद लोकप्रिय गजल, मखमली आवाज और नफासत भरी।

रात जैसे जैसे घर आती है, यादों और एहसासों की दुनिया भी और करीब आने लगती है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब सुनते हैं गुलाम अली की आवाज़ में एक मशहूर गज़ल। इनकी गायकी में शास्त्रीय संगीत की मिठास और उर्दू शायरी की खूबसूरती एक साथ महसूस होती है।

श्रोताओं, गजलों की यही खासियत है कि वे दिल के सबसे कोमल एहसासों को बड़ी खामोशी से बयान कर देती हैं। अब पेश है स्वर साम्राज्ञी आशा भोसले की आवाज में एक गैर फिल्मी गीत। इन्होंने फिल्म संगीत के साथ साथ गैर फिल्मी गीतों और गजलों में भी अपनी अलग पहचान बनाई है।

और अब कार्यक्रम समाप्त करने का समय हो चला है। उम्मीद है आज की है सुरमई महफिल आपके दिल को सुकून और यादों की नरम रोशनी दे पाई होगी। इसी उम्मीद के साथ हमें दीजिए उन्मत, अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ नए गीतों और नई गजलों और नए एहसासों के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।

0: अभी आप सुन रहे थे अंजुमन कार्यक्रम, ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। अब प्रस्तुत है मंजूषा कार्यक्रम।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक उदय प्रताप इंटर कॉलेज भोजूबीर वाराणसी, वाराणसी की अति प्राचीनतम शिक्षण संस्थान उदय प्रताप इंटर कॉलेज भोजूबीर वाराणसी।
2: क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य की तलाश में हैं? आइए जुड़िए उदय प्रताप इंटर कॉलेज भोजूबीर वाराणसी से, जहां शिक्षा के साथ संस्कार भी दिए जाते हैं। अनुभवी शिक्षक, उत्कृष्ट शैक्षणिक वातावरण, आधुनिक शिक्षण पद्धति और विद्यार्थियों के लिए सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान। यहां से निकले छात्र आज विभिन्न क्षेत्रों में सफलता की मिसाल हैं। उदय प्रताप इंटर कॉलेज भोजूबीर वाराणसी,

0: मंजूषा के एक और अंक के साथ मैं चंदन सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज के इस पत्रिका कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे संपादकीय, जो कि केंद्रित होगा निबंधकार, आलोचक और उपन्यासकार हजारी प्रसाद द्विवेदी पर। साथ ही हम आपको सुनवाएंगे वार्ता जिसका विषय होगा काशी के अमरस्वर जयशंकर प्रसाद। वार्ताकार होंगे डॉक्टर उमाकांत सिंह। अंत में हम आपको सुनवाएंगे डॉक्टर नसीमा निशा से काव्य पाठ। पत्रिका के पहले पृष्ठ पर लीजिए सुनिए संपादकीय, जो कि केंद्रित है प्रसिद्ध उपन्यासकार, निबंधकार और आलोचक हजारी प्रसाद द्विवेदी पर। वाचन तैयबा मारूफ।
1: भारतीय हिंदी साहित्य के इतिहास में कुछ ऐसे व्यक्तित्व हुए हैं जिन्होंने केवल साहित्य की रचना ही नहीं की बल्कि पूरी सांस्कृतिक चेतना को दिशा दी। ऐसे ही महान साहित्यकार, चिंतक, आलोचक और निबंधकार थे हजारी प्रसाद द्विवेदी। उनका नाम हिंदी साहित्य में ज्ञान, संवेदना, भारतीय परंपरा और आधुनिक दृष्टि के अद्भुत समन्वय के रूप में लिया जाता है। वे केवल एक लेखक नहीं थे बल्कि भारतीय संस्कृति के एक ऐसे व्याख्याता थे जिन्होंने अतीत को वर्तमान से जोड़ने का कार्य किया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 19 अगस्त 1907 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के दूबे का छपरा नामक गांव में हुआ था। बचपन से ही उन्हें भारतीय शास्त्रों, पुराणों और संस्कृति का वातावरण मिला। यही कारण है कि आगे चलकर उनके साहित्य में भारतीय ज्ञान परंपरा की गहरी छाप दिखाई देती है। उन्होंने संस्कृत, हिंदी, पाली, प्राकृत और भारतीय दर्शन का गंभीर अध्ययन किया। उनकी विद्वता केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित नहीं थी बल्कि उसमें जीवन की अनुभूति और मानवीय संवेदनाएं भी समाहित थी। आचार्य द्विवेदी का साहित्य भारतीय संस्कृति की आत्मा को समझने का माध्यम है। उन्होंने अपने लेखन में इतिहास, दर्शन, संस्कृति, धर्म, समाज और मानव जीवन को अत्यंत सरल और प्रभावशाली शैली में प्रस्तुत किया। उनकी भाषा विद्वतापूर्ण होने के बावजूद सहज और सरस है। यही कारण है कि उनका साहित्य आम पाठकों से लेकर विद्वानों तक सभी को प्रभावित करता है। उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे परंपरा के समर्थक होते हुए भी अंधविश्वास और जड़ता के विरोधी थे। वे मानते थे कि भारतीय संस्कृति का मूल तत्व मानवता, प्रेम और सहिष्णुता है। उन्होंने कबीर, ना संप्रदाय, भक्ति आंदोलन तथा भारतीय सांस्कृतिक इतिहास पर गंभीर अध्ययन किया और नई दृष्टि प्रदान की। उनकी प्रसिद्ध कृति कबीर केवल एक जीवनी नहीं बल्कि भारतीय समाज और आध्यात्मिक चेतना का विश्लेषण है। उन्होंने कबीर को केवल संत कवि नहीं बल्कि सामाजिक क्रांति के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया। आचार्य द्विवेदी के निबंध हिंदी साहित्य की अमूल्य धरोहर है। उनके निबंधों में ज्ञान और संवेदना का अद्भुत संतुलन मिलता है। अशोक के फूल, कल्पलता और प्राणों में प्राण जैसे संग्रह आज भी पाठकों को विचार करने के लिए प्रेरित करते हैं। प्रकृति, संस्कृति और मानव जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण अत्यंत मानवीय था। वे छोटे छोटे विषयों में भी जीवन का गहरा दर्शन खोज लेते थे। उनके निबंधों में भाषा की मधुरता, विचारों की गहराई और शैली की कलात्मकता अद्भुत रूप से दिखाई देती है। उपन्यासकार के रूप में भी आचार्य द्विवेदी का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनका प्रसिद्ध उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा हिंदी साहित्य की अनूठी कृति मानी जाती है। इसमें इतिहास और कल्पना का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। इस उपन्यास के माध्यम से उन्होंने प्राचीन भारत की सांस्कृतिक चेतना को जीवंत कर दिया। चारुचंद्र लेख, अनामदास का पोथा और पुनर्नवा जैसे उपन्यासों में भी उनकी साहित्यिक प्रतिभा का श्रेष्ठ रूप दिखाई देता है। उनके उपन्यास केवल कथाएं नहीं है बल्कि भारतीय समाज और संस्कृति के गहरे अध्ययन का परिणाम है। हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के योगदान के बिना अधूरा है।
0: अभी आप सुन रहे थे हजारी प्रसाद द्विवेदी पर केंद्रित संपादकीय। पत्रिका के अगले पृष्ठ पर लीजिए सुनिए वार्ता। वार्ता का विषय है काशी के अमरस्वर जयशंकर प्रसाद। वार्ताकार हैं डॉक्टर उमाकांत सिंह।

जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के छायावाद के प्रवर्तक और प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। उन्होंने खड़ी बोली कविता को एक नई कोमलता, दार्शनिकता, सौंदर्य परक भाषा प्रदान की। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी में काशी के एक संपन्न घराने में हुआ था, जो सुंगनी साहू नाम से प्रसिद्ध था। इनके पितामह बाबू शिव रतन साहू दान देने में प्रसिद्ध थे और इनके पिता देवी प्रसाद भी दान देने के साथ साथ कलाकारों का सम्मान करने के लिए विख्यात थे। इनका काशी में बड़ा सम्मान था और काशी की जनता काशी नरेश के बाद हर हर महादेव से बाबू देवी प्रसाद जी का स्वागत करती थी। जयशंकर प्रसाद की प्रारंभिक शिक्षा घर पर होने के बाद उन्हें कक्षा 6 में काशी के किम्स कॉलेज में प्रवेश दिलाया गया और 7वीं कक्षा तक ही आप वहां पढ़ पाए थे। उनकी आगे की शिक्षा का व्यापक प्रबंध घर पर ही किया गया, जहां उन्होंने हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी भाषाओं का अध्ययन किया। प्रसाद जी का विवाह विंध्यवासिनी देवी के साथ हुआ था, किंतु क्षय रोग से ग्रसित होने के कारण 1916 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। स्वयं प्रसाद जी क्षय रोग से ग्रस्त हो गए और 15 नवंबर 1937 ईस्वी को उनका देहांत हो गया। प्रसाद जी आधुनिक हिंदी काव्य के पहले ऐसे कवि हैं जिन्होंने अपनी कविताओं में सूक्ष्म अनुभूतियों का रहस्यवादी चित्रण प्रस्तुत किया। इनके इस नवीन प्रयोग ने काव्य जगत में एक नई हलचल उत्पन्न कर दी और छायावाद का सूत्रपात हुआ। प्रसाद जी छायावाद युग के प्रवर्तकों में माने जाते हैं। उनका साहित्य कोमलता, माधुर्य, शक्ति और ओज का साहित्य माना जाता है। छायावाद की अतिशय काल्पनिकता, सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रण, प्रकृति प्रेम, देश प्रेम और शैली की लाक्षणिकता उनकी कविता की प्रमुख विशेषता है। जयशंकर प्रसाद सौंदर्य, प्रेम, करुणा और वेदना के सर्वोच्च कवि माने जाते हैं। प्रसाद जी का प्रेम लौकिकता से शुरू होकर अलौकिकता की ओर बढ़ता है। उनकी रचनाओं में प्रेम केवल मिलन का सुख नहीं बल्कि वियोग की आग में तपकर कुंदन बना प्रेम है। जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक पर स्मृतियों सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित आंसू काव्य छायावाद युग का एक प्रसिद्ध मार्मिक काव्य है। यह प्रेम, वेदना और स्मृति का अनूठा संगम है, जिसमें कवि व्यक्तिगत पीड़ा को मानवीय करुणा में बदल दिया है, तो दूसरी तरफ प्रसाद जी कामायनी में नारी के रूप का वर्णन करते हुए लिखते हैं, नील परिधान बीज सुकुमार, खुल रहा मिदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली के फूल, मेघ बीज गुलाबी रंग। प्रकृति का मानवीकरण जयशंकर प्रसाद जी के काव्य की प्रमुख विशेषता है। वे प्रकृति को सजीव, चेतन और मानवीय संवेदनाओं से युक्त मानते हैं, जहां नदी, पर्वत, उषा और लहरें आदि मानव की तरह हंसती, गाती और विरह मिलन की अनुभूति कराती हैं। लहर में संकलित कविता बीती, विभावरी, जागरी जैसे गीतों में प्रकृति का सखी रूप में चित्रण किया गया है। तो कहो तुम रूप सी कौन कविता में उषा को एक नायिका के रूप में दर्शाया गया है, जो चुपचाप आकाश से उतर रही है। जयशंकर प्रसाद के काव्य चेतना में भारतीय दर्शन, मानवतावाद, रहस्यवाद का अद्भुत समन्वय मिलता है और दर्शन न केवल कोरा सिद्धांत बल्कि व्यवहारिक जीवन में समरसता और आनंद प्राप्ति का मार्ग है। कामायनी में प्रसाद ने आनंदवाद की स्थापना की है। उनके अनुसार सुख और दुख के बीच समरसता ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। वे संसार को दुखमय न मानकर सुख का सागर मानते हैं। प्रसाद के दर्शन में निराशा के लिए कोई स्थान नहीं है। वे जीवन के दुखों को क्षणिक मानते हैं और दुख के बाद सुख का आना निश्चित मानते हैं। प्रसाद जी की कविताओं में कला पक्ष अत्यंत समृद्ध, संस्कृत निष्ठ और छायावादी सौंदर्य से ओतप्रोत है। उन्होंने खड़ी बोली हिंदी को कोमलता, संगीतात्मकता और सूक्ष्म अभिव्यक्ति प्रदान की। प्रसाद जी ने परिष्कृत और संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग किया। प्रसाद जी की कविताओं में मानवीकरण, रूपक, उपमा और विशेषण विपर्य अलंकारों का सुंदर प्रयोग मिलता है। छायावादी शैली होने के कारण अमूर्त भावों को मूर्त रूप देने का प्रयोग प्रचुरता से हुआ है। प्रसाद जी ने पारंपरिक छंदों के साथ साथ मुक्त छंदों का भी प्रयोग किया है। आंसू और लहर जैसी रचनाओं में लयात्मकता और गीयता का अद्भुत संगम है। प्रसाद जी प्रबंध और मुक्तक दोनों शैलियों में उत्कृष्ट रचना की है। प्रसाद जी की हिंदी कहानी को भावुकता, कल्पना, दार्शनिकता के धरातल पर एक नई दिशा दी। उनकी कहानियाँ भावात्मकता, मनोवैज्ञानिकता और सांस्कृतिक चित्रण का अनूठा मिश्रण है। प्रसाद जी मुख्य रूप से रोमांटिक, ऐतिहासिक और सामाजिक विषयों पर कहानियां लिखी हैं,
जिनका संग्रह

0: छायावाद, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल में संकलित हैं। प्रसाद जी की कहानियों में छायावाद की सूक्ष्मता और भावुकता अस्पष्ट झलकती है। उनकी कहानियां केवल बाहरी घटनाओं का वर्णन नहीं करती, बल्कि पात्रों के आंतरिक भाव जगत की उथल पुथल को केंद्र में रखकर वर्णन करती हैं। प्रेम, करुणा और वेदना उनकी कहानियों के केंद्रीय भाव हैं। प्रसाद जी अपनी कहानियों के लिए भारत के स्वर्णिम इतिहास को चुना है। पुरस्कार, आकाशदीप, ममता जैसी कहानियां भारतीय संस्कृति, शौर्य और स्वाभिमान का चित्रण करती हैं। वे भारत के इतिहास के माध्यम से वर्तमान की समस्याओं का समाधान करती हैं। प्रसाद जी की कहानियां पात्रों के अंतर्द्वंद को बहुत गहराई से चित्रित करती हैं। आकाशदीप में चंपा का प्रेम और प्रतिशोध के बीच का द्वंद, तो पुरस्कार कहानी में मधुलिका का राष्ट्र प्रेम और व्यक्ति प्रेम का द्वंद इसका बेहतरीन उदाहरण है। प्रसाद जी की कहानियों के पात्र व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर प्रेम, त्याग और बलिदान आदि आदर्श मूल्यों की स्थापना करते हैं। प्रसाद जी अपनी कहानियों में नारी को गरिमापूर्ण और स्वतंत्र व्यक्तित्व के रूप में प्रस्तुत किया है। जैसे आकाशदीप कहानी की चंपा और ममता कहानी की ममता अपने अपने जीवन के निर्णय में दृढ़ और स्वाभिमानी है। प्रसाद जी की कहानियों की भाषा काव्यात्मक है, गद्य लिखते हुए भी काव्य जैसी तरलता और भावमयता बनाए रखते हैं। प्रसाद जी के नाटकों में राष्ट्रीय और सांस्कृतिक चेतना प्रमुख है, जो भारतीय इतिहास के गौरवशाली पृष्ठों के माध्यम से देश प्रेम, राष्ट्रीयता, सांस्कृतिक एकता और युवाओं में स्वाधीनता की भावना जगाती हैं। वे अतीत के गौरव के सहारे वर्तमान की समस्याओं को हल करने की प्रेरणा देते नजर आते हैं। जैसे चंद्रगुप्त नाटक में चाणक्य के माध्यम से भारत की एकता और विदेशी आक्रांताओं के विरुद्ध संघर्ष का चित्रण। प्रसाद जी के अधिकांश नाटक ऐतिहासिक हैं, जैसे स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु और ध्रुवस्वामिनी, लेकिन वे केवल इतिहास का गुणगान नहीं करते, बल्कि उनके माध्यम से वर्तमान समय की समस्याओं, सत्ता संघर्ष, राष्ट्रीय सुरक्षा, नारी सम्मान आदि का समाधान ढूंढते हैं। जैसे ध्रुवस्वामिनी नाटक में प्राचीन युग कथा के माध्यम से स्त्री पुरुष संबंधों और नारी के आत्मसम्मान के आधुनिक समय के प्रश्नों को उठाया है। प्रसाद जी नारी को केवल उपभोग की वस्तु नहीं, बल्कि त्याग, शक्ति, करुणा और स्वाभिमान की प्रतिमूर्ति के रूप में चित्रित किया है। उनके नाटकों की नायिकाएं न केवल सुंदर बल्कि स्वाभिमानी और राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं। प्रसाद जी मूलतः कवि थे, इसलिए उनके नाटकों की भाषा संस्कृतनिष्ठ, गंभीर, काव्यात्मक और संवादों में दार्शनिक गहराई है, जो पात्रों के आंतरिक भावनाओं को व्यक्त करती है। जैसे स्कंदगुप्त की देश सेना का गीत, आ वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित, मधुकरियों की भीख लुटाई, निष्कर्षतः जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य की छायावाद युग के आधार स्तंभ, महान कवि, नाटककार और कहानीकार थे। उनका मूल्यांकन एक ऐसे साहित्यकार के रूप में किया जाता है, जिन्होंने भारत के इतिहास और दर्शन को मानवीय भावनाओं से जोड़कर साहित्य को नई ऊंचाई दी।
1: अभी आप सुन रहे थे वार्ता, जिसका विषय था काशी के अमर स्वर जयशंकर प्रसाद। वार्ताकार थे डॉक्टर उमाकांत सिंह। पत्रिका के अंतिम पृष्ठ पर लीजिए, सुनिए डॉक्टर नसीमा निशा से काव्य पाठ।
2: एक रचना पे ले चलती हूँ आपको।
3: मोहताज दान दान को होता रहा किसान, मोहताज दान

और अब इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं अगली गजल से एक दो अशआर सुनाती हूँ। गम को भुला के हंसने हंसाने का दौर है, गम को भुला के हंसने हंसाने का दौर है, महफिल मसर्रतों की सजाने का दौर है, बुग्जो हसद को दिल से मिटाने का दौर है, अमनो अमा का दीप जलाने का दौर है। कोई किसी की सुनता नहीं दास्ताने गम, कोई कोई किसी की सुनता नहीं दास्ताने गम, अब दास्ताने गम को छिपाने का दौर है, अब दास्ताने गम को छिपाने का दौर है। नाखुशगवार आज है माहौल ऐ निशा, नाखुशगवार आज है माहौल ऐ निशा, माहौल खुशगवार बनाने का दौर है, गम को भुला के हंसने हंसाने का दौर है, महफिल मसर्रतों की सजाने का दौर है। और एक छोटी गजल और मैं आप सभी को सुनाती हूँ। सर झुका है मेरा उसी के लिए, सर झुका

अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर नसीमा निशा से काव्य पाठ। इसी के साथ संपन्न होता है कार्यक्रम मंजुषा का आज का अंक। आज का यह अंक आपको कैसा लगा हमें पत्रों के माध्यम से अवश्य अवगत कराइएगा। साहित्यिक पत्रिका के आज के अंक में वाचन संपादन और प्रस्तुति चंदन कुमार सिंह की। अब आपसे अनुमति लेते हैं, अगले अंक में फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।

0: कार्यक्रम के प्रायोजक उदय प्रताप इंटर कॉलेज भोजूबीर वाराणसी, वाराणसी की अति प्राचीनतम शिक्षण संस्थान उदय प्रताप इंटर कॉलेज भोजूबीर वाराणसी।
1: क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य की तलाश में हैं? आइए जुड़िए उदय प्रताप इंटर कॉलेज भोजूबीर वाराणसी से, जहां शिक्षा के साथ संस्कार भी दिए जाते हैं। अनुभवी शिक्षक, उत्कृष्ट शैक्षणिक वातावरण, आधुनिक शिक्षण पद्धति और विद्यार्थियों के लिए सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान। यहां से निकले छात्र आज विभिन्न क्षेत्रों में सफलता की मिसाल हैं। उदय प्रताप इंटर कॉलेज भोजूबीर वाराणसी।
2: अभी आप सुन रहे थे मंजूषा कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। मीडियम वेव 241.5 सेंटीमीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर। रात्रि के 10:30 हो चुके हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आइए आज सुने ध्रुपद गायन। कलाकार हैं पल्लव दास, राग है बागेश्री।

0: अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में ध्रुपद गायन। कलाकार थे पल्लव दास, राग था भाग्यश्री। शास्त्रीय संगीत का ही कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। केवल काली पुतली का दान ज्योति दान, नेत्रदान को परिवार की परंपरा बनाए। नेत्रदान का संकल्प आज ही ले। ज्योति वह अमूल्य उपहार है जो आप ही दे सकते हैं। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। अब समाचार होंगे, पहले हिंदी में फिर अंग्रेजी में, जिन्हें हम दिल्ली केंद्र से संप्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। भारत और साइप्रस के बीच आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया।
2: आज हम अपने विश्वसनीय संबंधों को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में एलिवेट कर रहे हैं। भारत और साइप्रस के बीच यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों के फाइनेंशियल और सर्विसेज हब को जोड़कर कॉमर्स के लिए कैपिटल अनलॉक करेगी। यह साइप्रस के इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और एग्रीकल्चर सेक्टर में भारतीय कंपनीज के लिए नए अवसर प्रदान करेगी और भारत के तेजी से बढ़ते शिपिंग और मैरिटाइम क्षेत्रों में नया निवेश लेकर आएगी।
1: श्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है। साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। दोनों देश आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत हुए। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने

0: दिल्ली में बताया है कि दोनों नेताओं ने सीमा पार से आतंकवाद सहित हर प्रकार के आतंकवाद से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई है। साइप्रस ने आतंकवाद से मुकाबले में भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की। श्री जॉर्ज ने बताया कि दोनों नेताओं ने कई क्षेत्रों में संपर्क सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की।
1: Discussions focused on enhancing cooperation.
2: बातचीत में मुख्य रूप से व्यापार और निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, वित्तीय संपर्क, प्रौद्योगिकी और नवाचार, गतिशीलता, शिक्षा, संस्कृति तथा भारत यूरोपीय संघ सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार साझा किए। उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई।
1: In all its forms and manifestations, including cross-border terrorism.
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स का स्वागत किया। उन्होंने उनके सम्मान में भोज का भी आयोजन किया। राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स और उनके प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और साइप्रस के बीच विश्वास और सद्भावना पर आधारित घनिष्ठ संबंध हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि भारत साइप्रस संबंध एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें रक्षा और सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, वित्तीय सेवाओं, संपर्क और समुद्री सहयोग जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार हो रहा है। केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू करेगी तथा बांग्लादेश और पाकिस्तान से लगी पूरी सीमा को अभेद्य बनाएगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि स्मार्ट बॉर्डर अवधारणा के अंतर्गत विभिन्न प्रौद्योगिकी के एकीकरण का कार्य प्रगति पर है। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से आज कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्निवन का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा। ये सफल परीक्षण भारत की रणनीतिक रक्षा तैयारियों में एक अन्य मील का पत्थर है, जो देश की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने के लिए आईटीबीपी की पहली महिला पर्वतारोहण टीम को बधाई दी है। श्री शाह ने कहा कि कठिन भूभाग और प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों का सामना करते हुए इस शानदार जीत को हासिल करके टीम ने आईटीबीपी के राष्ट्र सर्वोपरि के सिद्धांत को सार्थक कर दिखाया है। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 256 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 14 ओवर में 3 विकेट पर 139 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।